91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत 92 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुलजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये न्यूज़ बुलेटिन सचिन के साथ। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। एक पंचायत में नहीं होंगी 2 डिस्पेंसरी, स्वास्थ्य केंद्रों का किया जाएगा युक्तिकरण, मंदिरों के पैसे से गरीबों का इलाज, जरूरतमंदों की फीस देंगे। तकनीकी शिक्षा बोर्ड अब QR कोड वाले वाटर प्रूफ डिप्लोमा करेगा जारी, बेटियों के लिए सजेगा भारोत्तोलन का मंच, पात्रता पूरी कर चुके पंचायत चौकीदार होंगे नियमित। हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियरों में तैयार हो रहे 48 वाटर बम, अब समाचार विस्तार से।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की कई पंचायतों में एलोपैथी और आयुर्वेदिक दोनों तरह की डिस्पेंसरी संचालित हो रही हैं। सरकार अब इनका युक्तिकरण करेगी ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर तरीके से उपयोग हो सके। जहां आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी उपलब्ध है, वहां एलोपैथी डिस्पेंसरी को दूसरी पंचायत में शिफ्ट किया जाएगा। वहां डॉक्टर समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़ करने के लिए एक नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रोफेसरों को 5 लाख रुपए वेतन दे रही है, लेकिन वे हमीरपुर, नेरचौक, चंबा मेडिकल कॉलेज जाने को तैयार नहीं है। शक्तिपीठों और बड़े मंदिरों में चढ़ावे के रूप में जमा राशि का उपयोग अब गरीब लोगों के इलाज और जरूरतमंद बच्चों की स्कूल फीस में मदद के लिए किया जा सकेगा। संबंधित जिलों के उपायुक्त अपने क्षेत्र के पात्र गरीब परिवारों की सहायता के लिए इस राशि का इस्तेमाल कर सकेंगे। मंदिरों के चढ़ावे के उपयोग को लेकर न्यायालय के फैसले के बाद, हालांकि न्यायालय की ओर से मंदिरों के धन का उपयोग विज्ञापन जारी करने और मंदिर न्यास के अधिकारियों के लिए वाहन खरीदने पर रोक लगाई गई है। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में दी। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड अब विद्यार्थियों को QR कोड से लैस वाटरप्रूफ डिप्लोमा जारी करेगा। 2022 योजना के तहत तैयार किए जा रहे ये आधुनिक डिप्लोमा नॉन टियरेबल सामग्री से बने हैं, जिससे ये ना तो पानी से खराब होंगे और ना ही फटेंगे। डिप्लोमा पर अंकित QR कोड की मदद से दस्तावेजों का सत्यापन अब पहले से कहीं अधिक सरल, त्वरित और विश्वसनीय तरीके से हो सकेगा। तकनीकी शिक्षा बोर्ड के सचिव रविंद्र शर्मा ने बताया कि पारंपरिक कागजी डिप्लोमा की तुलना में नए प्रमाण पत्रों की गुणवत्ता और सुरक्षा काफी बेहतर होगी। इससे छात्रों के महत्वपूर्ण शैक्षणिक दस्तावेज लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। इसके साथ ही नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी NAD अथॉरिटी नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के तहत इन डिप्लोमा को डिजीलॉकर पर भी अपलोड किया जाएगा। हिमाचल की बेटियों को भारोत्तोलन में आगे बढ़ाने और गांव में छिपी खेल प्रतिभाओं को पहचान दिलाने के लिए प्रदेश में अस्मिता महिला वेट लिफ्टिंग लीग होगी। खेलो इंडिया के तहत प्रस्तावित इस लीग के लिए कांगड़ा समेत प्रदेश के 8 जिलों को चुना गया है। कांगड़ा में 3 स्थानों पर प्रतियोगिता होगी, जबकि अन्य 8 जिलों में एक एक आयोजन स्थल तय किया गया है। लीग कांगड़ा, चंबा, मंडी, सोलन, सिरमौर, ऊना, हमीरपुर और शिमला में होगी। इस तरह प्रदेश में कुल 11 स्थानों पर महिला भारोत्तोलकों को प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलेगा। प्रतियोगिता के माध्यम से विभिन्न आयु वर्ग की खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ आगे की प्रतियोगिताओं के लिए पहचान बनाने का मौका मिलेगा। यह लीग सितंबर अक्टूबर माह में होगी। अस्मिता लीग का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की खेलों में भागीदारी बढ़ाना और जमीनी स्तर से नई प्रतिभाओं को सामने लाना है। खेलो इंडिया के तहत आयोजित होने वाली महिला लीगों को राष्ट्रीय खेल संघों और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से विभिन्न स्तरों पर आयोजित किया जाता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार ने सेवा की पात्रता पूरी कर चुके पंचायत चौकीदारों को नियमित करने का निर्णय लिया है। चौड़ा मैदान में पंचायत चौकीदार यूनियन की ओर से सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस वित्त वर्ष के बजट में पंचायत चौकीदारों के मानदेय में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। अब उन्हें 500 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 9,000 रुपए प्रतिमा मानदेय दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद कर 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत की है। जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल के जायज हक का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश अपनी संपदा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अब थेरेपी और पुनर्वास सेवाओं के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। समावेशी शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने थेरेपी ऑन व्हील्स पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को 3 मोबाइल रिसोर्स सेंटर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शुरुआती चरण में ये सुविधा मंडी, शिमला और कांगड़ा जिलों में उपलब्ध होगी। बाद में इसे चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के अन्य जिलों तक विस्तार दिया जाएगा। मोबाइल रिसोर्स सेंटर के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार की थेरेपी और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।
हिमाचली ग्लेशियरों में 48 वाटर बम पल रहे हैं। ये वाटर बम फटे तो हर तरफ तबाही का मंजर ही नजर आएगा। इनके फटते ही व्यास और सतलुज नदियां प्रचंड वेग में बहेंगी। भारतीय रीजन हिमालय में ग्लेशियर झीलों की संख्या 2000 के आसपास बताई जा रही है। इन झीलों के बढ़ते आकार और पानी की मात्रा पर मंडी IIT के स्कूल ऑफ सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग विंग ने शोध किया है। IIT के इस शोध में ही खुलासा हुआ है कि हिमाचल के ग्लेशियरों में खतरनाक 48 वाटर बम तैयार हुए हैं। येपनमठ झील का आकार अब तक 178% तक बढ़ गया है। समुद्रा टापू ग्लेशियर झील में 24.7 मिलियन घन मीटर पानी भरा हुआ है और वासुकी झील 13.4 हेक्टेयर में फैली हुई है। IIT के शोध के तहत यह भी पता लगाने की कोशिश की गई है कि इन झीलों के आकार और पानी के बढ़ते दबाव का कारण क्या है। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।

0: अरे चुप। गर्भवती महिला को रोज रात खाने के बाद एक आयरन वाली IFA की गोली कम से कम 100 दिन तक खिलाओ ताकि उसे खून की कमी ना हो। पर वे गोली खाने से कभी कभी,
1: अरे कभी कभी, अरे कभी कभी, अरे कभी कभी,
0: अरे चुप यार, कभी कभी जी मिचलाएगा।
1: खूब पानी पियो ठीक हो जाएगा।
0: कब्ज हो या काला मल,
1: धीरे धीरे होगा हल।
0: भूल जाओ अगर गोली खाना,
1: तो पति या सासू माँ से कहना याद दिलाना।
0: अगर गोली की सप्लाई खत्म हो जाए तो खुद आंगनवाड़ी, ANM दीदी या केमिस्ट से लाना।
1: तो आ जाओ ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना, ध्यान से सुनना।
2: आपने श्री कृष्ण को नहीं देखा लेकिन फिर भी उन्हें मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा और उनका रिश्ता आंखों का नहीं आत्मा का है। जब भी हम टूटते हैं और कोई ना समझे, तब अंदर से एक शांति उठती है। वही श्री कृष्ण है। हमारे आंसू भी उन्हें बुलाते हैं और हमारे मुस्कान भी। हमने उन्हें शायद देखा नहीं, पर वो हर बार हमें देख रहे होते हैं। कृष्ण दूर नहीं, बस थोड़ा विश्वास चाहिए। सच्चे मन से कहिए राधे।
3: साइबर फ्रॉड की दुनिया में आपका इस्तेमाल किया जाता है इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए और आपको बनाया जाता है उसका जरिया। इस स्कैम में होता क्या है कि साइबर स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर फोन पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए ऑनलाइन जॉब के नाम पर आपको पैसा कमाने का लालच देते हैं, और अगर आप इनके जाल में फंस जाते हैं तो ये स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए, यानी उसको यूज करना शुरू कर। ध्यान रहे कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का इलीगल पैसा अगर अपने अकाउंट में एक्सेप्ट करता है या फिर अपने अकाउंट से दूसरे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उनके खिलाफ तो केस दर्ज होगा ही, साथ ही पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिनका अकाउंट धोखे से इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। केस दर्ज के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। तो याद रखिए, नौकरी के नाम पर, पैसा कमाने के नाम पर अगर आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफर का लालच देता है उसको हरगिज एक्सेप्ट मत करिएगा, बल्कि उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गए तो बड़े कानूनी झमेले में फंसेंगे आप।
4: सूरज।
5: हाँ बोल।
4: कल मैंने तेरे बेटे को कुछ लड़कों के साथ देखा है, वो लड़के ठीक नहीं है, नशे वशे के चक्कर में कहीं फंस गए।
5: तुझे नहीं लगता तू मेरे बेटे को बदनाम कर रहा है?
6: अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने ही पीछे रह जाते हैं। कई बार सच सामने दिख रहा होता है पर उसे सामना करने का समय नहीं होता, क्योंकि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो समाज में नाक कट

0: इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं, पर पूछना जरूरी है।
1: वैसे तो हर बाप इस सवाल का जवाब ना सुनना चाहेगा, पर अगर तू हाँ भी कहेगा तब भी तेरा बाप तेरा साथ देगा। नशा तो निकलने लगा।
0: याद रहे, समाज से नशे को खत्म करने की लड़ाई पहले आपके घर से शुरू होती है।
2: आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत।
3: बहुत शरीफ बीवी मिली है तुम्हें, तभी तुम्हारी जुबान ऐसे हर समय पटर पटर चलती रहती है। कोई मिल जाती ना तेज तरह तो पता चल जाता तुम्हें।
4: तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी।
3: तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी।
4: जा जाके कटवा ले अपनी जुबान, तू भी सुखी और मैं भी सुखी।

91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। श्रोताओं, ये कार्यक्रम लेकर के हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। जैसा कि सभी को पता ही है कि अब से लेकर के सुबह 11 बजे तक रहेंगे आपके साथ लाइव। मधुर गीतों के सफर के साथ साथ ही होंगी आपसे कुछ मन की बातें भी, और साथ ही आपको देंगे आसपास की जानकारियां भी। तो सबसे पहले उन सभी श्रोताओं को बहुत मुबारक जो किसी खास वजह से आज 2 सितंबर का दिन मना रहे हैं। जी हाँ, आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से बहुत बहुत मुबारक हो। तो अब आपको ये भी पता लग गया है कि आज है 2 सितंबर। और दिन है बुधवार का। और इस समय 9:04 हो रहे हैं हमारी स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। और इस समय का तापमान क्या है जान लेते हैं, मतलब धर्मशाला और उसके आसपास के क्षेत्रों में मौसम कैसा बना हुआ है। तो अभी की बात करूं तो 17 डिग्री सेल्सियस तापमान है। हवा में नमी है 90%। और विजिबिलिटी यानी परसेप्शन की बात करूं तो 40% है। पूरे दिन भर की बात करूं तो आज धर्मशाला में छिटपुट गरज के साथ बारिश और उमस भरे मौसम की संभावना है। और जैसा कि आपको विदित ही है कि 3 तारीख तक तो येलो अलर्ट बताया ही गया है, और कुछ पता होता नहीं है। वैसे यहाँ पर अलर्ट अलर्ट की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि बिना अलर्ट के भी कई बार बादल उमड़ घुमड़ करके आ जाते हैं, बरस जाते हैं, और हमारे पास कोई भी अलर्ट नहीं होता है। तो ये है धर्मशाला का मौसम। और एक नई दिन की शुरुआत अब हो ही चुकी है, तो आइए ये गीत सुन लेते हैं। हम भी शुरुआत करते हैं इस प्यारे से भोर के गीत के साथ।

बावर्ची फिल्म का गीत अभी आप सभी ने सुना। लक्ष्मी शंकर, निर्मला देवी, किशोर कुमार, मन्ना डे और हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय की आवाजों में। रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और मैं हूं आपकी अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो श्रोताओं, ये जो गीत था ना, भोराई गया अंधियारा, भारतीय संगीत और लोक परंपरा का एक बेहद खूबसूरत और प्रतीकात्मक गीत। सुबह प्रभात के संदर्भ में इस गीत का महत्व केवल सूरज उगने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन को एक गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश भी देता है।

सुबह का समय जीवन में रीस्टार्ट का बटन दबाने जैसा होता है। रात चाहे कितनी भी लंबी, काली या कष्टदायी क्यों न रही हो, सुबह का उजाला उसे खत्म कर ही देता है। मनुष्य को यह संदेश देता हुआ कि अपनी चिंताओं और असफलताओं को कल की रात में ही छोड़ दें और एक नई उम्मीद के साथ नए दिन की शुरुआत करें। हम अपने फेसबुक पेज से भी लाइव हैं और कर रहे हैं आप सभी का इंतजार। अगर हम आध्यात्मिक संदर्भ में इस गीत की बात करें तो अंधेरा हमारे भीतर के आलस, अज्ञान और नकारात्मकता यानी कि नेगेटिविटी का प्रतीक है। और जबकि भोर जो है वो सुबह यानी ज्ञान, चेतना और सात्विकता की प्रतीक होती है। सुबह के समय जब आप ये गीत सुनते हैं या कभी भी किसी भी समय सुनते हैं तो इंसानी मन को ये झकझोर के चला जाता है और कहता है कि उठो, जागो, अपने कर्म पर

0: पर आगे बढ़ो। और प्रकृति में होने वाले बदलावों को खूबसूरती से दर्शाया भी गया है इसमें। ये गीत हमें प्रकृति की इस लय यानी रिदम से जोड़ता है जो कि हम कभी महसूस तो करते हैं लेकिन अच्छे से सुन नहीं पाते हैं, और हमारे भीतर एक नई ऊर्जा को भी ये लाता है, ताजगी भर देता है मन में। सुबह होते ही संसार की गतिविधियां शुरू हो जाती हैं, किसान खेतों में पक्षी दाने की खोज में, इंसान अपने कामों में निकल पड़ता है। जैसे आप भी अभी निकल ही गए होंगे घरों से, क्योंकि आप लोगों के भी ऑफिस टाइमिंग्स हो गए होंगे, या जहां पर भी आप काम करते हैं, चाहे सरकारी दफ्तरों में या प्राइवेट कहीं पर भी, तो समय पर पहुंचना भी जरूरी होता है ना। तो ये गीत एक अलार्म की तरह काम करता है। मैं तो कहती हूँ कि रोज सुबह आपको सुनना चाहिए ये गीत और हमें याद दिलाता है कि जीवन चलने का नाम है। और लीजिए, हमें लाइक्स भी आना शुरू हो गए हैं यहाँ पर। कौन है जरा कमेंट कर दीजिए ताकि हम आपका नाम भी श्रोताओं तक पहुंचा पाएं। थैंक यू वैसे जो भी हमें लाइक कर रहा है फेसबुक पेज पर। तो श्रोताओं, रात चाहे कितनी भी गहरी हो, सुबह की एक छोटी सी किरण उसका वजूद मिटा ही देती है। हमारे जीवन का अंधियारा भी ऐसा ही है। तो आइए अपने भीतर की ऊर्जा को, जो छुपी हुई हमारी चीज़ें हैं, उसको जगाएं, कल की चिंताओं को पीछे छोड़ें और प्रकृति के इस खूबसूरत संगीत के साथ नई एक शुरुआत करें। जी हाँ, लेकिन ध्यान से कान लगा करके हमें सुनना होगा कि आखिरकार ये प्रकृति हमसे कहती क्या है। जब हम मैं तो जब अपने रूम से बाहर निकलती हूँ, या पहले जब निकलती थी, अभी तो बिल्डिंग एक खड़ी हो गई है बहुत बड़ी सी हमारे घर के आगे। खैर, उसका भी एक अपना फ़ायदा है, हम अगर हर एक चीज़ में फ़ायदा देख लें तो अच्छी बात होती है। पहले हमें दिखता था, जैसे ही मैं अपने रूम से बाहर निकलती थी, तो पहाड़। लेकिन उस वक्त ना हम कदर नहीं करते थे उन चीज़ों की। मुझे ऐसा लगता था, ओहो ऊपर पहाड़ नीचे खड्ड, और गर्मियों के दिनों में भी इतनी ठंड लगती थी ना सुबह सुबह, जैसे ही निकलती थी मैं कमरे से बाहर। इंदु बाला जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? तो मैं आपको बता रही थी कि भाई जो भी कुछ प्रकृति हमें देती है ना, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अभी फिलहाल बढ़ते हैं हम प्रादेशिक समाचारों की ओर, उसके बाद बातें करेंगे बहुत सारी कार्यक्रम में।
1: पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने व सोने की अनावश्यक खरीद न करने का किया आह्वान। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में मुख्यमंत्री आज पेश करेंगे 3 अहम बिल। रोजगार की गारंटी पर शुरू हुई चर्चा का जवाब भी देगी सरकार। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा, हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर उपलब्ध करवाना है, समृद्ध व विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला। सिरमौर जिले के रुण नदी में फंसे 2 लोगों का कल रात 9 बजे हुआ सफल रेस्क्यू। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट किया जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार पुनः लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह करने से बचने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश में लोगों से कहा कि वे विदेशों में छुट्टियां मनाने, दूसरे देशों में जाकर शादी ब्याह करने और आवश्यक ना हो तो सोने की खरीदारी करने से परहेज करें। उन्होंने देशवासियों को 7.8% आर्थिक विकास दर हासिल करने पर बधाई दी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने व स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता बताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बावजूद भारत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। उन्होंने अपने आलोचकों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में कुछ लोग निराशा के माहौल में डूबे हुए हैं और हर तरफ झूठ फैला रहे हैं। प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मॉनसून सत्र की आज 9वीं बैठक है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। अधिक ब्यौरे के साथ समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी।
2: मॉनसून सत्र की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी, जिसमें विधायकों द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तीन अहम बिलों को सदन में विचार और पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे, जिनमें हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026, शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए लोक सुरक्षा व सुविधा संशोधन विधेयक सहित माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। इसके साथ ही नाबार्ड सड़कों में देरी और की कमी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सदन में आज विधायक पवन कुमार काजल व चंद्रशेखर सड़क व पुल के निर्माण में हो रहे विलम्ब व बसों की कमी से लोगों को हो रही असुविधा पर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। सदन में नियम 130 के तहत रोजगार की गारंटी पर आगे चर्चा शुरू होगी, जिसका सरकार की तरफ से आज भी जवाब दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं प्रियंका ठाकुर।
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में स्थापित 150 CBSE स्कूलों में शिक्षकों की तीन बार उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की जाएगी, जिसके तहत स्कूल दिवस के दौरान तीन चरणों में सुबह स्कूल पहुंचने के समय, दोपहर लंच ब्रेक के दौरान और स्कूल से छुट्टी के समय उपस्थिति दर्ज करवाना अनिवार्य होगा। शिमला में शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इन CBSE स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए अलग अलग ड्रेस कोड निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड इस वर्ष 1 अक्टूबर से निर्धारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की स्कूल वर्दी के संबंध में निर्णय अगले 1 सप्ताह के भीतर लिया जाएगा। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर उपलब्ध करवाना सशक्त, समृद्ध व विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है। हमीरपुर में एक से श्रेष्ठ पहल के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश की वास्तविक शक्ति उसके बच्चों में निहित है और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि सहित भौगोलिक स्थिति से परे हर बच्चे को शिक्षा, कौशल और अपनी प्रतिभा निखारने के लिए पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस नीति से समग्र, समावेशी व ज्ञान आधारित शिक्षा व्यवस्था की दिशा में परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि एक विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में खेल महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और खेल से जहां विद्यार्थी का शारीरिक विकास होता है, वहीं मानसिक विकास में भी बढ़ोतरी होती है। वे शिमला जिले में मशोबरा विकास खंड के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नीन में जोनल स्तरीय छात्रा वर्ग की अंडर-19 खेल प्रतियोगिता के शुभारम्भ अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की छात्राएं विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में देश प्रदेश का नाम रोशन कर हिमाचल को गौरवान्वित कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं को खेलों से जोड़ने व उन्हें नशे से दूर रखने के लिए सरकार ने जमीनी स्तर पर कई अहम कदम उठाए हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
3: सावधान, उच्च रक्तचाप एक खामोश खतरा। क्या आपको बार बार सिर दर्द, सीने में दर्द या चक्कर आते हैं? ये हाई बीपी के संकेत हो सकते हैं। अगर रोका न गया तो हो सकता है दिल का दौरा, लकवा या किडनी फेल।
4: घबराए नहीं, सरकार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बीपी की जांच और दवाइयां मुफ्त मिलती हैं।
3: आज ही अपना बीपी चेक कराए, नमक कम खाए, रोज टहले, तनाव से दूर रहे और हाई बीपी को कहे अलविदा।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: स्वस्थ हिमाचल, मजबूत हिमाचल।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। सिरमौर जिले के नाहन विधानसभा क्षेत्र के तहत वर्मा पापड़ी की रुण नदी में फंसे 2 लोगों का कल रात करीब 9 बजे सफल रेस्क्यू किया गया। 5 घंटे के इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वायुसेना के हेलीकॉप्टर के अलावा NDRF और होमगार्ड के जवानों ने विशेष भूमिका निभाई। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
6: दरअसल यहाँ एक व्यक्ति भैंसों को बचाने के लिए नदी में उतरा और पानी के तेज बहाव में फंस गया। इसी दौरान एक स्थानीय युवक भी इन्हें बचाने के लिए नदी में उतरा और वो भी बीच नदी में ही फंस गया, जिसके बाद प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचित किया, जिसके बाद सेना का हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचा और दोनों लोगों का रेस्क्यू किया जा सका। करीब 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसके बाद दोनों लोगों को बचाया जा सका। आकाशवाणी समाचार के लिए सतीश शर्मा।
1: इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल भी रुणा नदी में फंसे दो लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन के पूर्ण होने तक मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से आग्रह करने के बाद

0: के कचरा मुक्त होने से शहर में स्वच्छता को लेकर सकारात्मक संदेश गया है तथा लोगों ने राहत की सांस ली है। नगर परिषद के प्रधान आशा ठाकुर का कहना है कि परिषद शहर में सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है तथा उन्होंने लोगों से अपने घरों और दुकानों से निकलने वाले कचरे का उचित निपटारा करने तथा शहर को साफ सुथरा रखने में सहयोग की अपील की है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
1: प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। मॉनसून की वर्षा के चलते प्रदेश में अभी भी 60 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध है, जिन्हें खोलने के प्रयास जारी है। इसके अलावा 11 बिजली ट्रांसफार्मर और 39 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने विधानसभा सत्र से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। अमर उजाला मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है, सभी 6 विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती अब राज्य लोक सेवा आयोग से होगी। पंजाब केसरी लिखता है, सभी विभागों में तैनात मल्टी टास्क वर्कर के लिए बनेगी एक संयुक्त पॉलिसी। दिव्य हिमाचल व दैनिक जागरण की एक खबर है, CBSE स्कूलों में दिन में 3 बार लगेगी हाजिरी। कालका शिमला ट्रैक पर 13 सितंबर तक नहीं चलेंगी ट्रेन, शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है, गुम्मन रेलवे स्टेशन के पास रेल ट्रैक के नीचे करीब 20 फुट हिस्सा बहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने व सोने की अनावश्यक खरीद न करने का किया आह्वान। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में मुख्यमंत्री आज पेश करेंगे 3 अहम बिल। रोजगार की गारंटी पर शुरू हुई चर्चा का जवाब देगी सरकार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर उपलब्ध करवाना है समृद्ध व विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला। सिरमौर जिले के रुण नदी में फंसे 2 लोगों का कल रात 9 बजे हुआ सफल रेस्क्यू। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट किया जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: जो वृत्त

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। समाचारों और इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। 9:30 हो चुके हैं और आज का विचार तो आप लोगों ने सुन ही लिया। अब आप कहेंगे भाई कहाँ सुनाया? जी हाँ, जो गीत आपने सुना था ना, उसके बाद जितनी भी बातें हमने की वो सारी की सारी विचार ही थे। उस गीत में इतने सारे विचार छुपे थे और वैसे भी आज का सारा कार्यक्रम पूरा विचारों पर ही होने वाला है। वो कैसे? बस सुनते जाइए, आगे आगे हम धीरे धीरे खोलते रहेंगे अपना पिटारा। और ये जो गीत अब आप सभी के रेडियो सेट्स पर आ रहा है ना, इसमें भी विचार छुपे हुए हैं।

आंचल फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर की मधुर आवाज थी। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो श्रोताओं, आइए एक नजर डालते हैं 2 सितंबर के इतिहास पर। 1946 में भारत की अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभाला था, जिसके प्रमुख जवाहरलाल नेहरू थे, और इस व्यवस्था ने देश को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए तैयार किया था। ६५ में भारत पाकिस्तान युद्ध के दूसरे दिन पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने के कारण जमीनी स्तर पर तीव्र हलचल देखने को मिली। 1970 में भारत की संसद ने पूर्व महाराजाओं के आधिकारिक विशेषाधिकारों और निजी भत्तों को समाप्त करने के लिए मतदान किया था। 1970 में ही राष्ट्रपति वीवी गिरी ने कन्याकुमारी में स्थित प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल का उद्घाटन भी किया था। और 1998 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने चंदीपुर से स्वदेशी मानव रहित प्रशिक्षण विमान निशांत का सफल परीक्षण किया। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा तो चला ही हुआ है 25 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक, और उसके साथ ही पोषण पखवाड़ा भी हमारा 1 सितंबर से लेकर 30 तारीख तक चल रहा है। वैसे आधिकारिक तौर पर अगर बात करें तो ये 1 से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है, लेकिन पूरे महीने ही इसके बारे में बात तो की जाती है। और साथ ही है आज विश्व नारियल दिवस भी। तो बस अब आप समझ गए होंगे कि कार्यक्रम में किस किस विषय पर बात होने वाली है। खास बात हम करेंगे पोषण पखवाड़े पर, और मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को हमारा फोन नंबर नहीं पता है तो नंबर एक बार फिर से बता देती हूँ, 7018117091। अगर फोन, क्योंकि फोन का समय करने का आपके लिए थोड़ा सा लेट होता है, जब तक हम विषय नहीं बताते हैं तब तक आप फोन भी नहीं करते हैं, क्योंकि आपको भी समझने के लिए समय लगता है कि किस बारे में बात की जा रही है। परंतु जैसे जैसे हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते जाएंगे, आप मैसेजेस हमें कर सकते हैं, हमारे इसी फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके मैसेजेस हम पढ़ते जाएंगे साथ साथ में।

चलिए कार्यक्रम में सुनते हैं हम ये गीत। याद कीजिए वो समय जब वाकई में देश में बड़ी आर्थिक तंगी थी और खाना जो था वो मुहैया करना बहुत ही मुश्किल था, और अगर किसी के पास बहुत सारे बच्चे हों, जैसे कि कई संस्थाएं भी होती थीं जो कि बच्चों को संभाले रखती थीं, तो उनके लिए उन बच्चों को खाना प्रोवाइड करना कितना मुश्किल था। ये सुनते हैं इस गीत में। और आज हमारे पास कितनी सारी सुविधाएं हैं लेकिन हमें खाना खाना आता नहीं।

उजाला फिल्म का ये गीत मन्नाडे और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने सुना है 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और अभी चल रहा है पोषण पखवाड़ा, मतलब कि हम बात कर रहे हैं पोषण पखवाड़े के बारे में। दोस्तों, इस गीत में आपने सुना कि सूरज से आग्रह किया जा रहा है कि पास में आ जाओ, हम सपनों की रोटी बना लेते हैं। सोचिए कैसा समय था वो। तो श्रोताओं, पोषण पखवाड़े के इस विशेष सफर में आप सभी का स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं हमारी सेहत और हमारी थाली की। दोस्तों, एक दौर था जब हमारी दादी नानी को न्यूट्रिशन या फिर कैलोरी जैसे बड़े बड़े शब्दों का नहीं पता था, फिर भी वो घर के हर सदस्य को तंदुरुस्त रखती थी। क्यों? क्योंकि तब खेत से सीधा रसोई में आता था खाना, घर का शुद्ध घी, हाथ से कूटा हुआ अनाज और बिना केमिकल की सब्जियां। लोग शुद्ध निकालते थे और शुद्ध ही खाते थे, इसीलिए तब जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। खेतों की मेहनत ही सबसे बड़ी कसरत थी। पर आज क्या बदल गया है, आइए सोचते हैं और सुनते हैं इस प्यारे से खूबसूरत गीत को। इससे आपको पता चलेगा कि रूखी सूखी रोटी खाने में भी क्या मजा था, और अभी भी कई लोग तो खाते हैं।

श्रोताओं, पहले हम पेट भरने के लिए खाते थे, आज हम सिर्फ मन भरने के लिए खाते हैं। हमारी थाली से शुद्धता गायब हो गई है और उसकी जगह ले ली है मिलावट ने। डिब्बा बंद खाना, केमिकल से पकी सब्जियां और हर गली नुक्कड़ पे मिलने वाला फास्ट फूड। और आज के बच्चे दाल चावल हरी सब्जी देख करके मुंह बनाते हैं, लेकिन पिज्जा बर्गर और मैगीज देख करके उनके चेहरे खिल जाते हैं। कुछ भी खाकर पेट तो भर जाता है दोस्तों, लेकिन शरीर को जो पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता।

तो दोस्तों, बच्चों को कम उम्र में ही थकान, चश्मा और बीमारियां लग रही हैं। तो सवाल ये है कि आज के इस मिलावटी दौर में हम अपनी थाली को सुपर थाली कैसे बनाएं? आपको याद है बीच ही में, मतलब कुछ मिडिल ईरा में ये एड भी चलाई जा रही थी भारत सरकार के द्वारा,

अब इसको चलाने का क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि बच्चे जो हैं वो दूध पीते ही नहीं, तब भी नहीं पीते थे और अब भी नहीं पीते हैं, नाक भौं सिकोड़ते हैं।

0: बड़ा ढूंढ करके हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए ये छोटा सा ऐड का एक हिस्सा कि भाई दूध पीने से आप हेल्दी फिट एंड फाइन रहेंगे। वैसे आजकल तो वो वीगन का ज़माना आ गया है, लोग कहते हैं कि ये मत करो वो मत करो वो भी मत खाओ, लेकिन देखिए ना अब मिलावटें इतनी हो गई हैं चीज़ों में कि अगर हर चीज़ ही खाना छोड़ देंगे तो फिर कैसे चलेगा, हेल्थ कहाँ हमारी जाएगी। खैर हम बात कर रहे हैं पोषण पखवाड़े की। जिस तरह से हमारी सरकार जो है वो इस ओर ध्यान देती है, हर साल पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है, पूरा का पूरा एक महीना ही इसको डेडिकेट कर दिया जाता है, तो हमें तो रोज़ ही ये सोचना चाहिए कि हमें बस अपनी थाली को सुपर थाली बनाने के लिए थोड़े से बदलाव की ज़रूरत है। जैसे कि अपनी थाली में रंगों को शामिल कीजिए, सफ़ेद चावल के साथ लाल गाजर, हरी बीन्स, पीली दाल और दही। जितना रंग बिरंगा आपका खाना होगा उतने ही ज़्यादा विटामिन्स आपको मिलेंगे। और दूसरी बात, पैकेट बंद चीज़ों को बाय बाय कहिए, मौसमी फलों को अपनाइए। जो फल जिस मौसम में आता है वो उस मौसम की बीमारियों से लड़ने की ताकत रखता है। और अब बात थुन की, जो घर के सबसे बड़े नखरेबाज यानी कि हमारे बच्चे, अगर आप उन्हें ज़बरदस्ती उबली हुई लौकी खिलाएंगे तो कभी नहीं खाएंगे। स्मार्ट पेरेंट्स बनिए, हरी सब्जियों को पीस करके पराठे के साथ आटे में गूंद दीजिए, सूजी के चीरे में बारीक सब्जियां छिपा दीजिए या फिर फलों का शेक बना करके दीजिए। आपको पता है आज के कार्यक्रम में हम कान्हा यानी कृष्ण कन्हैया की बात भी करेंगे, तो कान्हा भी तो दूध दही माखन खाकर ही बलवान बने थे। तो बच्चों को जंक फूड की जगह पारंपरिक खाने का स्वाद चखाइए। याद रखिए, सेहतमंद बचपन ही मजबूत भविष्य की नींव है। चलिए बातें तो हम करते ही रहेंगे, बातों के साथ साथ अगर गीत भी सुन लिया जाए तो कार्यक्रम का मजा दो गुना हो जाता है।
1: रब वर्गा कोई सखी सुल्तान है नहीं।
0: गुरदासमान की आवाज में आप सुन रहे हैं रोटी, ये गीत। जी हाँ, इसमें रोटी की महत्ता आपको समझाई जाएगी।

0: तो दोस्तों, खुद आसमान की आवाज़ में अभी आपने सुना ये गीत रोटी पर आधारित था। वाकई में इसमें कितनी सारी अच्छी बातें बताई गई हैं ना, कि रोटी एक तो कमाने का सलीका होना चाहिए और दूसरा खाने का तरीका होना चाहिए, और माएँ जो हैं वो रोटी कितनी मुश्किल से बना करके अपने बच्चों तक लेकर जाती हैं, और बच्चे ऊपर से फिर जब नखरे करते हैं कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, बच्चों को शुरुआत से ही सब कुछ सिखाना चाहिए। यहाँ पर एक मैसेज आ गया है, हमने कहा था ना कि आप मैसेज भी कर सकते हैं कार्यक्रम में, तो मैसेज आया है इंदु जी का, और उनका कहना है कि मेरे बच्चे भी नखरे करते थे पर मैं उनको हमेशा ये कहती थी कि इसमें विटामिन है, आयरन और कैल्शियम है, इसको खाने से आपकी बॉडी बनेगी और आप स्ट्रांग बनोगे सबसे ज़्यादा, और अब मेरे बच्चे मैं जो भी बनाती हूँ खुश होकर के खा लेते हैं। इंदु जी, मुबारक हो आपको कि आपके बच्चे समझदार हो गए हैं, आपकी बात उन्होंने मान ली। और जो था इस वक्त हम अपने फेसबुक पेज से लाइव भी हैं, और अब आपको ये पता भी चल गया है कि आज हम किस विषय पर बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास और भी विषय हैं आज के कार्यक्रम में, उस पर भी धीरे धीरे हम बात करेंगे। लेकिन अब आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और इस विषय पर आप अपनी बातें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, रख सकते हैं, जैसे कि इंदु जी ने रखी है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर श्री कृष्ण का एग्जाम्पल भी दे रहे थे, उनके बारे में बात हम कार्यक्रम में आगे ज़रूर करेंगे, लेकिन अब आपको बता देते हैं कि आज विश्व नारियल दिवस भी है। वैसे हम पहले बता चुके हैं, लेकिन विश्व नारियल दिवस हर साल 2 सितंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य जो है वो नारियल के औषधीय, स्वास्थ्य, आर्थिक और महत्वपूर्ण महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है, और ये दिन पहली बार वर्ष 2009 में मनाया गया था। और SKC का जो सचिवालय है जकार्ता में इंडोनेशिया में स्थित, और भारत इसका एक संस्थापक सदस्य भी है, वहाँ से ये इसकी शुरुआत हुई थी। और नारियल का जो महत्व है ना, वो पता क्या है, नारियल को ट्री ऑफ लाइफ या फिर कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि इसका हर एक हिस्सा किसी न किसी रूप में हमारे काम आता है, इंसानों के काम आता है। खान पान और सेहत इससे हमारी सही रहती है। इसका पानी एक प्राकृतिक स्वास्थ्य पेय यानी हेल्थ ड्रिंक है, और इसकी गिरी से तेल, दूध तथा कई तरह के स्वादिष्ट पकवान बनते हैं। और कॉयर उद्योग की बात करें तो नारियल के छिलके और रेशों से रस्सी, चटाइयाँ, गद्दे और पर्यावरण के अनुकूल थैले भी बनाए जाते हैं, जो प्लास्टिक का एक अच्छा विकल्प है। इसके तने का उपयोग फर्नीचर बनाने और कड़े छिलके का उपयोग सक्रिय कार्बन यानी वाटर फिल्टर के लिए किया जाता है, हस्तशिल्प में भी उपयोग होता है। नारियल उत्पादन के लिए भारत में जो अग्रणी राज्य हैं वो हैं, सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक, तमिल और केरल जैसे दक्षिणी राज्यों में होता है नारियल का। और अगर वैश्विक स्तर पर बात की जाए तो दुनिया में नारियल उत्पादन में मामलों में इंडोनेशिया और फिलीपींस के साथ भारत शीर्ष देशों में से एक है। और डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं ना, जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है या किसी को जॉन्डिस हो जाता है, तो वो ये कहते हैं मूली खाओ या फिर जो नारियल पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा पियो। कोशिश करो कि अगर आपको ताज़ा मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वो डिब्बा बंद पैक्ड फूड भी आते हैं। अभी हम पहले ही बोल करके हटे हैं कि वो ना यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, परंतु अब हमारे आसपास में ये जो हरे नारियल हैं वो मिलना शुरू हो भी गए हैं। अब थोड़ी सी मेहनत करेंगे, इधर उधर झांकेंगे, देखेंगे तो आपको मिल भी जाएंगे, और जो व्यक्ति इनको लेकर के बैठते हैं उनकी भी कमाई में आप इजाफा करेंगे। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
1: लेटेस्ट अपडेट्स आइकन को

जी, तो गर्मियों के दिनों में आपने भी नारियल पानी खूब पिया होगा। अभी तो यहाँ पर थोड़ी ठंडक का माहौल शुरू हो गया है, लेकिन जो बाकी हमारे देश के कोने हैं वहाँ पर अभी भी गर्मी है भाई। तो नारियल पानी बॉडी की सभी ज़रूरतों को पूरा कर ही देता है। इक्यानवे दशमलव 2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से इस वक्त बात हो रही है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में पोषण पखवाड़े के बारे में। तो दोस्तों, इस सेक्शन में हमने जाना कि सेहत कहीं बाहर डिब्बों में नहीं बल्कि हमारी रसोई में छुपी है। शुद्ध खाइए, अपनों को खिलाइए और इस मिलावटी दौर में अपनी सेहत का ख्याल खुद रखिए। और चलिए तैयार हो जाइए अब हमसे फोन कॉल पे बात करने के लिए भी। अब सेहत का ख्याल रखने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है, जैसे कि हमने शो की शुरुआत में बात की थी। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने भी ग्वाले के रूप में गायें चराई थीं, शुद्ध दूध माखन खाया था, दुनिया को गीता का महान ज्ञान दिया था। तो आइए इस पावन महीने को कान्हा के उसी ऊर्जावान और सुंदर रूप में याद करते हैं।

जी श्रोताओं, श्री कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी भी पास ही है। श्री कृष्ण का जीवन किसी एक पड़ाव पर नहीं थमा, बल्कि उनके बचपन से लेकर देह त्याग यानी महाभारत के बाद तक का पूरा जीवन समाज के लिए एक महासंदेश रहा है।

कारागार मिजन में तुरंत माता पिता से बिछड़े और यमुना पार करके गोकुल पहुंचे। पूतना और शकटासुर जैसे राक्षसों का अंत किया। परिस्थितियां कितनी भी कठिन या अंधकारमयी क्यों ना हो, अगर आप धर्म के मार्ग पर हैं तो आपका जन्म और अस्तित्व सुरक्षित रहेगा। संकट की रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह यानी सवेरा जरूर आता है। दोस्तों, मटकी फोड़ना, सखाओं के साथ माखन चुराना, मैया यशोदा को ब्रह्मांड दिखाना बाल्यकाल में ही। कान्हा ने माखन कंस को टैक्स के रूप में भेजे जाने के विरोध में चुराया था। उनका संदेश था कि बच्चों के पोषण का हक पहले है। उन्होंने अमीर गरीब का भेद मिटा करके ग्वालों को अपना जूठा माखन भी खिलाया, जो समाज में समानता यानी इक्वालिटी का पाठ पढ़ाता है।

इंद्र की पूजा बंद करवाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाना और अपनी कनिष्ठ उंगली यानी लिटिल फिंगर पर पर्वत उठाना, ये रूप उन्हें दुनिया का पहला पर्यावरण विद यानी कि एनवायरमेंटलिस्ट बनाता है। उन्होंने सिखाया कि जो प्रकृति यानी पहाड़, नदियाँ, गायें हमें जीवन देती हैं, पूजा उनकी होनी चाहिए, न कि किसी काल्पनिक डर यानी इंद्र के प्रकोप की। साथ ही जब उसने सबने अपनी अपनी लाठियाँ पर्वत के नीचे लगाई तो संदेश मिला कि सामूहिक प्रयास यानी टीम वर्क से बड़े से बड़ा संकट टाला जा सकता है।

गोकुल वृंदावन के प्रेम और बांसुरी को पीछे छोड़कर के मथुरा जाना, धनुष यज्ञ भंग करना और अत्याचारी कंस का वध करना। यहाँ कृष्ण ने सिखाया कि जब समाज को आपकी जरूरत हो तो अपने सुख प्रेम और मोह को पीछे छोड़ करके कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना पड़ता है। अत्याचारी चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, उसका अंत निश्चित है। प्रजा की सुरक्षा के लिए द्वारका नगरी बसाना, जरासंघ के सामने मैदान छोड़ना और सुदामा जैसी मित्रता निभाना। राजा का पहला धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है, चाहे इसके लिए अपनी प्रतिष्ठा दांव पर क्यों ना लगानी पड़े। उन्होंने द्वारका में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव रखी और सुदामा के पैर धोकर के दिखाया कि पद और प्रतिष्ठा कभी भी मित्रता के आड़े नहीं आनी चाहिए। युद्ध में शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा, अर्जुन के सारथी बनना और कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देना, ये सब उनके चरित्र के रूप रहे। दोस्तों, भगवान होकर के भी एक रथ के ड्राइवर यानी सारथी बनना दिखाता है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। गीता के माध्यम से उन्होंने दुनिया को सबसे बड़ा संदेश दिया, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। उन्होंने सिखाया कि अपनों के खिलाफ भी अगर लड़ना पड़े तो धर्म और न्याय के लिए खड़े होना ही पड़ता है। उनका एक रूप और भी था कि महाभारत के बाद यदुवंश का विनाश देखना, गांधारी के श्राप को हंसकर स्वीकार करना और एक बहेलिया के तीर से देह त्याग करना। कृष्णा का यह अंतिम रूप समाज को सबसे बड़ा गंभीर संदेश देता है कि कर्म का नियम लॉ ऑफ कर्मा भगवान के लिए भी नहीं बदला जाता। अगर अपनी मानव शरीर लिया है तो आपको प्रकृति के नियमों, श्राप और मृत्यु को स्वीकार करना ही होगा। उन्होंने जाते जाते भी समाज को सिखाया कि जीवन के अंत को भी गरिमा और शांति से कैसे स्वीकार किया जाता है।

0: गोविंदर सिंह और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना जन्माष्टमी स्पेशल ये गीत 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो श्रोताओं, श्री कृष्ण का जीवन यही सिखाता है कि बचपन में मुस्कुराओ, जवानी में संघर्ष करो और युद्ध के मैदान में भी शांत रह करके सही फैसला लो, और जब जाने का वक्त आए तो बिना किसी मलाल के विदा हो जाओ।
1: अरे सुन भैया सुन, जरा दिल लगा के सुन। हाँ।
0: और अब ये जो गीत आ रहा है आप सभी के सामने, समझौता फिल्म का, मोहम्मद रफी और
1: यारी है हमको सारी दुनिया से प्यारी, अपना तो दिल है सादा फिर भी है अटल इरादा।
0: मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे हैं ये गीत, और इस गीत में भी कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में सोचिएगा। अगर आप उस तरह से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं।

तो श्रोताओं, ये गीत आपने अभी सुना समझौता फिल्म से। इक्यानवे दशमलव दो मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग धर्मशाला। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब हमने आपको बहुत सारे विषय दे दिए हैं। देखिए ना, विश्व नारियल दिवस भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, पोषण पखवाड़ा भी मना रहे हैं हम, इस पूरे महीने ही मनाएंगे। और साथ ही राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा तो चल ही रहा है, और नेत्रदान के बारे में आइए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताती हैं। पहले तो आप ये बताइए कि क्या आपने कभी सोचा कि आप जाते वक्त इस दुनिया को कुछ देकर जाएंगे? चाहे हम पूरी उम्र कोई सोशल वर्क ना कर पाएं, कुछ ना कर पाएं, हमारे मन में चीज़ें बातें दबी की दबी रह जाती हैं कि हम अपने परिवार के अलावा भी और कुछ करें, लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि अगर हमें कोई बीमारी नहीं है, हमारी आंखें ठीक हैं, तो जाते वक्त हम अपनी आंखों को दान कर जाएं? तो नेत्रदान से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण और ख़ास बातें ये हैं जिन्हें आप जान करके आप किसी के जीवन में रोशनी ला सकते हैं। नेत्रदान में पूरी आंख बाहर नहीं निकाली जाती, बल्कि आंख की केवल सामने वाली पारदर्शी परत, जिसको कि कॉर्निया कहते हैं, उसे ही प्रत्यारोपित किया जाता है। भाई, कई लोगों में धारणा ये होती है कि भाई अगर हम

यानी कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और अगर उसने अपने नेत्र दान किए हुए हैं तो फटाफट ही अस्पताल वालों को सूचित करना होता है ताकि वो जल्दी से जल्दी आकर के इस कार्य को पूर्ण कर लें। और एक मृत व्यक्ति के नेत्रदान से दो कॉर्नियल ब्लाइंड दृष्टिहीन लोगों को नई जिंदगी और रोशनी मिल सकती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपकी दोनों आंखें एक ही व्यक्ति को दे दी जाएंगी, दो व्यक्तियों को अलग अलग एक एक आंख लगाई जाती है। और किसी भी उम्र का व्यक्ति, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग, नेत्रदान कर सकता है। जो लोग चश्मा पहनते हैं उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है या फिर जिन्हें शुगर और ब्लड प्रेशर है वे भी नेत्रदान कर सकते हैं। तो ये जो मिथ कुछ फैले थे ना हमारे समाज में, उनका भी खंडन आज हम करते हैं। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सुन लेते हैं एक और खूबसूरत गीत।

जी हाँ, निगाहों ने तो फेंक दिया है पंजे पे छक्का, लेकिन इन निगाहों की जो देखभाल है वो भी करते हैं आप कि नहीं। जाली नोट फिल्म का ये गीत था आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में।

तो 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। बात कर रहे हैं हम नेत्रदान पखवाड़े के बारे में। तो आपको बता रहे हैं कि नेत्र दान जब हम करते हैं तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। आंखें निकालने की प्रक्रिया में केवल 10 से 15 मिनट का समय लगता है। इसे एक प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा घर या फिर अस्पताल में कहीं पर भी किया जा सकता है, और इससे चेहरे पर कोई निशान या विकृति भी नहीं आती। दान करने वाले डोनर और आंखें पाने वाले रिसिपिएंट की दोनों की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है। आंखें कभी भी बेची या खरीदी नहीं जा सकती। ये पूरी तरह से निशुल्क और सेवा का कार्य होता है। तो दोस्तों, अब ये तो आपने जान लिया कि कौन कौन नेत्रदान कर सकता है, लेकिन जो नहीं कर सकते हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। तो जो लोग एड्स, HIV, हेपेटाइटिस बी, सी, रैबीज, ब्लड कैंसर या किसी गंभीर संक्रामक बीमारी से पीड़ित होते हैं, उनकी आंखें दान नहीं ली जा सकती। तो अगर आप वाकई में कोई सोशल कॉज करना चाहते हैं तो अपने आप को बीमारियों से भी बचा करके रखें। और ये तो वैसे हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए कि हमारे शरीर के बारे में हमें ही देखना है कि हमें कैसे उसको बनाना है। और यदि किसी ने जीते जी नेत्रदान का संकल्प कर लिया है तो मृत्यु के तुरंत बाद उसके परिवार की सहमति भी अनिवार्य होती है। इसीलिए अपने फैसले के बारे में परिवार को जरूर बताएं ताकि समय रहते नजदीकी आई बैंक को सूचित किया जा सके।

0: और हम जानकारियां अभी आपको दे ही रहे थे, एक कॉल आ गई है, कॉल ले लेते हैं हम। हेलो
1: हेलो हेलो, नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है?
1: मैडम आपकी आवाज जो थोड़ी इको कर रही है।
0: बस हो गया, आप ठीक? अब हो गई ठीक?
1: इको इको कर रही है
0: अभी भी? कर रही है
1: जी, मैं आप सुर काम कर रही है।
0: हाँ जी जी, बताएं कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, किस विषय में बात करना चाह रहे हैं? आज बहुत सारे विषय थे हमारे पास।
1: मैं अनिल बोल रहा हूँ।
0: अनिल बलूरिया जी, जी आपका बहुत बहुत स्वागत है
1: जी।
0: अनिल जी, अगर मेरी आवाज फिर से इको करे तो बता दीजिएगा जरूर।
1: नहीं आप ठीक है, लगभग ठीक है
0: जी। बताएं आपकी शायद कर रही है, आपने कोई रेडियो सेट ऑन तो नहीं किया साथ में
1: जी?
0: आपने तो नहीं कोई रेडियो सेट ऑन किया हुआ है?
1: नहीं नहीं, नहीं। मैं उस बहुत दूर हूँ, रेडियो सेट से दूर हूँ जी। आप
0: रेडियो सेट दूर है जी? जी बताएं अनिल जी, क्या कहना है आज आपका?
1: पहले तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आपकी जो जो आपकी अमृत वाणी है जो आपकी अमृत वाणी है इसको सुन के अमृत तृषार्थ होते हैं।
0: धन्यवाद धन्यवाद।
1: आपकी मधुर वाणी ना, इसका जो प्रसाद मिलता है ना,
0: इसको
1: तो मैं ऐसे ऐसे ऐसे बोलूंगी आप एक आपको गुरु के पास उपाधि दी जाए तो कम नहीं है।
0: मैं तो कहती हूँ आप क्यों? गुरु हैं, क्योंकि आप देखिए हर एक विषय पर बात करते हैं, अच्छा लगता है।
1: क्योंकि क्योंकि आप से जो हमें सीखने को मिलता है ना बहुत ही कम ज्यादा है, मतलब बहुत, जिसको हम शब्दों में तारीफ नहीं कर सकते, उसको नहीं कर सकते, इसलिए शब्द मेरे पास भी नहीं है।
0: धन्यवाद। सारे आरजी कोशिश करते हैं अपनी अपनी तरीके से अच्छा ही कार्यक्रम करने की।
1: तो पहले तो हम नारियल दिवस है उसके बारे में ले लेते कुछ था।
0: नारियल दिवस? हाँ जी।
1: तो मैडम मैं तो एक ही बात बोलूँ कि नारियल तो हमारे जीवन से काफी संबंधित है। ऐसा कि आज से कुछ वर्ष पहले मैं ये देखता था कि हम नारियल के जो उपयोगिता है उसके बारे में बहुत ही अनभिज्ञ थे
0: जी।
1: पर आजकल लोग बड़े जागरूक हो गए हैं, क्योंकि नारियल को तो मैं इस तरह मानता हूँ कि नारियल को हम तीन प्रकार से यूज करते हैं। पहले तो कच्चा, फिर पक्का, लास्ट में भी यूज करते हैं
0: जी।
1: तो इसका मैंने एक बार जब मैं एपी में गया आंध्रा में 99 में
0: जी।
1: तो मैंने वहां देखा मैं कि इतना इसका उपयोग होता है। पहले कच्चे में इसको गर्मी में किया जाता है कि बहुत ज्यादा
0: जी।
1: ट्रकों के ट्रक आते हैं और एक एक घंटे में बिकते हैं। तो वो कच्चे कच्चा नारियल फिर पक्का नारियल आप जानते हैं, तो पूजा वगैरह में इसका उपयोग होता है, हर जगह होता है। उसके बाद जो निकलता है उसके बाद भी उपयोग होता है। जैसे जिस प्रकार बोलते हैं कि जैसे चना का चना जो काला चना बोलते हैं ब्लैक ग्राम, तो काला चना को जो पहले कच्चा यूज, जो काले चने की जो पत्ती होती है ना उस वक्त में उसका उपयोग होता है।
0: अच्छा, उसके बाद चना पोषण वाले सेक्शन पे आ गए आप अब।
1: हाँ एक मिनट, तो चने को भी हम तीन प्रकार से करते हैं, उसी प्रकार नारियल को तीन चार प्रकार से उपयोग करते हैं। उसके बाद आपका एक विषय था भी बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट है
0: जी।
1: उपयोग है तो उस विषय के आप बोले नेत्र दान का विषय है। तो मैं आपसे एक बात बोलूँ की आंखों के विषय में तो ये है, अगर आपकी आंखें है ना तो सारा जहान है।
0: बिल्कुल।
1: अगर आपकी आंखें नहीं है ना तो अंधकार में है, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस तो मैं किसी की बात नहीं करूंगा, किसी सुनी सुनाई कहानी नहीं है, अपने जीवन से ही है।
0: अच्छा।
1: मैं जब व्हेन आई वाज रीडिंग सेकंड क्लास, जब मैं सेकंड नंबर था तो मैं एक और ब्लाइंड हो गया।
0: अच्छा।
1: तो उस वक्त मैं लगभग तो कोई एक साल भर इसका दस झेला है मैंने, कि तब मुझे पता कि अंधापन क्या होता है, और मतलब आदमी कैसे सर्वाइव करता है।
0: जब हम किसी चीज से जूझ रहे होते हैं ना, तभी उस चीज का महत्व पता चलता है ना।
1: मतलब उसको अंदर बाहर जाना भी उसके लिए मुश्किल होता है, हर बार चीज को उसको पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ता है
0: जी।
1: तो उन दिनों को मैंने देखा एक्सपीरियंस के बहुत मुश्किल होता है। तो मतलब हर चीज के लिए दूसरे पर ही निर्भर रहना पड़ता है
0: जी। तो कि आपने संकल्प लिया है कि आप करेंगे नेत्र दान?
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसा कि मतलब मैं उन दिनों छोटा था तो अचानक मेरी रोशनी चली गई। तो मेरे नानके पंजाब में थे, तो उन दिनों टेलीफोन नहीं होगा, लेटर के जरिए ही संपर्क होता था। तो हमने यहाँ से लेटर लिखा उनको, तो मुझे आगे वो पहले यहाँ भी दरभंगा में चेक करवाया, उसके बाद यहाँ से लेके पंजाब में चले गए। अच्छा। अच्छे से डॉक्टर के पास दिखाया
0: जी।
1: फिर उन्होंने भी वो भी बोलते इस लड़के का रेटिना ठीक है, ग्लूकोमा ठीक है, हर चीज मतलब जितने पोषण थे आंखों के 4-5 पोषण होते हैं सारे ठीक थे, लेंस भी ठीक, हर कुछ ठीक था। तब फिर उसके बाद रोशनी वापस नहीं आई, तो काफी जब हम अपने आप से हार गए तो डॉक्टर भी हार चुके थे, उम्र में लगभग 8 महीने निकल चुके थे।
0: अच्छा।

0: फिर मेरा जो दादी जी थी वो बड़े डिवोटी थे बाबा बालकनाथ जी के। तो जब हम बाबा बालकनाथ जी के संपर्क में गए तो आज मेरी जो रोशनी है वो भी तब उन्हीं की जी हुई है।
1: चलिए, ये आस्था का विषय है, अच्छी बात है। हाँ जी,
0: तो मैं बोल रहा हूँ कि ये हम बोल रहे हैं हमारे भारत वर्ष में तो हम हिमाचल में देवभूमि है, इसमें कुछ बुराई नहीं है
1: जी।
0: जब डॉक्टर हार गए, हमारी साइंस हार गई, सब कुछ हार गया, तो हमारे मतलब देवता लोग भी हमारी सहायता करते हैं। हाँ। तो आज मेरी जो आंखों की रोशनी है, दुनिया को देख रहा, सुंदर दुनिया को देख रहा हूँ। हाँ। सब उन्हीं की दी हुई मतलब मेरे लिए प्रसाद है।
1: लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तीनों विषय पर तो आपने बात हमसे कर ली है।
0: मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, अपनी जो ग्रास रूट्स है उनसे जुड़े रहिए।
1: हाँ।
0: और कभी भी जिंदगी में हम बोलते हैं कि भगवान ने मुझे क्या दिया।
1: हाँ।
0: अरे भगवान ने तुम्हें क्या देना है? भगवान ने तुम्हें सब कुछ दे रखा है, है ना। हम छोटी छोटी चीजों पर निराश होते हैं तो हम भगवान पर गुस्सा निकाल देते हैं।
1: हाँ,
0: तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए, अक्सर लोग करते हैं। तो मतलब भगवान ने सब कुछ दिया हमें, जल वायु हवा वायु जो भी है सब उसी का दिया,
1: हम कुछ लेकर नहीं आए थे। और हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने कार्यक्रम में कॉल किया और इसी तरह से कॉल करते रहे और बस सारे विषयों पे बात।
0: धन्यवाद, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

श्रोताओं, ये अनिल बलूरिया जी ने अपनी बातें कह दी हैं आज भी, और हम शुक्रगुजार हैं इनके कि हर बात पर ये बात करते हैं, हर विषय पर। और हम आपको जानकारियां दे रहे थे और अब रह गया है हमारे पास थोड़ा सा समय, तो जल्दी से जानकारियां ले लेते हैं। तो हमने आपको बताया कि जाहरवीर, गुगा जाहरवीर पीर जी के जो मेले हैं वो चले हुए हैं, और बारिश ने डल झील खोलने की तैयारी पर फेर दिया है फिर से पानी। अब लेवलिंग का काम अटक गया है। और आपको ये भी बता दूं कि अब 19 सितंबर को राधा अष्टमी का नौण भी आ रहा है, और उससे पहले इन्हें डल झील को ठीक करना ही होगा। और 7 स्वर्ण पदकों के साथ धर्मशाला कॉलेज के कैडेट्स का बढ़ गया है दबदबा।

सराय का व्यापारीकरण गलत है, रेडक्रॉस नहीं चला सकता, तो मेडिकल कॉलेज अथवा लोक निर्माण विभाग को सौंप दे ये जिम्मेवारी। ये कहना है शांता कुमार जी का। कल रवाना होगी भागसुनाग से नाग डल की पारंपरिक छड़ी यात्रा। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भागसुनाग से नागडल के लिए एक पारंपरिक छड़ी यात्रा 3 सितंबर को रवाना होगी। भागसुनाग मंदिर के पुजारी अरुण पंडित ने बताया है कि वो यात्रा पिछले वर्ष कई वर्षों से आयोजित होती आ रही है, क्षेत्र की धार्मिक आस्था और समृद्ध संस्कृति का प्रतीक बन चुकी है। मान्यता ये है कि भागसुनाग मंदिर के पवित्र कुंड में पानी का मुख्य स्रोत नागडल झील है, जिसके चलते इस यात्रा का विशेष धार्मिक महत्व है और यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। 4 सितंबर को नागडल झील में वार्षिक नौण यानी शाही स्नान होगा और उसके बाद श्रद्धालु वापस लौटेंगे और त्रियुंड में एकत्रित होकर के भंडारा और हवन यज्ञ में भाग लेंगे। और जैसा कि हम अभी बता रहे थे, राधाष्टमी के अवसर पर 19 सितंबर को भागसुनाग में भव्य धार्मिक कार्यक्रम और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। तो इस संबंध में SDM धर्मशाला मोहित रतन ने भी बरसात के मौसम को देखते हुए श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। हम भी श्रद्धालुओं से ये कहना चाहते हैं कि भाई देखिए, जिस तरह से आप पिछले समय दिनों में दूसरे राज्यों से आ रहे थे और विदाउट हेलमेट विदाउट चप्पल मतलब नंगे पांव ही चले हुए हैं बाइक्स में, एक नहीं तीन लोग साथ साथ में इकट्ठे साथ में लाउड स्पीकर लगाए हुए हैं बाइक्स के ऊपर, वो कि जब गांधी पार्क में वहाँ रोक रोक करके उनसे वो सारे लाउड स्पीकर निकलवाए गए, जब्त किए गए, वो नज़ारा मैंने भी देखा था, वहाँ पर मैं भी मौजूद थी। तो सुनी सुनाई बातों पर ज़रा कम यकीन होता है, तो जब सामने सामने हमने आँखों के सामने ये चीज़ें होती हुई देखी तो वाकई में लगा कि क्या करते हैं लोग, और यहाँ पर आकर के ही इन्हें रोका जाता है, टोका जाता है, तो पीछे इतने सारे क्रॉसिंग्स वो जब निकल करके आ जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें क्यों नहीं पूछा जाता, पकड़ा क्यों नहीं जाता। तो यही है कि श्रद्धालुओं को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आखिरकार वो कर क्या रहे हैं। और हम बाहर वालों को बोले ही क्यों, पहले तो हमें खुद ही अपने प्रदेश का ध्यान रखना चाहिए। हम खुद ही अगर कूड़ा कचरा नहीं फैलाएंगे जहाँ पर भी जाएंगे तो सामने आगे आने वाले को भी देख करके अच्छा लगेगा और उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि किसी साफ जगह पर वो कोई भी चिप्स का पैकेट फेंक दे, क्योंकि सामने वाला भी फेंकेगा वहीं पर जहाँ पर कि कूड़े का ढेर ऑलरेडी लगा ही होगा। तब माइंडसेट ऐसा हो जाता है, पड़ा तो हुआ है, चलो और भी डाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है एक पैकेट से, है ना। लेकिन फ़र्क पड़ता है, और शायद आप लोग देख भी रहे होंगे, यही फ़र्क डलवाने की कोशिश हम कर भी रहे हैं अपने रील्स के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए, चाहे वो रेडियो का माध्यम हो या फिर सोशल प्लेटफॉर्म का माध्यम हो। तो अगर आपको कहीं मैं दिख जाऊं तो प्लीज़ हमारी मुहिम से जुड़िएगा क्लीन धर्मशाला। और आप कहेंगे कि सिर्फ धर्मशाला ही धर्मशाला है, नहीं, ऐसा नहीं है, धर्मशाला में बहुत सारे वार्ड्स हैं, बहुत सारी पंचायतें भी हैं। तो आखिरकार धर्मशाला एक बहुत बड़ी तहसील है दोस्तों। जब धर्मशाला की बात होती है तो सिर्फ एक छोटी सी सिटी मत मानिए, पूरी तहसील को लेके चलिए, उसमें बहुत सारे एरियाज आते हैं और सभी की तरफ हमारा ध्यान भी है।

तो चलिए अब इसी वादे के साथ, जैसा कि ये गीत आ रहा है आप सभी के सामने, कि फिर मिलूंगी ज़रूर आपसे। अब कार्यक्रम का समय थोड़ा सा रह गया है, ज्योति पठानिया को दे दीजिए इजाज़त कार्यक्रम संपन्न करने की। आपको बता दूं कि हमारे साथ तकनीकी सहयोग दिया शशि ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहे संदीप परमार। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: छोटे, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट
2: सर, टेस्ट ड्राइव।

0: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
1: अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
2: कन्हैया आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और खुशियों के रंग भरे।

परसों आने वाला है जन्माष्टमी का पावन पर्व। मुरली के मधुर तान, नंदलाल की मनमोहक मुस्कान, माखन की मिठास और राधा कृष्ण के प्रेम की पहचान। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को अरहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: अरे चुप। गर्भवती महिला को रोज रात खाने के बाद एक आयरन वाली IFA की गोली कम से कम 100 दिन तक खिलाओ ताकि उसे खून की कमी ना हो। पर वे गोली खाने से कभी कभी,
1: अरे कभी कभी, अरे कभी कभी, अरे कभी कभी,
0: अरे चुप यार, कभी कभी जी मिचलाएगा।
1: खूब पानी पियो ठीक हो जाएगा।
0: कब्ज हो या काला मल,
1: धीरे धीरे होगा हल।
0: भूल जाओ अगर गोली खाना,
1: तो पति या सासू माँ से कहना याद दिलाना।
0: अगर गोली की सप्लाई खत्म हो जाए तो खुद आंगनवाड़ी, ANM दीदी या केमिस्ट से लाना।
1: तो आ जाओ ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना, ध्यान से सुनना।
2: आपने श्री कृष्ण को नहीं देखा लेकिन फिर भी उन्हें मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा और उनका रिश्ता आंखों का नहीं आत्मा का है। जब भी हम टूटते हैं और कोई ना समझे, तब अंदर से एक शांति उठती है। वही श्री कृष्ण है। हमारे आंसू भी उन्हें बुलाते हैं और हमारे मुस्कान भी। हमने उन्हें शायद देखा नहीं, पर वो हर बार हमें देख रहे होते हैं। कृष्ण दूर नहीं, बस थोड़ा विश्वास चाहिए। सच्चे मन से कहिए राधे।
3: साइबर फ्रॉड की दुनिया में आपका इस्तेमाल किया जाता है इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए और आपको बनाया जाता है उसका जरिया। इस स्कैम में होता क्या है कि साइबर स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर फोन पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए ऑनलाइन जॉब के नाम पर आपको पैसा कमाने का लालच देते हैं, और अगर आप इनके जाल में फंस जाते हैं तो ये स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए, यानी उसको यूज करना शुरू कर। ध्यान रहे कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का इलीगल पैसा अगर अपने अकाउंट में एक्सेप्ट करता है या फिर अपने अकाउंट से दूसरे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उनके खिलाफ तो केस दर्ज होगा ही, साथ ही पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिनका अकाउंट धोखे से इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। केस दर्ज के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। तो याद रखिए, नौकरी के नाम पर, पैसा कमाने के नाम पर अगर आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफर का लालच देता है, उसको हरगिज एक्सेप्ट मत करिएगा, बल्कि उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गए तो बड़े कानूनी झमेले में फंसेंगे आप।
4: सूरज।
5: हाँ बोल।
4: कल मैंने तेरे बेटे को कुछ लड़कों के साथ देखा है, वो लड़के ठीक नहीं है, नशे वशे के चक्कर में कहीं फंस गए।
5: तुझे नहीं लगता तू मेरे बेटे को बदनाम कर रहा
6: है? अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने ही पीछे रह जाते हैं। कई बार सच सामने दिख रहा होता है पर उसे सामना करने का समय नहीं होता, क्योंकि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो समाज में नाक कट जाएगी। इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं, पर पूछना जरूरी है।
5: वैसे तो हर बाप इस सवाल का जवाब ना सुनना चाहेगा, पर अगर तू हाँ भी कहेगा तब भी तेरा बाप तेरा साथ देगा। नशा तो निकलने लगा।
6: याद रहे, समाज से नशे को खत्म करने की लड़ाई पहले आपके घर से शुरू होती है। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत।
7: बहुत शरीफ बीवी मिली है तुम्हें, तभी तुम्हारी जुबान ऐसे हर समय पटर पटर चलती रहती है। कोई मिल जाती ना तेज तरह तो पता चल जाता तुम्हें।
8: तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी।
7: तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी।
8: जा जाके कटवा ले अपनी जुबान, तू भी सुखी और मैं भी सुखी।

आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट
2: सर, टेस्ट ड्राइव।
1: टेस्ट।
3: बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लूंगा।
4: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
5: कन्हैया आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और खुशियों के रंग भरे।

परसों आने वाला है जन्माष्टमी का पावन पर्व। मुरली के मधुर तान, नंदलाल की मनमोहक मुस्कान, माखन की मिठास और राधा कृष्ण के प्रेम की पहचान। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को आ रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार की हार्दिक शुभकामना।

0: अरे चुप। गर्भवती महिला को रोज रात खाने के बाद एक आयरन वाली IFA की गोली कम से कम 100 दिन तक खिलाओ ताकि उसे खून की कमी ना हो। पर वे गोली खाने से कभी कभी,
1: अरे कभी कभी, अरे कभी कभी, अरे कभी कभी,
0: अरे चुप यार, कभी कभी जी मिचलाएगा।
1: खूब पानी पियो ठीक हो जाएगा।
0: कब्ज हो या काला मल,
1: धीरे धीरे होगा हल।
0: भूल जाओ अगर गोली खाना,
1: तो पति या सासू माँ से कहना याद दिलाना।
0: अगर गोली की सप्लाई खत्म हो जाए तो खुद आंगनवाड़ी, ANM दीदी या केमिस्ट से लाना।
1: तो आ जाओ ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना, ध्यान से सुनना।
2: आपने श्री कृष्ण को नहीं देखा लेकिन फिर भी उन्हें मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा और उनका रिश्ता आंखों का नहीं आत्मा का है। जब भी हम टूटते हैं और कोई ना समझे, तब अंदर से एक शांति उठती है। वही श्री कृष्ण है। हमारे आंसू भी उन्हें बुलाते हैं और हमारे मुस्कान भी। हमने उन्हें शायद देखा नहीं, पर वो हर बार हमें देख रहे होते हैं। कृष्ण दूर नहीं, बस थोड़ा विश्वास चाहिए। सच्चे मन से कहिए राधे।
3: साइबर फ्रॉड की दुनिया में आपका इस्तेमाल किया जाता है इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए और आपको बनाया जाता है उसका जरिया। इस स्कैम में होता क्या है कि साइबर स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर फोन पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए ऑनलाइन जॉब के नाम पर आपको पैसा कमाने का लालच देते हैं। और अगर आप इनके जाल में फंस जाते हैं तो ये स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए, यानी उसको यूज करना शुरू कर। ध्यान रहे कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का इलीगल पैसा अगर अपने अकाउंट में एक्सेप्ट करता है या फिर अपने अकाउंट से दूसरे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उनके खिलाफ तो केस दर्ज होगा ही, साथ ही पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिनका अकाउंट धोखे से इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। केस दर्ज के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। तो याद रखिए, नौकरी के नाम पर, पैसा कमाने के नाम पर अगर आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफर का लालच देता है उसको हरगिज एक्सेप्ट मत करिएगा, बल्कि उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गए तो बड़े कानूनी झमेले में फंसेंगे आप।
4: सूरज।
5: हाँ बोल।
4: कल मैंने तेरे बेटे को कुछ लड़कों के साथ देखा है, वो लड़के ठीक नहीं है, नशे वशे के चक्कर में कहीं फंस गए।
5: तुझे नहीं लगता तू मेरे बेटे को बदनाम कर रहा है?
6: अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने ही पीछे रह जाते हैं। कई बार सच सामने दिख रहा होता है पर उसे सामना करने का समय नहीं होता, क्योंकि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो समाज में नाक कट जाएगी। इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं, पर पूछना जरूरी है।
5: वैसे तो हर बाप इस सवाल का जवाब ना सुनना चाहेगा, पर अगर तू हाँ भी कहेगा तब भी तेरा बाप तेरा साथ देगा। नशा तो निकलने लगा है।
6: याद रहे, समाज से नशे को खत्म करने की लड़ाई पहले आपके घर से शुरू होती है। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत।
7: बहुत शरीफ बीवी मिली है तुम्हें, तभी तुम्हारी जुबान ऐसे हर समय पटर पटर चलती रहती है। कोई मिल जाती ना तेज तरह तो पता चल जाता तुम्हें।
8: तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी।
7: मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी।
8: जा जाके कटवा ले अपनी जुबान, तू भी सुखी और मैं भी सुखी।

0: धर्मशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप सभी की अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे हैं और अपनी सेहत का ध्यान बहुत ही अच्छे से आप सभी रख रहे हैं बदलते मौसम के साथ। तो दोस्तों, इस हफ्ते भी आप सभी के लिए बहुत ही खास जानकारी, बहुत ही खास कार्यक्रम आप सभी इंजॉय करते हैं, मन संवाद एक प्रयास मन की ओर। और इस कार्यक्रम में आप सभी जुड़ते हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और साथ ही
1: प्रेयसी के साथ।
0: जी, तो स्वागत है मैम का हमारी इस अगली कड़ी में हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं के साथ।
1: थैंक यू सो मच रुचिका
0: जी। तो कैसे हैं आप? और आप हमारे दोस्त तो बहुत ही अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं स्वास्थ्य का, आप किस तरह से अपना ध्यान रख रहे हैं?
1: हम अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं। बदलते मौसम के साथ गर्म पानी का जो उपयोग है वो बढ़ चुका। देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें हमारा सिर्फ जो फिजिकल हेल्थ है वही नहीं, लेकिन हमारा मेंटल हेल्थ भी हमारे स्वास्थ्य का ही हिस्सा है। तो जैसे कि सुबह होती है, सुबह होते ही मॉर्निंग वॉक पर जाना, नेचर के बीच में पानी को बहते हुए देखना, सूरज की पहली किरणों को देखना, चिड़िया को आवाजों को सुनना, ये एक ऐसी चीज है जो हमारे दिन को बहुत ही बेहतर और खूबसूरत बना देती है। क्योंकि इसके साथ साथ हमें सिर्फ फिजिकली नहीं फायदा हो रहा है, हमें मेंटली इमोशनली भी बहुत फायदे होते हैं। उसके बाद वही अपना काम, अपना डेली का रूटीन, हेल्दी डाइट और समय से सो जाना।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, मैम ने बहुत ही ये एक सही और जरूरी बात आप सभी के लिए, बातों ही बातों में लेकिन देखिए कितनी जरूरी बात आप सभी तक पहुंची है। और इसे हम एक कह सकते हैं कि दिन की शुरुआत इस तरह से अगर हम करें तो बहुत ही प्यारा सा दिन जाता है, यानी कि सुबह की शुरुआत अच्छी होगी तो हर पल हमारे लिए अच्छा ही जाएगा। तो जैसे कि मैम ने कहा कि मॉर्निंग वॉक और प्यारे प्यारे पक्षियों की वो पीठी सी आवाज जब हम सुन लेते हैं तो सच में एक अलग ही सुकून मिल जाता है, और अगर थोड़ा बहुत भी आलस है तो वो भी दूर हो जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों, इस तरह से अगर हम सुबह की शुरुआत करें, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं मैम कि सुबह उठते ही बस ये होता है टेंशन कि बस हमें ये काम निपटाना है और फटाफट से बस उस रूटीन में हम शुरू हो जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये जरूरी सी चीजें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, भूल जाते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड ही, और अभी हमने बात भी कर ली कि रूटीन किस तरह से, तो मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम में हमें अपने दोस्तों के लिए एक बहुत ही खास बात जो है वो बतानी चाहिए, या यूं कहें कि जानकारी दोस्तों तक पहुंचानी चाहिए। तो अभी बात की ना कि हर चीज हमारी हेल्थ के लिए जरूरी है, मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। तो आजकल मैम आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम, चाहे बच्चों की बात करें या बुजुर्ग, खैर उनकी एज के साथ साथ तो चेंजेस आते हैं, लेकिन बच्चों की या युवाओं की हम बात करें तो स्लीपिंग का एक पैटर्न जो है वो कहीं गड़बड़ा सा गया है?
1: डेफिनेटली।
0: तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, स्लीप अपने आप में एक रिदम के अनुसार काम करती है, इसको हम बोलते हैं स्लीप वेक साइकिल। तो जैसे प्रकृति में आप हर जगह देखेंगे तो हर चीज एक साइकिल के तौर पे चलती है, चाहे वो वाटर साइकिल हो या फिर आपका ब्लड सर्कुलेशन हो, तो यानी अंदरूनी दुनिया हो या बाहरी दुनिया, हर चीज एक साइकिल के तौर पे चल रही है। ठीक उसी प्रकार से हमारी स्लीप वेक साइकिल होती है, जो हमारी सर्काडियन, जिसको हम सर्काडियन रिदम भी बोलते हैं। तो ये एक ऐसी रिदम है जो नेचर के साथ अलाइन होकर हमारे जो हार्मोन्स है उसमें बदलाव लाती है और हमारी बॉडी का ख्याल रखने में हमारी सहायता करती है। तो जब हम स्लीप वेक साइकिल हमारी डिस्टर्ब होती है, देखिए इसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो जैसा आपको पता है रुचिका, आज के समय पे जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, जो फोन का यूसेज इतना बढ़ चुका है, और यहाँ तक कि इवन काम के लिए भी लोगों को नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है
0: जी।
1: और लोगों में इतना अकेलापन आ चुका है क्योंकि फोन साथ में है हमेशा, तो एक डिस्कनेक्ट हो चुका है फ्रॉम ह्यूमन कनेक्शन इटसेल्फ, और एआई के बढ़ते हुए ये चीज बस बढ़ती ही जा रही है। तो इन सब के होते हुए हमारी स्लीप वेक साइकिल या स्लीप का डिस्टर्ब होना बहुत आम हो चुका है।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, ये प्रॉब्लम जैसे अभी हमने बात की तो आपको भी लग रहा होगा कि ये तो आए दिन हमारे साथ भी होता है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस बात को पिंच कर रहे होंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, ये जैसे ही हम अपने आप को कुछ चीजों से अलग करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार हमें रियलाइज हो जाता है, तो फिर हम अगर खुद को दूर करना चाहें लेकिन जो फैसिलिटीज है वो हमें और अपनी ओर आकर्षित कर ले लेती हैं। अब जैसे जहां हम ये चाह रहे थे कि हम फोन का यूज ज्यादा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम स्क्रीन टाइम को कम करें, लेकिन अब एआई का जो एक और न्यू एडिशन हमारी लाइफ में हो गई है तो फिर हम और छोटी छोटी सी चीजों के लिए उसके सहारे पे
1: बिल्कुल
0: मोबाइल के साथ फिर से कनेक्ट हो गए हैं,
1: डिपेंडेंसी
0: बढ़ गई है। तो बिल्कुल दोस्तों, आज के कार्यक्रम में जो हम स्लीपिंग की बात कर रहे हैं तो उस पर बातचीत करने वाले हैं। बहुत खास ये जानकारी आप सभी के लिए रहने वाली है क्योंकि ये इशू बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि आजकल आप सभी जानते हैं कि बच्चा जन्म लेते ही थोड़ा सा टाइम अभी उसे होता है और फोन हाथ में पहले ही आ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं नींद डिस्टर्ब होती जाती है, तो हमारी जो एक डेली रूटीन है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो जरूर बात करेंगे, लेकिन मैम एक प्यारा सा छोटा सा ब्रेक लें।
1: बिल्कुल
0: जी। तो दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से इस प्यारे से गीत के बाद। आप सभी इसी तरह से एंजॉय कीजिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: तो दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और बहुत ही खास ये कार्यक्रम मन संवाद एक प्रयास मतियौर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ।
0: जी दोस्तों, तो मैम आपके लिए बहुत ही खास जानकारियां लेकर आते हैं और ये हमारी डेली रूटीन से जुड़ी हुई होती है, तो जितना ध्यान से हम इन्हें जान सके, जितना ध्यान से हम इन्हें सुन सके और अपनी जिंदगी में से अप्लाई कर सके, वो हमारे लिए उतना ही बेहतर रहेगा। तो हमारी ये कोशिश है कि आप अपने आप को सतर्क करें हर एक छोटी से छोटी बात के लिए। तो उसी के चलते आज हम ये बहुत ही खास स्लीपिंग से संबंधित बातचीत आप सभी के लिए लेकर आए। तो मैम, अभी आपने बात की कि जो हमारा स्लीपिंग वेक साइकिल होता है तो वो किस तरह से रोल रहता है, क्या रहता है, तो सबसे पहले तो हमारे दोस्तों को ये जानना जरूरी है कि स्लीपिंग वेक साइकिल होता क्या है, इसका क्या रोल रहता है।
1: बिल्कुल, देखिए हमारे शरीर में एक हार्मोन रहता है जो हमें नींद प्रोड्यूस करता है बेसिकली, और इस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे डे टाइम या सनलाइट के एकदम डायरेक्टली प्रभाव में रहता है। तो जैसे जैसे दिन चढ़ता है, जैसे जैसे सनलाइट आती है, वैसे वैसे मेलाटोनिन का असर कम होने लगता है, तो इंसान वेकिंग स्टेट में आने लगता है। और जैसे जैसे शाम होने लगती है, सनसेट होने लगता है, वैसे वैसे मेलाटोनिन का प्रोडक्शन हमारे अंदर बढ़ने लगता है, जिसके कारण वश हमें नींद आने लगती है। अब आप देखेंगे प्रकृति में जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो चिड़िया हो या पेड़ पक्षी हो या पौधे हो, वो सब सनलाइट या डे और नाइट का जो स्केड्यूल है उसके अनुसार जागते हैं और सोते हैं, राइट
0: जी।
1: ठीक इसी प्रकार से ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन अफसोस की बात है कि अब ये काफी ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। जब हम बात करते हैं स्लीपिंग की, तो स्लीप की अपनी एक अलग साइकिल है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप सोने जाते हैं तो कैसे धीरे धीरे जाकर नींद आती है,
0: बिल्कुल,
1: और उसके बाद कभी कुछ सपने आ रहे होते हैं, फिर कभी कुछ जो भी आज के दिन में जो भी कुछ हुआ होता है वो सारी चीजें बातें चल रही होती हैं, उसी का ही सपना भी बन जाता है। और सोते वक्त बीच बीच में हम करवटें लेते हैं, हमारी आंखें हल्की सी खुलती हैं, हम करवट लेते हैं और फिर से सो जाते हैं, और जब सुबह होती है तब नींद इतनी गहरी होती है कि उठने का मन ही नहीं करता, लगता है नींद कितनी अच्छी आ रही है।
0: सही बात,
1: अब हमें कोई ना उठाए।
0: वो सर्दियों में खासकर बहुत ही ज्यादा हो जाता है,
1: बहुत ज्यादा हो जाता है
0: जी।
1: तो ये सारा जो एक प्रक्रिया चल रही है सोने के समय पर, इसको हम बोलते हैं स्लीप साइकिल, और इसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं जिसको हम इन्हीं बिहेवियर्स या इन्हीं एक्सपीरियंसेस के थ्रू महसूस करते हैं। तो इसमें देखिए दो तरह के फेज बताए जाते हैं, तो हर एक साइकिल जो है वो 1.5 आवर की है, और ये 1.5 आवर डिवाइड करे गए हैं टू डिफरेंट फेजेस में। पहला फेज होता है NREM, यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट। NREM में भी तीन डिफरेंट फेजेस हैं, तो तीन स्टेजेस हैं इसके। तो आपको पहले धीरे धीरे नींद आनी शुरू होगी, फिर वो नींद के बाद आपको कुछ सपने आने शुरू हो जाएंगे जो आपकी डेली लाइफ के रूटीन में होंगे, या आज जो भी कुछ हुआ वो बेसिकली मेमोरी कंसोलिडेशन हो रहा होता है कि आज हमने दिन में क्या क्या किया है। उसी में हमें कई बार थोड़े झटके भी लग जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि अरे हम गिरने वाले हैं, और एकदम से आंख खुल जाती है, राइट। फिर आती है स्टेज 3, जहां पर वो डीप स्लीप की स्टेज में व्यक्ति पहुंच चुका होता है। NREM फेज जैसे ही खत्म होता है, फिर आता है सेकंड फेज, जिसको हम बोलते हैं REM, यानी रैपिड आई मूवमेंट। ये एक ऐसा फेज है जिसमें व्यक्ति अपना बिल्कुल सुदबुद्ध होके सपने में डूबा हुआ होता है। इसमें बहुत ही क्लियर ड्रीम्स आते हैं, यहाँ तक कि वो ड्रीम्स बहुत रियल लगते हैं। तो कभी ऐसे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि सपना देख रहे हैं और हम पसीने पसीने हो गए जब हम उठे, या जब हमने सपना देखा वो इतना रियल था कि हम बता ही नहीं सकते थे कि वो सपना था। तो वो चीजें एक्चुअली हमारे REM फेज में हो रही होती है। REM फेज का एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब जब REM फेज स्टार्ट होता है, तब तब हमारा ब्रेन एक सिग्नल भेजता है कि हमारे सारे वॉलंटरी फंक्शंस ऑफ हो जाए। तो बेसिकली हमारे नेक के नीचे का जितना भी पार्ट है बॉडी का, वो सारा शट डाउन हो चुका होता है फॉर वॉलंटरी पार्ट्स, जिससे कि हमारी नींद में जो भी हमारी मसल्स हैं वो सारे कम्प्लीटली रिलैक्स हो सके, और पूरी तरीके से जो सेल्स का रिजुविनेशन है वो हो सके। देखिए दिन भर में हम लोग जो उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, उन सब की वजह से हमारे मसल्स में टेंशन डेवलप हो जाती है, और उसको रिलीज करने के लिए REM फेज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसी होती है स्लीप साइकिल।
0: तो मैम, जैसे कि अभी आपने दो फेज बताए और स्लीप साइकिल का ये प्रोसेस बताया, तो जैसे आपने इसकी की टाइमिंग बताई,
1: वन एंड हाफ आवर
0: की। तो अगर हम बात करें तो ये मतलब कि रिपीट होते हैं?
1: यस,
0: है ना, क्योंकि वन एंड हाफ आवर तो पहले एक फेज होगा, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड।
1: यस,
0: है ना, साइकिल
1: में, साइकिल में चलता जाता है। तो फर्स्ट फेज चला, देन सेकंड, देन फर्स्ट, देन सेकंड, देन फर्स्ट, देन सेकंड। तो इसलिए हमारे यहाँ पर ये रेकमेंड किया जाता है कि आप 1.5 आवर के मल्टीपल में अलार्म लगाए जब आपको उठना है, क्योंकि ऐसा मानिए कि इनमें ना हमारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन वेव्स भी डेवलप होती हैं। और जब ऐसा होता है तब सेकंड फेज जैसे एंड हो रहा होता है और फर्स्ट फेज आ रहा होता है, तो वहां पे जो थोड़ा सा टाइम होता है ना, टाइम ड्यूरेशन, वो एक ऐसी फेज होती है जब आप आसानी से उठ सकते हैं
0: जी।
1: तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि 1.5 आवर के मल्टीपल में आप अलार्म लगाए।
0: तो बिल्कुल दोस्तों, देखिए अभी आपने भी ये बातें सुनी और अभी तक मुझे लगता है बहुत से लोगों को ऐसा नहीं पता था कि ये साइकिल भी होता है, है ना, स्लीप साइकिल भी होता है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि बस हम सो गए, हमें सपना आया, फिर हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये तो सच में रियल है। और कई बार तो सपने ऐसे होते हैं कि हमें डर लगता है कि कहीं ये सच में सच तो नहीं है, और जैसे ही नींद जाती है फिर हम थोड़ा सा सांस लेते हैं कि नहीं शुक्र है ये सपना ही था। तो इस तरह से भी होता है। तो लेकिन ये बात अभी पता चल रही है कि ये एक साइकिल है, हमारे स्लीपिंग साइकिल है, जिसमें कि ये सारी चीजें एक पैटर्न की तरह चलती रहती हैं। तो अभी आपने अभी ब्रेन वेव्स की बात की है, तो इसके बारे में हम जरूर जानेंगे कि स्लीप और ब्रेन का क्या रोल रहता है, क्या इसमें जो है मतलब क्या प्रोसेसिंग है। तो लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि एक छोटा सा ब्रेक होना चाहिए। तो आइए दोस्तों, एंजॉय करते हैं कार्यक्रम में ये खूबसूरत संगीत, उसके बाद फिर से मुलाकात होगी आप सभी की इस बहुत ही खास बातचीत के साथ।

0: 91 दशमलव तो मेगा हर्ट्स पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम बहुत ही प्यार के साथ एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही इस खास बातचीत को अपनी जिंदगी के साथ रिलेट करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आइए हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप सभी को और ज्यादा सतर्कता की ओर लेकर चलते हैं, जानकारी की ओर लेकर चलते हैं। तो स्लीपिंग के आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं। तो मैम अभी आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि किस तरह से जो हमारा स्लीपिंग साइकिल है उसके फेसेस रहते हैं और ये साइकिल किस तरह से प्रोसेस करता है, लेकिन आपने बीच में बात की कि ब्रेन वेव्स की जिक्र आपने किया, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि स्लीप का और ब्रेन का जो है क्या कनेक्शन है, किस तरह से ये कनेक्ट रहते हैं या क्या प्रोसेस रहता है इनका?
1: देखिए ब्रेन तो हमारा कमांडिंग सेंटर है, वो हर कमांड ब्रेन से ही आती है
0: जी।
1: लेकिन जब हम लोग कुछ भी कॉग्निटिव फंक्शंस करते हैं, कॉग्निटिव फंक्शंस यानी कि जो भी कोई काम कर रहे हैं थिंकिंग के एस्पेक्ट पे, प्रोसेसिंग हो गया, एनालाइजिंग हो गया, ऑब्जर्विंग हो गया, ये सारे जो हम आम तौर पे काम कर रहे होते हैं जिनको हम लोग स्किल्स बोलते हैं अपने लेमेन टर्म्स में
0: जी।
1: तो ये बेसिकली इन सभी में हमारे डिफरेंट ब्रेन वेव्स का अपना एक रोल होता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारी जो बॉडी है उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू ही हर इंफॉर्मेशन फ्लो करती है। तो यानी कि देर इज एन इलेक्ट्रिकल फील्ड अराउंड अस एंड जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अपनी एक वेव है। तो बेसिकली ब्रेन किस तरीके से काम कर रहा है उसके लिए भी हम उसकी वेव्स के आधार पर ही अंडरस्टैंड करते हैं। इसको हम बहुत सिंपल टर्म्स में समझाने का प्रयास करेंगे रुचिका
0: जी।
1: देखिए हमारे अलग अलग प्रकार की ब्रेन वेव्स हैं जिसकी वजह से हम क्या काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं वो इम्पैक्ट होता है। जैसे कि हमारी एक अल्फा वेव होती है। अल्फा वेव एक ऐसी ब्रेन वेव है जब हम इंसान रिलैक्स्ड होता है उस समय पर ब्रेन में अल्फा वेव प्रेजेंट रहती है। अच्छा, इसमें एक वेव ही प्रेजेंट रहे ब्रेन में ये जरूरी नहीं है, अलग अलग वेव्स इकट्ठा भी प्रेजेंट हो सकती है। तो अल्फा वेव से अगर हम थोड़ा ऊपर जाएं तो उसको हम बोलते हैं बीटा वेव। तो बीटा ब्रेन वेव जो है उसकी फ्रिक्वेंसी अल्फा वेव से ज्यादा होती है। बीटा ब्रेन वेव जब होती है तब इंसान कुछ काम कर रहा होता है, कहीं पर फोकस्ड होता है, जैसे कि गाड़ी चलाना या अटेंटिवली कोई काम करना या ऐसी कॉन्वर्जेशन करना जो भी हम लोग कर रहे हैं
0: जी।
1: बीटा वेव से और हायर एक वेव होती है जिसको बोलते हैं गामा वेव। गामा वेव की फ्रिक्वेंसी और भी ज्यादा हाई होती है देन बीटा वेव। गामा वेव तब डेवलप होती है ब्रेन में जब इंसान कोई बहुत ज्यादा हायर कॉग्निटिव फंक्शन कर रहा हो, जैसे कि एक पायलट एक प्लेन उड़ा रहा हो या फिर हम कोई बहुत मैथमेटिकल एल्गोरिदम सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो इस तरह के जितने भी काम होता है, एक सर्जन ऑपरेशन कर रहे हैं, ये सब चीजें में गामा वेव प्रेजेंट रहती है। फिर अगर हम अल्फा वेव जो एक रिलैक्स्ड स्टेट है, तो जब भी हम मेडिटेशन करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमारा अल्फा वेव में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। तो हमारे ब्रेन में वो अल्फा वेव आनी बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होता है बीटा में क्या रहेगा, ओवर थिंकिंग चलती रहेगी, राइट। फिर अल्फा वेव से जब हम नीचे आते हैं तो आती है हमारी थीटा वेव। तो थीटा वेव की जो फ्रिक्वेंसी वो अल्फा से कम है, समझ रहे हैं। तो अल्फा एक प्रकार से एक न्यूट्रल है जो रिलैक्स्ड है, उसके ऊपर बीटा और गामा है और अल्फा के नीचे हमारी स्लीपिंग स्टेट्स आ जाती है। तो उसके बाद आता है हमारा थीटा ब्रेन वेव और थीटा ब्रेन वेव में हमारी जो एनआरईएम स्टेज है वो स्टार्ट होती है। तो कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब हम लोग रिलैक्स भी होते हैं और हम थोड़ा थोड़ा ड्राउजी भी फील करने लगते हैं, थोड़ी नींद आने लगती है और दिमाग नहीं काम करता, जैसे कि स्कूल में स्टूडेंट पढ़ रहा है, टीचर पढ़ा रही है पर स्टूडेंट को नींद आ रही है और जो टीचर पढ़ा रही है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये वो स्टेज है जहां पर बच्चे के ब्रेन में अल्फा और थीटा वेव दोनों प्रेजेंट है। इस प्रकार से जब अल्फा वेव निकल जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि वो एक वेकिंग स्टेट आ जाती है, तो थीटा वेव जब रह जाती है तब हमारी स्लीप साइकिल स्टार्ट होती है जहां पर हमारी एनआरईएम फेज स्टार्ट होता है। और उससे भी जब हम और थोड़ा नीचे जाते हैं तो हम बोलते हैं उसको डेल्टा वेव। जो डेल्टा वेव है दैट इज रिलेटेड विद आर आरईएम फेज जो हमारी डीप स्लीप स्टेट है। तो इस प्रकार से ब्रेन वेव्स के आधार पे अलग अलग जो ब्रेन वेव्स आएंगी उसके आधार पे या इंसान के बिहेवियर्स, उनके फंक्शंस और उनके स्लीप वेक साइकिल इम्पैक्ट होती है।
0: बिल्कुल दोस्तों, तो देख लीजिए कि किस तरह से स्लीपिंग के भी अलग अलग एक प्रोसेसिंग है, क्योंकि ये तो पहले हमने मैथ्स में सुना था, लेकिन आज हम इसको स्लीपिंग पैटर्न में भी इंजॉय कर रहे हैं, सुन रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिर स्लीपिंग में भी ये अल्फा बीटा गामा थीटा जो है वो काम में आते हैं। तो देखिए दोस्तों, अक्सर बहुत सारे बच्चों के साथ क्या, बड़ों के साथ भी ऐसा होता है, जब हम किसी लेक्चर को सुन रहे होते हैं या कहीं बैठे होते हैं या हमें वो इंटरेस्टेड सा ना लग रहा हो, तब भी हमें नींद आनी शुरू हो जाती है, तो शायद हम उस थीटा वाली स्टेज में पहुंच चुके होते हैं। तो मैम, जैसे हम बात करें तो जैसे कि ये स्टेजेस की हम बात कर रहे हैं, अल्फा बीटा थीटा, तो इसमें हमारे लिए न्यूट्रल जो है वो अल्फा है, है ना। तो जैसे ये साइकिल है, पूरा प्रोसेसिंग है और स्लीपिंग का है, तो सबसे पहले तो हमारे लिए ये भी जरूरी है कि ये प्रोसेस होना है तो इसके लिए टाइमिंग भी, मतलब स्लीपिंग सोना भी तो जरूरी है। तो अक्सर आज के समय की हम बात करें तो आज के समय में हम नींद तो उतनी ले नहीं पाते, क्योंकि बच्चों की बात

0: ग्लोरीफाइड चीज मानी जा रही है
1: जी,
0: जो कि बहुत हार्मफुल है। क्योंकि अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब हुई, देखिए स्लीप साइकिल क्या है, एक हैबिट है, ये हैबिट बिल्डिंग है। अगर आपने इसकी आदत को बिगाड़ा तो फिर ये बिगड़ती चली जाएगी और इसको सुधारने में बहुत समय लग जाएगा
1: जी।
0: अगर हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो गई तो हमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, हमें फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम दोनों होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा मानिए कि डेफिनेटली होगी ही होगी, क्योंकि स्लीप प्रॉब्लम्स फिर क्रॉनिक बन जाती है, क्योंकि ग्लोरीफाई किया जाता है कंटिन्यूएशन में। और बच्चा जो है, जो 14 इयर्स का है, जो 10th में है, 16 इयर्स का है, 17 का है, जो 12th में है, एंड देन ग्रेजुअली जब वो कॉलेज में जाता है तब फिर उसको रहता है अब तो उसको रात को नींद ही नहीं आती है तो चलो मस्ती करते हैं
1: जी,
0: है ना, फोन देखते हैं, कुछ और करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो हमारा यूथ है वो पूरा बिगड़ता जा रहा है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि नींद को सेक्रीफाइस करके आप अपनी ड्रीम्स को अचीव करने का प्रयास ना करें, क्योंकि अगर आप ड्रीम को अचीव कर भी लेंगे तो भी आप अपनी हेल्थ को गवा देंगे। और ड्रीम अचीव करने के बाद, अपना हाई पैकेज मिलने के बाद, वो पैसे मिलने के बाद, आप अपनी हेल्थ में ही उन पैसों को लुटा रहे होंगे
1: जी।
0: तो इस साइकिल से भी बाहर आना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू रुचिका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो आपने मेंशन किया। नाउ कमिंग टू कि कितने नंबर, कितने आवर्स ऑफ स्लीप की रिक्वायरमेंट रहती है। देखिए वैसे तो ये एज से वेरी करता है, जैसे छोटा बच्चा है तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट तभी हो रहा होता है जब वो सो रहा होता है, तो उसको सोने की बहुत जरूरत है, तो वो उसको आराम से सोने दें। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसके जो स्लीपिंग टाइम है, स्लीपिंग आवर्स है, वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर बच्चा पहले स्टार्टिंग में 18 घंटे सो रहा है, फिर 16 घंटे सो रहा है, फिर 12 घंटे सो रहा है, धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर यूथ की बात करी जाए तो देखिए 7 से 7.5 से 9 घंटे के बीच का टाइम बहुत अच्छा है। कुछ लोग 6 घंटे भी सोते हैं। अगर आप हैबिट बिल्ड कर लें टू स्लीप फॉर 6 आवर्स, जो कि आप एक यंग व्यक्ति हैं, अब आप एक एडल्ट हो चुके हैं, तो 6 आवर्स ऑफ गुड स्लीप इज ऑल्सो गुड। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा है। अगर आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आपको वो क्वालिटेटिव स्लीप उन 6 आवर्स में भी नहीं मिल पाएगी। तो ये जो एक आर का जो है वो, उसको आई वुड रिकमेंड कि 6 से 9 आवर्स के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग, वो वैरी करता है
1: जी। बिल्कुल। तो दोस्तों बहुत ही गंभीर बात आप सभी के सामने रखी है, तो मुझे लगता है कि इस गंभीर बातचीत से निकलने के लिए थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो लेते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं इस बहुत ही खास बातचीत के साथ।

0: तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस बहुत ही खास बातचीत के साथ। तो आज की इस बहुत ही खास बातचीत को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ।
0: जी तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी जरूर बहुत सारी बातें जान रहे हैं और उन्हें अपनी जिंदगी में जरूर अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जितना चेंज हम कर सके अपने आप को इन छोटी छोटी सी बातों से, उतना ही हमारे लिए बेहतर है। क्योंकि नींद की हम बात करें तो आज के समय में ये बहुत बड़ा इशू बन गया है। कई बार बच्चे सोना चाहते हैं तो पेरेंट्स सोने नहीं देते हैं, और अगर यूं बात करें हमें जब मतलब कि जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ जाती है तो वैसे वैसे हमें खुद को भी लगता है कि नहीं। और एक बात कही भी जाती है मैम कि अभी अगर आप सोएंगे तो बाद में जागना पड़ेगा, अभी आप अगर जागेंगे तो बाद में आराम से सो सकते हैं। मतलब कि आराम कर सकते हैं, कहने कहावत के तौर पे कहा जाता है।
1: लेकिन तब जब आराम करने की बात आएगी तब आराम कर सकेगा
0: तब हम हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा के
1: तब परेशान रहेंगे कि नींद ही नहीं आ रही है, अब आराम कैसे करें।
0: तो दोस्तों कहने का मतलब एक ही है कि हम कहने को तो सही है, मतलब कि मेहनत करना जरूरी है, लेकिन अपनी हेल्थ के उस पे बिल्कुल भी नहीं, मतलब हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं, हेल्थ को साथ में लेकर चलकर भी हम बहुत सारी मेहनत कर सकते हैं। तो ये बातचीत तो खैर बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन हाँ अपनी मेन मुद्दे पे आते हैं। तो मैम अभी आपने बात की थी कि स्ट्रेस की बात की, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात की, तो स्लीपिंग के साथ ये किस तरह से रिलेट होता है? यानी कि स्ट्रेस तो आज की डेट में हर किसी को परेशान करता ही है। छोटी छोटी बात जब हम मन में रखते हैं, दिमाग में रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस का रूप ले लेती है। तो हमारी स्लीपिंग को स्ट्रेस किस तरह से इम्पैक्ट करता है?
1: देखिए, नींद एक नेचुरल मैकेनिज्म है। ये प्रकृति ने ही एक ऐसा नियम बनाया है कि सिर्फ इंसान नहीं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सोएगा, जिससे कि उसकी बॉडी को एक वापस से वो अपनी बैटरी रिचार्ज करे। क्योंकि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, नर्वस सिस्टम, मसल्स है, वो सब भी तो काम कर रहे हैं, उनको भी रिलैक्स चाहिए। और ये हम भूल जाते हैं, हमें लगता है सिर्फ हमारा साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी ही है जो जी रहा है, पर हमारे भीतर के जो भी ऑर्गन्स हैं हमें उनका भी ख्याल रखना, क्योंकि वो भी हमारा उतना ही ख्याल
0: रखते हैं। बिल्कुल।
1: तो ये प्राकृतिक रूप से नेचुरल तरीके से ही हमें नींद आनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, आती ही नहीं।
0: एक बार पैटर्न बिगड़ गया,
1: पैटर्न बिगड़ गया,
0: मुश्किल हो जाती है।
1: अब देखिए, इसका साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है नींद का। नींद इंसान को तब आती है जब वो अल्फा स्टेट में एटलीस्ट रहे। अल्फा स्टेट से ही वो थीटा में जा सकता है, वो बीटा से सीधा थीटा में नहीं जाएगा। बीटा के बाद अल्फा आएगी, अल्फा के बाद आएगी थीटा, तभी आएगी नींद।
0: जी।
1: अब अल्फा में कौन इंसान आ पाएगा? वो इंसान जो टेंशन से दूर हो, जो पीस ऑफ माइंड में हो। तो यदि आपका पीस ऑफ माइंड ही नहीं है तो अल्फा ब्रेन वेव डेवलप ही नहीं हो पाएगी। आप ओवर थिंकिंग में रहेंगे तो क्या होगा, बीटा वेव में ही रह जाओगे। अल्फा नहीं आएगी तो क्या होगा, थीटा नहीं आ पाएगी। सो बेसिकली जिस भी व्यक्ति के पास पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो चुका है जिनका, उनको नींद की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब उनका पीस ऑफ माइंड किस लिए खराब हुआ है, वो मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकती है, या कोई और बात हो सकती है। सो इसीलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ तक कि रुचिका, नींद को हम लोग अक्सर सोचते हैं कि रात को ऐसा क्या किया जाए जिससे कि फायदा हो या नींद अच्छी आए, लेकिन नींद कैसी अच्छी आ रही है इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे डे टाइम के स्केड्यूल करता है। तो हमारा डे टाइम का स्केड्यूल कैसा है, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है फॉर हमें नींद कैसी आएगी रात को।
0: तो अभी आपने बात की कि नींद कैसे आए, तो एक बात ये भी है कि जब नींद नहीं आती है तो हम क्या मतलब अलग अलग टेक्निक्स अपनाते हैं ना। पहले तो हम गूगल पे सर्च करेंगे कि नींद नहीं आ रही है, हम क्या करें क्या ना करें, फिर हम सोचते कि बॉडी को थकाया जाए, जितना हम बॉडी को थकाएंगे फिर एटलीस्ट जो है वो नींद आ जाएगी। तो ऐसा भी पॉसिबल होता है?
1: ऐसा भी होता है। देखिए अल्टीमेटली क्या है ना, अगर हमारी बॉडी में एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वो हमें सोने ही नहीं देगी, क्योंकि हमने एनर्जी को रिलीज ही नहीं किया। अल्टीमेटली क्या है कि हमारे डे टाइम में हम कितना काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। अब आप नोटिस करेंगे कि अगर आपके आसपास ही आप स्वयं ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत मेहनत से अपना काम कर रहे हैं और आप थक जाते हैं, तो आपको नींद आसानी से आ जाती है। क्योंकि जब इंसान थक चुका है तो बॉडी को पता है कि अब मेरे मसल्स में बहुत सारी टेंशन है, और ब्रेन उस चीज को समझता है और ब्रेन फट से सिग्नल्स भेजता है कि अब आपको सो जाना चाहिए, अब आपकी बॉडी और काम नहीं कर सकती
0: नहीं कर सकती
1: तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप जीवन में, आप डे टाइम में, दिन के दौरान आप अपने स्केड्यूल में क्या क्या कर रहे हैं।
0: तो ये जो एक तो होता है ना मैम नेचुरल प्रोसेस कि मतलब नेचुरली हमें नींद आ जाती है टाइम, एक तो जब हम शुरुआती दौर से गुजरते हैं तब हमारी रूटीन बिल्कुल परफेक्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो वो पैटर्न कहीं ना कहीं बिगड़ता जाता है। तो क्या उसमें हमारी ये जो डेली रूटीन या लाइफ स्टाइल है ये इम्पैक्ट करता है, या हम इसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, या फिर ये नेचुरली चीजें होती हैं?
1: नहीं, ये नेचुरली बिल्कुल नहीं है। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखा है। हमने नींद को, जो चीज नेचुरली आनी चाहिए, उसको हमने इतना इम्पैक्ट होने दिया है कि अब वो नेचुरली आ ही नहीं रही है। तो अब आप सोचिए वो कितनी ज्यादा डिसऑर्डर्ड हो चुकी है। तो देखिए, कोई भी चीज में अगर बैलेंस की कमी होगी तो वो गड़बड़ी होगी, है ना?
0: बिल्कुल।
1: और सबसे बड़ी बात, लोगों को अक्सर लगता है कि नींद जो है वो एक क्वांटिटी है, एज इन उसकी ड्यूरेशन कैसी है, लोग उसको उस तरीके से समझते हैं। लेकिन नींद की सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं बट क्वालिटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। तो जितना बेहतर लाइफस्टाइल रहेगा उतना ज्यादा अच्छी और बेहतर हमारी नींद होगी। देखिए, इसके लिए ना रुचि का एक टर्म है, इसको बोलते हैं स्लीप हाइजीन। तो जिस प्रकार से हम अपना डेली हाइजीन का ध्यान रखते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी स्लीप हाइजीन भी है।
0: उसमें क्या मतलब, किस तरह से हम उसका ध्यान कैसे रख सकते हैं? क्योंकि हमारी जो हाइजीन है वो तो खैर रख लेते हैं, लेकिन ये स्लीपिंग हाइजीन का थोड़ा सा अलग सा कॉन्सेप्ट है, तो इसके बारे में जानना तो बहुत जरूरी है।
1: देखिए, आपने ये स्लोगन सुना होगा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, है ना? तो ये जो है ये कम्प्लीटली इन सिंक है विद आर डे नाइट साइकिल। सो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, जैसा हमने बताया शुरुआत में, मेलाटोनिन।
0: जी,
1: तो अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को डे और नाइट की साइकिल के साथ अलाइन करेंगे तो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप फॉर टेकिंग केयर ऑफ आर स्लीप वेक साइकिल, क्योंकि वो चीज क्या है ना, वो नेचुरली हमारी बॉडी उसको सिग्नल देती है। दूसरा, हमारा डेली का जो दिन का जो शेड्यूल है उसमें हमारी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, इसलिए व्यायाम बहुत जरूरी है। एक्सरसाइजेस करो, नेचर वॉक करो। सुबह सुबह उठते ही लोग कहते हैं आप सूर्य नमस्कार करो, क्योंकि वो आपके अंदर एनर्जी को बढ़ाता है। तो दिन भर आप जो काम करोगे उसके लिए आपके भीतर एनर्जी रहेगी। और रात को एक होती है मून, जैसे कि सूर्य नमस्कार है वैसे एक चंद्र नमस्कार है, तो वो आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है। तो शाम को जब आप करें तो आप योगा में चंद्र नमस्कार करें। ठीक इसी प्रकार से आप मॉर्निंग में आप जिम जाएं, लेकिन शाम को जिम ना जाए, क्योंकि जिम जाकर क्या होता है, लोगों को लगता है हम थक जाएंगे तो सो जाएंगे, लेकिन नहीं, जिम जाने से हमारे शरीर में हमारा एड्रेनलिन बढ़ता है जिसकी वजह से मेलाटोनिन कम हो जाता है। सो उससे क्या होगा, क्या हमें पीसफुल माइंड रहेगा? हमारा नहीं रहेगा, हमारे ब्रेन में वो अल्फा वेव डेवलप ही नहीं हो पाएगी, वो हाई एनर्जी वाली वेव रहेगी जिसकी वजह से हम फिर से हमारी स्लीप साइकिल खराब हो जाएगी। तो स्लीप हाइजीन में ये बहुत ध्यान रखना है कि आप जो भी एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं उसमें आप जो हाई बीट चीजें हैं उसको आप मॉर्निंग के टाइम पे करें, और जो रिलैक्स वाली चीजें हैं, हाँ, जैसे कि हल्का योगा हो गया या फिर मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया, ये चीजें आप लोग शाम को करें, जो आपको हेल्प करेगी टू फॉल इनटू स्लीप। इसके अलावा देखिए, खाना, पानी पीना, आपका फोन, ये अलग अलग चीजें हैं जिनका इस्तेमाल, जैसे अगर आपका सोने का समय आ रहा है तो इनको आप धीरे धीरे कम करना शुरू कर दें। शाम होते ही आप अपनी लाइट्स को डिम कर दे घर की, आप हल्की लाइट्स जलाएं, जैसे कि लैम्प हो गया, आप अपने फोन से दूर रहें और आप हल्का खाना खाएं, और फिर या जो भी अच्छा सा खाना खाइए, और सोने से करीब 2-3 घंटे पहले आप खाना खा चुके होने चाहिए, और उसके बाद पानी का कंजम्पशन थोड़ा कम करेंगे शाम को। दिन के समय पे खुला पानी पियेंगे लेकिन शाम को कम पियेंगे, क्योंकि फिर नींद टूटती है, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, तो उससे आपकी स्लीप क्वालिटी खराब होती है। तो इन कुछ चीजों का आप ख्याल रखें, साथ में जो आपका रूम टेम्परेचर है वो आपका जो भी क्लाइमेट है वहां पे, जो भी वेदर है उसके अनुकूल होना चाहिए, उसके अनुसार होना चाहिए, और उसके साथ साथ एक कंफर्टिंग बेड हो, कंफर्टेबल चीजें हो, आपके पास रजाई हो, आपके पास कंबल हो, सॉफ्ट राइट काइंड ऑफ पिलो हो, वरना आपको नेक में पेन रहेगा और आप सो नहीं पाएंगे। सॉफ्ट म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी म्यूजिक आते हैं जिसमें आपके थीटा वेव्स रहते हैं रिकॉर्डेड, तो वो थीटा वेव्स वाले अगर आप म्यूजिक प्ले करते हैं या नेचर साउंड आप प्ले करते हैं तो दैट ऑल्सो हेल्प्स यू टू स्लीप, क्योंकि वो आपको रिलैक्स करते हैं। तो रिलैक्स करेंगे यानी कि अल्फा वेव प्रोड्यूस होगी, और अल्फा वेव प्रोड्यूस होगी तो थीटा वेव आने में ज्यादा समय नहीं होगा। और जिनको दिक्कत होती है ना, वो बुक रीड कर सकते हैं। जिनको बुक रीडिंग बोरिंग लगता है, दिस इज फॉर देम। देयर आर सम पीपल हु लव टू रीड बुक्स, ये उनके लिए नहीं है। बिल्कुल ये उनके लिए नहीं है, पर जिन लोगों को पढ़ाई से दिक्कत है वो पढ़ना शुरू कर दे
0: नींद आ जाएगी
1: डेफिनेटली। सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, एंड ऑब्वियसली रोजिका ये सब जानते हैं कि फिर कैफीन का यूसेज हमें कम करना है।
0: बिल्कुल जी दोस्तों, तो बहुत ही खास बातें आप सभी ने जानी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आप सभी के साथ मिलते हैं। और आप सभी उतनी देर के लिए एंजॉय कीजिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: दोस्तों, इस प्यारे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं इस बहुत ही खास बातचीत के साथ। तो आइए अपनी बातचीत को बढ़ाते हैं आगे। और नींद की हम बात कर रहे हैं तो नींद तो सबको प्यारी होती है, खास करके एग्जाम्स टाइम में बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा प्यारी होती है। तो मैम, अभी आपने बात की कि जैसे हमारा जो सोने का टाइम होता है तो उस टाइम हमें जो है फोन खुद से दूर रख देना चाहिए, लेकिन ये बहुत कम लोगों के साथ हो पाता है कि फोन दूर रखते, क्योंकि हमें जरा सी नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई देती है तो फटाफट से हम फोन उठा के जो है देखने लग जाते हैं कि किसका मैसेज आया है और किस चीज की नोटिफिकेशन है। तो मतलब वहां पे हम खुद को मैनेज नहीं कर पाते। तो इसमें हम किस तरह से अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं, कैसे हम अपनी उस टाइम स्लीपिंग को ध्यान में रखें?
1: देखिए, हमारे पास जब फोन आया ना तो फोन में लोगों ने बहुत डिफरेंट प्रकार के फीचर्स डाले
0: जी,
1: लेकिन अफसोस की बात यह हम उन फीचर्स का सही तरीके से उपयोग नहीं करते
0: जी।
1: तो जब व्हाट्सएप है या कोई भी ऐसी चीज है तो बेसिकली हर एप्लीकेशन की सेटिंग्स में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आपको नोटिफिकेशन साउंड जो है आप उसको ऑन ऑफ या वाइब्रेशन पे कर सकते हैं। तो जहां तक रही मैसेजेस की बात, तो आप अपने फोन के नोटिफिकेशंस को ऑफ कर सकते हैं और आप अपने स्लीपिंग मोड को भी एक्टिव कर सकते हैं, एक स्लीप मोड भी आता है। आप अपना इंटरनेट ऑफ कर सकते हैं, जिससे कि जो भी हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी प्रकार का सोशल मीडिया हो, वहां से लोग आपको अप्रोच ना कर पाए, और जो सिर्फ इमरजेंसी वाले हो, आपके पेरेंट्स हो या कोई, तो वो ही आपको रीच आउट कर सके अगर कोई इमरजेंसी या परेशानी की बात हो तो।
0: जी बिल्कुल। और साथ ही मैं ये भी जानना चाह रही थी कि जैसे हमने बात की कि हमें कम से कम जो है 6 से 9 घंटों की जो है नींद लेनी चाहिए, वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहती है, लेकिन कई बार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हमारा दिन में भी हम बैठे हो तो सोने का मन करता है, जरा सा बेड पे बैठे कि लेटे या नींद आ जाती है, जरा सा बैठे कि नींद आ जाती है। तो वो मतलब एक पैटर्न बिगड़ा हुआ ही कह सकते हैं। जब पैटर्न वो डिस्टर्ब हो जाता है तो हम ज्यादा ही नींद में चले जाते हैं, तो 9 के फिर 18 घंटे ही मान के चलो, तो उसे हम कैसे समझे या किस तरह से उसे किस वे मिले?
1: देखिए, जब भी कोई चीज बैलेंस से दूर जाएगी उसका डिसऑर्डर में तब्दील होना लिखा है। अब ऐसे समझिए कि जब भी ड्यूरेशन, इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए या कम हो जाए, जैसे हम लोग बहुत पहले भी इस बारे में बात करी है, जब भी ऐसा हो तो यानी कि कोई ऐसी चीज है जो डिसऑर्डर का शेप ले रहा है। तो जब नींद बहुत ज्यादा आए वो भी एक डिसऑर्डर का हिस्सा है, और जब नींद कम हो जाए वो भी एक डिसऑर्डर का हिस्सा है, और इसका डायरेक्ट एक इम्पैक्ट पड़ता है फ्रॉम स्ट्रेस
0: जी। तो दोस्तों, ये स्लीप

0: डिसऑर्डर में जाके जो है रिलेट हो जाता है, तो इसके बारे में भी हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि स्लीपिंग का ये एक बातचीत ही इतनी गंभीर है और लंबी है और गहराई से जानने वाली बातचीत है, क्योंकि ये नींद का इशू जो है ना, ये सबके साथ है, और चाहे बड़े हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे कोई भी है, किसी भी एज ग्रुप के साथ हम निकल रहे हैं, तो हर किसी को ये फेस करनी पड़ती है, तो ये बातें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम आपको एक एक बात जो है गहराई के साथ बताना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि शॉर्ट वे में बता के जो है, एक कहते हैं ना कि सर का बोझ नहीं उतारना है हमें, धीरे धीरे करके आपको स्टेप बाय स्टेप जो है सारी बातें आप सभी तक पहुंचानी है, ताकि आप अपनी जो एक डेली रूटीन है उसे भी एक सही ढंग से सेट कर सकें, और अपनी हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को, सारी चीजों को न्यूट्रल वे में जो है बैलेंस कर सके। तो ये जो स्लीपिंग डिसऑर्डर है, ये हम अगले एपिसोड में आप सभी के साथ इस पे एक डिटेल में बातचीत करेंगे, गहराई से जानेंगे कि स्लीपिंग डिसऑर्डर जो है वो क्या होता है, किस तरह से होता है, और इसमें क्या प्रोसेसिंग रहती है, कैसे हम खुद को इससे बचा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हमने बात की है स्लीपिंग की, तो देख लीजिए दोस्तों, नींद कहने के लिए छोटा सा शब्द है, लेकिन इसकी आज हमने गहराई को जाना है तो बहुत ज्यादा है। तो मैम, आज की ये बहुत ही खास बातचीत, मुझे उम्मीद है कि हमारे दोस्तों के लिए बहुत ही एक इम्पैक्टफुल रही होगी, है ना, अपनी जिंदगी में प्रभावशाली रहेगी अगर वो चाहेंगे, क्योंकि जिसे अपनी हेल्थ से लगाव होगा, जो चाहते हैं कि हम हॉस्पिटल्स के चक्कर ना लगाएं, तो वो जरूर अपने फोन को भी खुद से दूर रखेंगे और वो नोटिफिकेशंस जो है वो भी ऑफ रखेंगे। तो आज के कार्यक्रम का समय फिलहाल जो है हमारा इस समय अलविदा लेने का हो चुका है, तो बहुत ही खास बातचीत आप सभी के साथ साझा की है दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर से आप सभी के साथ मुलाकात होगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि अगर आपको इस बात से संबंधित अभी भी कोई कंफ्यूजन है, अभी भी कोई डाउट है, तो आप मैम के क्लिनिक में जाके उनके साथ जो है डिस्कस कर सकते हैं या उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मैम अपने सेंटर का और फोन नंबर जो है हमारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
1: जी, इस सेंटर का नाम है वैराग्य माइंड एंड वेलनेस सेंटर, और फोन नंबर है 9354134057। ये शीला धर्मशाला में स्थित है।
0: जी दोस्तों, तो आप सभी को हमने अपना नंबर भी बता दिया है और सेंटर का पता भी बता दिया है, तो अभी भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो जरूर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, या आप जो है सेंटर में जाके डायरेक्ट जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो फिलहाल दीजिए अनुमति अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी को
0: कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत के साथ, तब तक आप सभी इसी तरह से हंस रहे, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में वर्तमान 7-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्डिस दोम्ब्रोस्किस से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। भारत का 5वां विमान आज राहत और बचाव सामग्री लेकर नेपाल पहुंचा। विमान में 11 सदस्यों के बचाव दल, विशेष उपकरणों और 5 टन से अधिक दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव मदद कर रहा है। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अब तक 1114 शव बरामद हुए हैं। सबसे अधिक शव दक्षिणी चितवन जिले में बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 मृतकों की पहचान के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। लगभग 4000 लोग अब भी लापता है। बाढ़ प्रभावित 11 पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े 983 लापता लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के 3rd दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने का आह्वान किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुपुर्द करेंगे।
0: प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरीमैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली NCR में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1% की गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 548 अंक गिरकर 76,396 पर, जबकि निफ्टी 203 अंक गिरकर 23,852 पर पहुंच गया। स्क्वाश में भारत की अनाहत सिंह ने लंदन स्क्वाश क्लासिक के दूसरे दौर में जगह बना ली है। उधर बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत आज चीन ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट
2: सर, टेस्ट ड्राइव।

0: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
1: अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
2: कन्हैया आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और खुशियों के रंग भरे।

परसों आने वाला है जन्माष्टमी का पावन पर्व। मुरली के मधुर तान, नंदलाल की मनमोहक मुस्कान, माखन की मिठास और राधा कृष्ण के प्रेम की पहचान। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को आ रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: अरे चुप। गर्भवती महिला को रोज रात खाने के बाद एक आयरन वाली IFA की गोली कम से कम 100 दिन तक खिलाओ ताकि उसे खून की कमी ना हो। पर वे गोली खाने से कभी कभी,
1: अरे कभी कभी, अरे कभी कभी, अरे कभी कभी,
0: अरे चुप यार, कभी कभी जी मिचलाएगा।
1: खूब पानी पियो ठीक हो जाएगा।
0: कब्ज हो या काला मल,
1: धीरे धीरे होगा हल।
0: भूल जाओ अगर गोली खाना,
1: तो पति या सासू माँ से कहना याद दिलाना।
0: अगर गोली की सप्लाई खत्म हो जाए तो खुद आंगनवाड़ी, ANM दीदी या केमिस्ट से

0: लाना
1: तो आ जाओ ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना, ध्यान से सुनना।
2: आपने श्री कृष्ण को नहीं देखा लेकिन फिर भी उन्हें मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा और उनका रिश्ता आंखों का नहीं आत्मा का है। जब भी हम टूटते हैं और कोई ना समझे तब अंदर से एक शांति उठती, वही श्री कृष्ण है। हमारे आंसू भी उन्हें बुलाते हैं और हमारे मुस्कान भी। हमने उन्हें शायद देखा नहीं पर वो हर बार हमें देख रहे होते हैं। कृष्ण दूर नहीं, बस थोड़ा विश्वास चाहिए। सच्चे मन से कहिए राधे राधे।
3: साइबर फ्रॉड की दुनिया में आपका इस्तेमाल किया जाता है इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए और आपको बनाया जाता है उसका जरिया। इस स्कैम में होता क्या है कि साइबर स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर फोन पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए ऑनलाइन जॉब के नाम पर आपको पैसा कमाने का लालच देते हैं, और अगर आप इनके जाल में फंस जाते हैं तो ये स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए, यानी उसको यूज करना शुरू कर। ध्यान रहे कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का इलीगल पैसा अगर अपने अकाउंट में एक्सेप्ट करता है या फिर अपने अकाउंट से दूसरे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उनके खिलाफ तो केस दर्ज होगा ही, साथ ही पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिनका अकाउंट धोखे से इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। केस दर्ज के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। तो याद रखिए, नौकरी के नाम पर, पैसा कमाने के नाम पर अगर आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफर का लालच देता है उसको हरगिज एक्सेप्ट मत करिएगा, बल्कि उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गए तो बड़े कानूनी झमेले में फंसेंगे आप।
4: सूरज।
5: हाँ बोल।
4: कल मैंने तेरे बेटे को कुछ लड़कों के साथ देखा है, वो लड़के ठीक नहीं है, नशे वशे के चक्कर में कहीं फंस गए।
5: तुझे नहीं लगता तू मेरे बेटे को बदनाम कर रहा है?
6: अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने ही पीछे रह जाते हैं। कई बार सच सामने दिख रहा होता है पर उसे सामना करने का समय नहीं होता, क्योंकि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो समाज में नाक कट जाएगी। इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं, पर पूछना जरूरी है तो समाज में नाक कट जाएगी। इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं पर पूछना जरूरी है।
5: वैसे तो हर बाप इस सवाल का जवाब ना सुनना चाहेगा, पर अगर तू हाँ भी कहेगा तब भी तेरा बाप तेरा साथ देगा। नशा तो निकलने लगा।
6: याद रहे, समाज से नशे को खत्म करने की लड़ाई पहले आपके घर से शुरू होती है। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत।
7: बहुत शरीफ बीवी मिली है तुम्हें, तभी तुम्हारी जुबान ऐसे हर समय पटर पटर चलती रहती है। कोई मिल जाती ना तेज तरह तो पता चल जाता तुम्हें।
8: तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी।
7: दुखी
8: जा जाके कटवा ले अपनी जुबान, तू भी सुखी और मैं भी सुखी।

दोस्तों मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिता के साथ। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

0: भी जल्दी शेयर कर दो ते कमेंटां दे विच गुलाबी पग जिंदाबाद लिखना नहीं भूलना।
1: दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी आशीर्वाद रुचिका के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

291.9 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो रिंजन धर्मशाला और आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं पंजाबी गीतों के कार्यक्रम में। बिल्कुल कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं अगला ये प्यारा सा खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

0: छोटे, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट
2: सर, टेस्ट ड्राइव।

0: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
1: अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
2: कन्हैया आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और खुशियों के रंग भरे।

परसों आने वाला है जन्माष्टमी का पावन पर्व। मुरली के मधुर तान, नंदलाल की मनमोहक मुस्कान, माखन की मिठास और राधा कृष्ण के प्रेम की पहचान। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को अरहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: अरे चुप। गर्भवती महिला को रोज रात खाने के बाद एक आयरन वाली IFA की गोली कम से कम 100 दिन तक खिलाओ ताकि उसे खून की कमी ना हो। पर वे गोली खाने से कभी कभी,
1: अरे कभी कभी, अरे कभी कभी, अरे कभी कभी,
0: अरे चुप यार, कभी कभी जी मिचलाएगा।
1: खूब पानी पियो ठीक हो जाएगा।
0: कब्ज हो या काला मल,
1: धीरे धीरे होगा हल।
0: भूल जाओ अगर गोली खाना,
1: तो पति या सासू माँ से कहना याद दिलाना।
0: अगर गोली की सप्लाई खत्म हो जाए तो खुद आंगनवाड़ी, ANM दीदी या केमिस्ट से लाना।
1: तो आ जाओ ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना, ध्यान से सुनना।
2: आपने श्री कृष्ण को नहीं देखा लेकिन फिर भी उन्हें मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा और उनका रिश्ता आंखों का नहीं आत्मा का है। जब भी हम टूटते हैं और कोई ना समझे तब अंदर से एक शांति उठती है, वही श्री कृष्ण है। हमारे आंसू भी उन्हें बुलाते हैं और हमारे मुस्कान भी। हमने उन्हें शायद देखा नहीं पर वो हर बार हमें देख

0: होते हैं। कृष्ण दूर नहीं, बस थोड़ा विश्वास चाहिए। सच्चे मन से कहिए राधे राधे।
1: साइबर फ्रॉड की दुनिया में आपका इस्तेमाल किया जाता है इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए और आपको बनाया जाता है उसका जरिया। इस स्कैम में होता क्या है कि साइबर स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर फोन पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए ऑनलाइन जॉब के नाम पर आपको पैसा कमाने का लालच देते हैं, और अगर आप इनके जाल में फंस जाते हैं तो ये स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए, यानी उसको यूज करना शुरू कर। ध्यान रहे कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का इलीगल पैसा अगर अपने अकाउंट में एक्सेप्ट करता है या फिर अपने अकाउंट से दूसरे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उनके खिलाफ तो केस दर्ज होगा ही, साथ ही पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिनका अकाउंट धोखे से इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। केस दर्ज के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। तो याद रखिए, नौकरी के नाम पर, पैसा कमाने के नाम पर अगर आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफर का लालच देता है उसको हरगिज़ एक्सेप्ट मत करिएगा, बल्कि उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गए तो बड़े कानूनी झमेले में फंसेंगे आप।
2: सूरज,
3: हाँ बोल।
2: कल मैंने तेरे बेटे को कुछ लड़कों के साथ देखा है, वो लड़के ठीक नहीं है, नशे वशे के चक्कर में कहीं फंस गए।
3: तुझे नहीं लगता तू मेरे बेटे को बदनाम कर रहा
4: है? अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने ही पीछे रह जाते हैं। कई बार सच सामने दिख रहा होता है पर उसे सामना करने का समय नहीं होता, क्योंकि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो समाज में नाक कट जाएगी। इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं पर पूछना जरूरी है।
3: वैसे तो हर बाप इस सवाल का जवाब ना सुनना चाहेगा, पर अगर तू हाँ भी कहेगा तब भी तेरा बाप तेरा साथ देगा। नशा तो निकलने लगा।
4: याद रहे, समाज से नशे को खत्म करने की लड़ाई पहले आपके घर से शुरू होती है। आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत।
5: बहुत शरीफ बीवी मिली है तुम्हें, तभी तुम्हारी जुबान ऐसे हर समय पटर पटर चलती रहती है। कोई मिल जाती ना तेज तरह तो पता चल जाता तुम्हें।
6: तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी। जा जाके कटवा ले अपनी जुबान, तू भी सुखी और मैं भी सुखी।

91.2 MHz पर ये तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कनेमेश शशि हाजिर हो कार्यक्रम लेकर माटी दी महक तुतों ये माटी का जेड़ा कार्यक्रम है माटी दी महक जेड़ा कार्यक्रम तो तक लेकर जेड़ा इसे मैं हाजिर हो कने तो हाँ सारे भी जुड़ी होने न तो सारे जो भी इंतजार जेड़ा इसे रहा है कि 2 बजते न कने इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़ते न सफर करने जुड़ने वास्ते पहले जेड़ा नंबर है स्टूडियो का सभी तुह तक पहुँचाई दे न इस नंबर पर तुह कॉल करी सकते या टेक्स्ट मैसेज करी सकते या व्हाट्सएप मैसेज करी सकते नंबर जेड़ा है इसे नोट करना शुरू हो मुझे लगा था तुह नोट करना शुरू हुई होने तो नंबर है 7018117091 नंबर तुह तक पहुँचाई तो है कने बाकी जेड़ा काम है से तुह है समय के अनुसार कार्यक्रम के सफर से जुड़िया कने आज अपने दिने की गल करिए दिने हर दिन अहां वास्ते एक नई शुरुआत होंगी या दिने की शुरुआत अहां किस प्रकार करते हैं या अहां दा अजकना जेड़ा दिन है से तुहां दा अहां गल करी सकते कि 2 बजे तक कदेया की रहा कने बाकी भी ठीक ही रहना है पर दिने की शुरुआत अगर अहां सकारात्मक सोच कने करते हैं तो पूरा दिन सकारात्मक सोच कने ही निकलता है। इसी कने 2 सितंबर की गल करिए 2026 की तो जरूर ये 2 सितंबर चाहां पहुंची हो कने हर दिन अहां वास्ते खास होंदा अजकना जेड़ा दिन है बुधवार का ये दिन है सभी अहां वास्ते खास है तो अज अहां जेड़ा खास दिन क्या बना दे थोड़ा जिहा तिहदे उपर भी नज़र दौड़ाई लैंदे ने क्योंकि नज़र दौड़ाना जरूरी है गलबात उपर भी कने जेड़ा तुहानियां फरमाइशां ने तिन्हां उपर भी अज अहां जिहड़ा खास दिवस बना देन से बना देन विश्व नारियल दिवस तो जरूर इहदे उपर भी अहां गलबात करनी है कने इसी कने पहले अपने कार्यक्रम का जिहड़ा आगाज़ है से कर देन इस गीत कन्नै

श्रोताओं, तो सारे सुनिया ये गीत। इसी गीत कने हाँ कार्यक्रम की शुरुआत की थी। कने फिर यहाँ वापिस पहुँची होना अपनी गलबात करने। तो हम भी जरूर मेरी गलबात जड़े से सुनना बैठी होने न। कने गीत संगीत जड़े सभी सुना दी होने न, क्योंकि गीत संगीत जड़े से यहाँ जो हमेशा एक दुए ने जोड़ी कर रख देन, या ये बोली सकते कि अहंदा जेड़ा मन है थोड़ा जहा उदास हो जाता है, या हाँ अपने काम करते न तभी यहाँ गीत संगीत सुनना पसंद करते न, या हाँ कुछ घूमना चले न या ट्रैवलिंग कराते न तभी यहाँ गीत सुनना जेड़ा इसे पसंद करते न। तो हर किसी की अपनी अपनी पसंद है। तो ज़रूर तुह सारे भी इस कार्यक्रम के सफर जहाँ कन्ने जुड़ी सकते, कन्ने यहाँ कन्ने गलबात जेड़ा इसे करी सकते। तो तो विचार जड़ा है सभी तुह तक पहुँचाना है, क्योंकि छोटे छोटे जड़ा विचार होंगे या कुछ लाइना जड़ा न सियाहां जो बड़ा कुछ सिखाई करी जांदियां न, या बड़ा कुछ सबक जड़ा है सियाहां जो दे करी जांदियां न। कदम छोटे न पर हमेशा कदम जड़ा न सियाहां दे छोटे न, क्योंकि छोटे कदम रखते न ताई यहाँ अपनी मंजिल दी ओर भागते न, या मंजिल दी ओर अपनी मंजिल जड़ा से उस जो हासिल करते न। क्योंकि अगर हाँ इन्हें छोटे छोटे कदमा जो रोकी देन तो कुछ ना कुछ यहाँ अपनी जड़ा मंजिल है से हासिल नहीं करी पाते न, क्योंकि हर काम च मेहनत लगती है, क्योंकि मेहनत बिना तो कोई भी काम संभव नहीं है। मेहनत करके ताई यहाँ काम जड़ा न से करी सकते। तो छोटे छोटे कदम जड़ा न से यहाँ वास्ते इतने ज़्यादा जरूरी हैं कि से यहाँ जो अहाँ की जड़ा मंजिल है या अहाँ के जड़ा सपने न तिना तक पहुँचाई देना हाँ जो पर निर्भर अहाँ पर करते हैं कि यहाँ किस प्रकार अपने सपने की ओर चल देन या अपनी मंजिल की ओर चल देन। तो हाँ भी जल्दी जल्दी कार्यक्रम के सफर च जुड़िया जुड़ने वास्ते जड़ा नंबर है से तुह तक अहाँ बार बार पहुँचा देन, क्योंकि कई श्रोता आते तिना तक नंबर जड़ा है से नहीं पहुँचा होंगे। तो अहम की यही कोशिश रही कि तुह तक जड़ा नंबर है से पुजियाँ, कने तुह जरूर गलबात जड़ा है से करन। तो नंबर है 701-811-7091। नंबर फिर से तुह तक पहुँचाई तो है तुह सारे नोट भी करी लिया होना है। कने जड़ा श्रोता ने से जरूर अहम जो मैसेज भी करा देन तिना दियाँ जड़ा फरमाइशा न से अहाँ तिना तक पहुँचानियाँ न। कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम के सफर चाह करने जुड़ी सकते। तो ज़रूर अहाँ फ्री ते थोड़ा दिया अगे बढ़ते न, कने तो हाँ जो अगली फरमाइश की ओर ले कर चलते न। तो मैसेज दी मैं जिड़ा गल की थी कि जिड़ा श्रोता न से मैसेज भी कराते न, तो अहाँ जो मैसेज आया है धर्मशाला ते कने तिना दा नाम है उस्मान जी, तिना कोई भी से बोला दे कि अपनी मर्जी का जड़ा कोई भी गीत है पहाड़ी से यहाँ तक पहुँचाई दिया। तो ज़रूर तिना तक अहाँ ये पहाड़ी गीत तिना दी फरमाइश यहाँ पहुँचा देन। तो वह सारे भी इंजॉय करा कने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: आमुलादीन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तोहा सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देन अपनी रेडियो दो शशि कने इस कार्यक्रम दा जेड़ा समय है से तोहा तक रहंदा है 2 ते 3 बजे तक। कने तोहा भी इस कार्यक्रम जो समय जेड़ा है से जरूर दिन देन, क्योंकि समय जेड़ा है से हर इंसान वास्ते कीमती है। अज कने दौर दी गल करिए तां हर कुसी दी जवान ते अहां ई सुनदे न कि अहां समय नहीं है, तो जरूर तुहां भी अपना जेड़ा कीमती समय है से इस कार्यक्रम जो दे देने न, रेडियो गुंजन धर्मशाला जो जरूर दे देने न, क्योंकि वैसे तो इस समय देने दी जरूरत नहीं है। तुहां अपना रेडियो सेट ऑन करी दिया कने अपने जेड़ा काम कार तिना जो भी करी सकते, रेडियो सुनने दे फायदे बड़े न। या अपना रेडियो सेट ऑन करा या सोगी अपने जेड़ा काम मन तिना जो भी करी लिया, छोटे मोटे जेड़ा काम मन घरे दे काम सभी अहां दे जल्दी जल्दी हो जांदे। अगर अहां खाना बना देना तो अहां दा खाना भी बनता रहिंदा, कने अहां गीत संगीत भी सुनी सकते, इसी कन्ने तुहां अपने जेड़ा काम मन तिना जो भी करी सकते। तो जरूर आज अहां जेड़ा कार्यक्रम च गलबात करा देन सभी तुहां तक पहुँचा देन एक बारी फ्री ते, क्योंकि तुम सारे भी इंतजार जेड़ा है करते रहते हैं कि आज कार्यक्रम च क्या गलबात जेड़ा है से अहां लगाई हुआ है, सभी तुम तक पहुंचानी है गलबात अहां लगाई हुआ है। आज विश्व नारियल दिवस जेड़ा है से आज अहां बना देन। दिखा हर दिने दी अपनी अपनी खासियत होंगी, आज कना जेड़ा दिन है से अहां वास्ते कयो खास है या क्या खास दिवस जेड़ा है से आज अहां बना देन। हर साल 2 सितंबर जो जेड़ा से अहां जेड़ा खास दिन बना देन से बना देन विश्व नारियल दिवस। इस दा बनाने दा उद्देश्य क्या है, क्योंकि जेड़ा नारियल दे फायदे न से तुह सारे जो ही पता है, चाहे नारियल दी गिरी है या पानी अंदर निकलता है इस जो पींदे न तभी यहाँ दा जेड़ा स्वास्थ्य है से ठीक रहंदा है। बाकी नारियल दा जेड़ा उपयोग है से पूजा च भी करते न, कुथी ना कुथी नारियल दा जेड़ा यूज़ है से चलिया रहंदा। कई बार जेड़ा डॉक्टर हैं सभी अगर अहां बीमारी अहां दा स्वास्थ्य खराब है तो कुथी ना कुथी डॉक्टर भी सलाह दिंदे ने कि जेड़ा नारियल दा पानी है से जरूर पिया। तो दिखा नारियल दे पानी पीने दे कितने सारे फायदे न, तो जरूर हर दिने दी अपनी अपनी खासियत है, पर से यहाँ पर निर्भर करता है कि यहाँ किस प्रकार हर चीज़ दा जेड़ा उपयोग है से करते न। तो जरूर तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर च जुड़ी सकते, थोड़ा दिया फ्री ते सफर जो अगे बढ़ाते न कने तुह जो अगली फरमाइश की ओर लेकर चलते न, तो जरूर तुह इंतजार जेड़ा न करते रहते न कने जेड़ा पहले श्रोता न से जुड़ चुके हो न तिना कन्ने अहां करनी है गलबात से कुछ ते बोला दे न कने तिना दा ना किया है। हेलो
1: हेलो नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: हां जी बिल्कुल जी।
0: जी तुहां कुछ ते बोला दे कने तुहां दा ना किया है जी?
1: इंदु सिंह वाडी
0: जी। इंदु जी जी, तो इंदु जी क्या काम कार तुहां छेड़िया, क्या करा दे आज तुहां?
1: बस थोड़ा प्रोग्राम सुने कने कने कपड़े सूट कटे न मले हुण सीना बिंदी है
0: जी। अच्छा, प्रोग्राम भी सुना दे कने कपड़े भी सिया दे।
1: हां जी जी। सीना तो नहीं बैठी है, कटिंग कीती है
0: जी। अच्छा, कटिंग जेड़ा से सूटां दी, कितने सूटां दी जेड़ा कटिंग है से तुहां करी ली?
1: काफी लाल तो 2 कट्टे न
0: जी। अच्छा, 2 जेड़ा सूट हैं तीना दी कटिंग तो हाँ करी ले ही है।
1: हाँ जी, क्या 2 ला रखियो ना
0: जी। जी तो मेरी कल बात भी सुना दे तो हाँ।
1: बिल्कुल जी
0: जी, तक दे लगा दी तो हाँ जो कल बात
1: बिल्कुल थोड़े ही है बड़ी प्यारी
0: जी जी जी। तो आज हाँ जेड़ा कल बात करा दे ना सभी तो हाँ सुनी ली होनी है ना जी।
1: जी जी बिल्कुल, मैं इसी पर बोलना चाहती मतलब नारियल दे में तो है, मतलब शायद बड़ी घट खुशी पता होना
0: जी
1: जी। खुशी मतलब लत्त च प्रॉब्लम होंगी ना जी, लत्त च जोर नहीं होंगे, एक वीकनेस होंगी
0: जी जी। श्रोतो कॉल जेड़े से जरूर। हेलो
1: जी, फोन ही कटोई है
0: जी। जी जी बोला जी
1: जी, हो जाती ना लत्त च वीकनेस हो जाती ना
2: उस वास्ते सबसे वधिया अगर जी हाँ डेली खाली पेट जी हाँ नारियल पानी पींदे ना फ्रेश जड़ा होंदा तो उस दिन जी हाँ 15 दिन 20 दिन च अंदर अंदर हाड़ी से वीकनेस जी काफी ठीक हो जाती।
0: जी अच्छा जेड़ा नारियल दा पानी है।
2: हाँ जी
0: जी ता अगर कुछ जो लत्ता च कमजोरी है ता जरूर
2: हाँ
0: मैं
2: जी
0: जी।
2: कने एक दा फायदा और दसदी मैं बाकी साढ़े मतलब सारी दुनिया जानती है पर फिर भी जी चलो आप भी थोड़ा बहुत पता हो तो दसना चाहिए ना बोलते शेयर करना चाहिए।
0: जी जी जरूर जी
2: जियां कोई प्रेग्नेंट है ना
0: जी
2: अगर
0: जी
2: वो जियां रेगुलर पानी पींदे ना सवेरे जा शाम जालू मतलब पीना तो बोलते उस ते जेड़ा बच्चा जो होंदा नेचुरली मतलब गोरा हो जांदा बच्चा।
0: जी जी
2: हां जी बोलते गोरा बच्चा पैदा
0: जी
2: होंदा।
0: जी चलो नेचुरल चीजें ने नेचुरल चीजें दा उपयोग करना भी यहाँ दे हाथ सी है ना जी।
2: हां जी
0: जी ता और क्या फायदे ने तो मुझे लगता
2: जड़ा में जेक तो पता हम दे सीते।
0: जी ता नारियल दी को पहेली भी है।
2: हाँ जी बिल्कुल
0: जी जी तो क्या पहेली है सभी जरूर हाँ अपने श्रोता तक पहुंचानी है तो वही क्या लगता नारियल बोल दे अगर प्यास लग गया तो प्यास
2: लगता पी
0: भी
2: लेना। हाँ जी कहना भूख लगे तो खाई लेना कहना ठंड लगे तो जलाई लेना है ना।
0: जी दिखा कितने सारे फायदे हैं ना जी।
2: हाँ जी बिल्कुल
0: जी पर सही है ना कि यहाँ किस प्रकार हर चीज का उपयोग कर दे ना जी।
2: जी बिल्कुल नारियल दी चटनी बना तू। हाँ
0: जी नारियल दी चटनी भी बनती ना जी।
2: हाँ जी फिर
0: जी
2: एक जी हाँ फ्रेश बीन बनाते ना आलू फ्रेश बीन
0: जी जी
2: आलू फ्रेश बीन हाँ दीच मतलब हाँ अगर प्याज प्यूज नहीं पानी लहसुन कुछ नहीं पाना हो ना खाली से क्या करना फ्राई करनी ना शिमला मिर्च नहीं सॉरी वो फ्रेश बीन और आलू जड़े ना फ्राई कर लेने तेले च
0: जी
2: कने बाद जिया फिर उस नमक मिर्च जो भी जोड़ा तो पाना सा पाक ना उसके बाद ना थोड़ा देर मतलब कोकोनट तो अगर कद्दूकस करके पाना अगर फ्रेश पान तो ज्यादा टेस्ट होता कहीं
0: जी
2: नहीं होता हाँ दूजे भी डेसिकेटेड भी पाई सकते। हाँ
0: जी जी
2: जी
0: जी ता तो बड़े सारे फायदे जेड़ा ने से दसी ते ना जी नारियल दे जरूर
2: बिल्कुल मैं तो
0: श्रोता
2: दसी ते हूं मैं तुम्हारे तो सुनने ना कहना जेड़े बाकी लिए सुन तिना ते भी सुनने हूं मैं तो दसी ते भी जेड़ा मुझे पता है हूं जेड़े तिने पता हूं तिना ते सुन लेंदे ना हां
0: जी
2: भी
0: उन तिना ने भी सुनने ना जी सारे
2: जी
0: के
2: जी
0: विचार अपने अपने होंदे ना जी।
2: बिल्कुल बिल्कुल सारे अपना अपना अलग अलग नॉलेज होंगे हर चीज का। हां
0: जी जी जी तो इन दूजी आज
2: जी
0: तो हो कुंदिया गीत सुनने
2: अच्छा अड़िया टू सुनना बड़े दिन हुई हो।
0: जी अड़िया टू सुनने तो हाँ
2: हां जी
0: जी तो तोहनिया क्या क्या अड़िया ना
2: चलो मैं अपनी आड़ियां बनाने से मनाई के छड़नी
0: जी जरूर जी अड़िया ता
2: जाए जाए जो अड़ियां होता है मनाना मतलब जरूरी है ना फिर तीन मनवाई के छड़ना है ना।
0: जी जी जरूर जी क्योंकि अपनी है जेड़ा ख्वाहिश है तीना जो कभी भी नहीं मानना चाहिए ना जी।
2: जी
0: जी
2: बिल्कुल
0: तो जरूर है अड़िया टू जेड़ा गीत है से तोहां तक पहुंचान दें जुन्ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तोहां दा
2: तुम्हारा तो बड़ा बड़ा धन्यवाद जी।
0: जी। तो श्रोताओं तो सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्या तो इसी कन्या हाँ अपनी गलबात जो इथु ही रोक देना कन्या तो जो लेकर चल देना प्यारी दिया फरमाइशा दी और ये फरमाइश जरूर इंदु जी तक कहाँ पहुँचानी है कने तो हाँ सारिया भी क्या करना है तो हाँ सारे जो ही पता है कि क्या करना है तो हाँ सारे ये गीत जेड़ा है एंजॉय करना है कने अपना जेड़ा काम कार है सभी जरूर करना है क्योंकि काम कार आंदा कुछ ही नहीं जानता जलो हाँ रेडियो कन्ने जुड़े होंगे ना।

0: सुनी लिया होने विश्व नारियल दिवस के बारे च गलबात जिहड़े सी आहां लगाई होवे। नारियल दे फायदे भी बड़े ज़्यादा हैं, हर कोई चाहता है कि आहां दा जिहड़ा स्वास्थ्य है से कदिया रहे। थोड़ा जिहा सोच विचार करके दिखा या आहां कने अपनी जिहड़ा गल्लां बातां तिना जो जरूर सांझा करा, क्योंकि जल तू अपनी गल्लां बातां सांझा करदे तां कुछ ना कुछ जिहड़ा बाकी श्रोता सभी सोचने पर मजबूर जिहड़े से हो जांदे न कि आहां वास्ते स्वस्थ रहना कितना ज़्यादा जरूरी है। तो जिहड़ा नारियल दी आहां गल करा दे तां नारियल दे बड़े सारे फायदे न। नैचुरल जिहड़ा आहां बोली सकदे कि हाइड्रेशन जिहड़े से शरीर च रहिंदी है, कने अगर आहां नारियल दा जिहड़ा पानी है से पींदे न, वैसे भी हिंदू जी ने जिहड़ा बड़े प्यारे प्यारे फायदे जिहड़ा न से तुहां तक पहुँचाए न, कने तुहां सारियां भी सुने होने न। स्किन कने बालों की अहां गल करिए तां कुछ ना कुछ से अहां दे स्किन जो भी ठीक रखते न, बेहतर रखते न। नारियल दा जिहड़ा तेल है सभी जिहड़े से कई बार तुहां जो पता है कि अगर अहां जो अहां जली जांदे न या जले दा जिहड़ा निशान है से रहिंदा है, तां कुछ ना कुछ नारियल दा जिहड़ा तेल है से उह ठीक करिंदा है। ये तो तुहां सारे जो ही पता है, आम बात है। तो नारियल दे जिहड़ा बड़े सारे फायदे न, तो जरूर इन्हां ही फायदे कन्ने अगले जिहड़ा श्रोता न से अहां कन्ने जुड़ी होन करदे न तिन्हां कन्ने गल बात। हैलो
1: हैलो
0: हैलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी। नमस्ते
0: जी, स्वागत है जी। तो जी ठीक ठाक हैं जी, तो हां ठीक ठाक हैं ना?
1: हां जी, असी भी ठीक ठाक
0: जी। कुथों ते बोला दे तो हां कने तो हां दा ना क्या है जी?
1: मैं राधा कश्यप कांगड़ा
0: जी। तो राधा जी कांगड़े वाले दे क्या हाल चाल हैं जी?
1: सब ठीक ठाक हैं जी।
0: जी तो गल बात सुना दे तो हां कि नहीं सुना दे?
1: मैं तो ऑन ही हूं
0: जी। अच्छा, ऑन ही ऑन कीता रेडियो तो? हां
1: हां जी जी
0: जी।
1: फोन लगी एकदम
0: जी, कम्मे च बिजी होई होने ना जी?
1: हां जी हां जी, खाना वगैरह खादा होगा
0: जी जी।
1: हां जी
0: जी। ता राधा जी, आज हां जेड़ा गल बात करा दे ना से करा दे विश्व नारियल दिवस दे बारे च ना जी?
1: अच्छा जी
0: जी। तो तुहां भी अपने विचार रखी सकदे श्रोता तक कि जेड़ा नारियल है इस दे फायदे क्या क्या न, अगर तुहां जो कोई फायदे वाली गल है तो तुहां जरूर श्रोता तक पहुंचाई दे जी।
1: नारियल दे फायदे, नारियल कोई बीमार है उस वास्ते पानी बड़ा अच्छा
0: जी।
1: अगर नारियल तेल लगाओ बाल झड़ने भी अच्छे हो जाते
0: जी जी जी। कने बालों दी जेड़ा
1: नारियल अगर मुंह छाले हो ना तो नारियल का तेल लगाओ थोड़ी देर वास्ते बड़ा फर्क पौंदा हुंदी जी।
0: जी अगर कुसी मुंह च छाले ना तो से नारियल दा जेड़ा तेल है तिस लगाने ने जेड़ा से बिल्कुल ठीक हो जांदे।
1: हां जी हां जी, बड़ा बहुत ज्यादा फर्क पौंदा
0: जी जी।
1: हां जी
0: राधा जी, आज तुहा कुंदिया जेड़ा गीत ऐसे सुनना पसंद करके
1: आज तुही समय पर ठंडी ठंडी हवा चल
0: जी, ठंडी ठंडी हवा चल दी जीना कांगड़े दा सुनना तो हां
1: जीना कांगड़े दा आजकल होना अच्छा मौसम हो लगया ना
0: जी जी।
1: हां जी हां जी
0: जी। दा कांगड़े दा जीना कदिया लगदा तो हां जो?
1: हां जी,
0: कांगड़े दा जीना जिहड़ा से कदिया लगदा तो हां
1: जी? बड़ा अच्छा लगदा, बहुत बढ़िया। अभी वैसे बाजार विच रहंदे
0: जी, ता तो रौनक रौनक वाला माहौल है ना जी?
1: हां हां जी हां जी
0: जी। चलो अच्छी गल है जी, जिंदगी है, जिंदगी जो हमेशा एंजॉय करा ना जी।
1: हां जी हां जी
0: जी, जरूर तुहंदी जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुंचा दें जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा।
1: धन्यवाद जी, धन्यवाद
0: जी जी। तो शो तो वहां भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो आगे बढ़ाते न, कने तुह जो अगले गीत की ओर लेकर चलते न, सुन देन ईसा प्यारी दिया फरमाइशा जो।

तशु तो इसकी ती फरमाई शाह तक पहुंची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना दा नाम वे सचिन जी कने से रहने वाले ने इच्छे थे तिना तक कहाँ ही फरमाइश पहुंचाई कने फिरी ते अपनी गलबात ऊपर चलते न गलबात अहाँ करा दे नारियल दिवस की तो किसाना वास्ते तिना दी अर्थव्यवस्था जड़ा से तिदे भी बड़े सारे फायदे जड़ा न से नारियल दी अहाँ जड़ा गल करा दे दीदे हैं रोज़गार का जड़ा जरिया है से नारियल दी अगर अहाँ गल करिए भारत दे जड़ा तटीय राज्य न तिना च जड़ा केरल है तमिलनाडु है से ज़्यादातर जड़ा गरीब मध्यवर्गीय जड़ा परिवार न तिदी आजीविका जड़ा है से नारियल दी खेती करी करी ही जड़ा है से चलती है कने नारियल की खेती करी करी ही है अपनी आजीविका जड़ा से चलाते हैं बहुउपयोगी जड़ा उत्पाद नारियल जड़ा से न केवल तेल वास्ते जड़ा से बल्कि बड़िया चीज़ों वास्ते जड़ा से नारियल का जड़ा उपयोग है से अहाँ करते हैं चाहे से गिद्धे न चाहे बाकी जड़ा चीज़ा न दूध है या पाउडर है कई जड़ा उत्पाद हैं तिना वास्ते अहाँ जड़े से नारियल का जड़ा उपयोग है से करते हैं कने जड़ा उद्योग हैं तिना जो भी बढ़ावा जड़ा है से ज़रूर मिलता है पर्यावरण वास्ते पर्यावरण का जड़ा संरक्षण है से अहाँ करी सकते क्योंकि अगर अहाँ पेड़ लगाते हैं तो सारे जो पता है कि एक पेड़ जड़ा है अहाँ जो छाँव दिंदा है सही अहाँ जो छाँव भी दे दे सही पेड़ अहाँ जो बड़े सारे जड़ा प्यार है से दिंदा है क्योंकि पेड़ जड़ा है से फल भी दे दे अहाँ जो छाँव भी दे दे अगर धूप है तो धूप तो अहाँ जो बचा दा भी है फिर भी अहाँ उस पेड़ की जड़ा कदर है से बिल्कुल नहीं करा देना क्योंकि जिथू हरियाली होंगी तिथु जड़ा है से खुशहाली जड़ा से दिखने जो मिलती है इसी कने पेड़ जड़ा न से अहाँ दी अगर अहाँ गल करिए अपने आस पास दिखते न पेड़ा जो तो कुछ ना कुछ पेड़ा कने जड़ा रौनक है से बड़ी प्यारी लगती है कने अहाँ जो थोड़ा दिया जड़ा मन करता कि प्रकृति दी ओर चलिए या प्रकृति दी जड़ा नज़ारे न तिना जो दिखिए तो कुछ ना कुछ अहाँ इन्हें जो नुकसान भी पहुँचा देन तिदे ऊपर भी सोच विचार करना ज़रूरी है थोड़ा दिया सोच विचार करके दिखा कि यहाँ क्या नुकसान जड़े से अपनी प्रकृति जो करा देन या अहाँ कितने की पेड़ लगा देन या कितने की पेड़ जड़ा न से कट्टा देन आए दिन अहाँ कुछ ना कुछ जड़ा न्यूज़ हैं से सुनते रहन देन पर अहाँ जड़े से इदी पर काम जड़े से नहीं कर देन तो इदी पर काम करना भी ज़रूरी है इसी कने अहाँ थोड़ा दिया आगे बढ़ते न कने तो जो अगली फरमाइश की ओर लेकर चलते न तो मन करा था कि हूँ थोड़ा दिया कांगड़े दी ओर घूमी आइए क्योंकि घूमना फिरना जरूरी है जड़ा कांगड़े दे नज़ारे न या ये ठंडी ठंडी हवा चली हुए इस दे जड़ा नज़ारे न सभी बड़े प्यारे न

तो श्रोताओं तो सारे ही सुना दिन इस गीत जो ठंडी ठंडी हवा चलती जुलदे झीलों के डालू जीना कांगड़े का। तो जरूर जीना कांगड़े का बड़ा प्यार है, पर हाँ कुछ ना कुछ जड़ा अपनी प्रकृति जो जरूर जड़ा नुकसान से पहुँचा देन, तो नुकसान जो ना बोलनी है, कूड़ा जड़ा कूड़ा कचरा है उस जो ना बोलनी है, कने बाकी जड़ा पेड़ हैं पेड़ पौधे जड़ा से जितना हो सकता उतने लगा, क्योंकि पेड़ पौधे जड़ा न से जरूर अगर आंदा जड़ा मकान है से कुछ ही ढलान पर है तो तू पेड़ पौधे होंगे न तो से जरूर पकड़ जड़ा से दिन देन। कने अगर तुह जो लगता है कि से पेड़ पौधे तुह जो नुकसान दे सकते न तो जरूर तिना जो कटी दिया, ऐसी कोई गल नहीं है कि पेड़ पौधे जड़ा न से कटने नहीं हैं। अगर तुह जो लगता है कि से अहाँ जो नुकसान दे सकते न तो जरूर तिना का जड़ा उपाय से तुह करी सकते। अगर तुह एक पेड़ लगा देन तो उसकी रक्षा करना भी तुह ही काम है, क्योंकि जिन्ना पढ़ाई अहाँ करते न तो अहाँ जो पता है कि अगर अहाँ पढ़ाई करिए ताई अहाँ अपनी जिंदगी च सफलता जड़ा से हासिल करी सकते। जिन्ना अहाँ खाना बनाते न तो अहाँ जो पता है कि अगर अहाँ तुड़का लगाना है तो क्या क्या अहाँ तुड़के च पाना है, तेल पाँगे ताई अहाँ तुड़का जड़ा से लगाई सकते, अपने टेस्ट के अनुसार जड़ा से हर किसी का बनाने का जड़ा तरीका है से बिल्कुल अलग अलग होंगे। कने अगर हाँ किसी खाने जो बड़े प्यारे ने बनाते ना तो इस खाने का जड़ा टेस्ट है ना उसे सबसे बेस्ट निकली करी होंगे, पर अगर हाँ किसी खाने जो गुस्से ने बनाते ना तो तुह सारे जो ही पता है कि से खाना कदया बनता है, क्योंकि हर दिन अहाँ मेहनत करते न भाग दौड़ करा दे अपनी जिंदगी च कैदी वास्ते करा दे कि खाने वास्ते अच्छा खाना मिली पा अच्छे जड़ा पहनावे से अहाँ जो मिली पा, तो जरूर जिंदगी का जड़ा सफ़र है से छोटा दे है, पर अगर अहाँ उस जो खुशियां ने या हंसी खुशी बिताते न या अपने कन्ने बिताते न तो सही सफ़र अहाँ जो बड़ा लंबा लगता है या अहाँ ये बोली सकते कि अहाँ की जड़ा जिंदगी है से बेहतर लगती है, तो जरूर खुश रहना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी च बाकी कुछ भी नहीं है, खुश रहेंगे या अच्छे कर्म करके सही अहाँ का अपना है, कने अपना जड़ा ख्याल है सभी तुह रखने है। ठीक है तुह बीमार हैं बुखार है या सर्दी है, वैसे भी बरसात का मौसम चल रहा कने हुण बरसात का जड़ा मौसम है सभी थोड़े दिनों वास्ते ख़त्म होने वाला है, तो जरूर इस दे अनुसार जड़ा से तुह अपना जड़ा ख्याल है से रखना है, कने अहाँ तुह का जड़ा ख्याल है सभी रखना है, क्योंकि तुह जो इंतजार जड़ा से रहेंदे कि कल दिया तुह तक अहाँ तुह जड़ा फरमाइशा न से पहुँचाते न तो जरूर चलते न अगली फरमाइश की ओर तुह तक पहुँचाते न इस फरमाइशा जो तुह सारे भी इंजॉय करा।

आबुला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हां सारी इस वक्त कार्यक्रम एंजॉय करा देना अपनी रेडियो दो शशि कने इसी कने हां फिर ते अपने कार्यक्रम दे सफर जो थोड़ा ते आगे बढ़ाने है क्योंकि सफर आगे बढ़गा ताई तो हुंदियां जेड़ा प्यारियां प्यारियां फरमाइशां नस यहां तो तक पहुंचाई सकदे जल्दी जल्दी तो जरूर अगली जेड़ा फरमाइश है से तो तक पहुंचांदे ना।

धर्मशाला तुह सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। तुह सारे सुनिया एक गीत फरमाइश। इस गीत की फरमाइश यहां तक पहुंची हो नरवाणा ते कने तीना दा नावे वंदना जी तो जरूर वंदना जी तक हाँ फरमाइश पहुँचाई कने तुह सारे भी इंजॉय की थी।

तशें तो आज हांव जिडा कार्यक्रमची गालबात कितें अशें कितें हें विश्व नारियल दिवस ते बारीच तो जरूर तुम सारे भी इंजॉय की उन्हें गालबात कने तिदे फायदे भी जरूर तुम सुने उन्हें कने तुम सारे जो भी पता है कि इस कार्यक्रम का जोड़ा समय तुह तक रहा है 2-3 बजे तक तो जरूर तुम सारे अपनी रेडियो दो शशि जो दिया अनुमति कने हमेशा खुश रहा कने अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला सुनते रहा।

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट
2: सर, टेस्ट ड्राइव।
1: टेस्ट।
3: बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लो।
4: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
5: कन्हैया आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और खुशियों के रंग भरे।

परसों आने वाला है जन्माष्टमी का पावन पर्व। मुरली के मधुर तान, नंदलाल की मनमोहक मुस्कान, माखन की मिठास और राधा कृष्ण के प्रेम की पहचान। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को आ रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: अरे चुप। गर्भवती महिला को रोज रात खाने के बाद एक आयरन वाली IFA की गोली कम से कम 100 दिन तक खिलाओ ताकि उसे खून की कमी ना हो। पर वे गोली खाने से कभी कभी,
1: अरे कभी कभी, अरे कभी कभी, अरे कभी कभी,
0: अरे चुप यार, कभी कभी जी मिचलाएगा।
1: खूब पानी पियो ठीक हो जाएगा।
0: कब्ज हो या काला मल,
1: धीरे धीरे होगा हल।
0: भूल जाओ अगर गोली खाना,
1: तो पति या सासू माँ से कहना याद दिलाना।
0: अगर गोली की सप्लाई खत्म हो जाए तो खुद आंगनवाड़ी, ANM दीदी या केमिस्ट से लाना।
1: तो आ जाओ ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना, ध्यान से सुनना।
2: आपने श्री कृष्ण को नहीं देखा लेकिन फिर भी उन्हें मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा और उनका रिश्ता आंखों का नहीं आत्मा का है। जब भी हम टूटते हैं और कोई ना समझे तब अंदर से एक शांति उठती है, वही श्री कृष्ण है। हमारे आंसू भी उन्हें बुलाते हैं और हमारे मुस्कान भी। हमने उन्हें शायद देखा नहीं पर वो हर बार हमें देख रहे होते हैं। कृष्ण दूर नहीं, बस थोड़ा विश्वास चाहिए। सच्चे मन से कहिए राधे।
3: साइबर फ्रॉड की दुनिया में आपका इस्तेमाल किया जाता है इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए और आपको बनाया जाता है उसका जरिया। इस स्कैम में होता क्या है कि साइबर स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर फोन पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए ऑनलाइन जॉब के नाम पर आपको पैसा कमाने का लालच देते हैं, और अगर आप इनके जाल में फंस जाते हैं तो ये स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए, यानी उसको यूज करना शुरू कर। ध्यान रहे कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का इलीगल पैसा अगर अपने अकाउंट में एक्सेप्ट करता है या फिर अपने अकाउंट से दूसरे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उनके खिलाफ तो केस दर्ज होगा ही, साथ ही पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिनका अकाउंट धोखे से इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। केस दर्ज के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। तो याद रखिए, नौकरी के नाम पर, पैसा कमाने के नाम पर अगर आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफर का लालच देता है उसको हरगिज एक्सेप्ट मत करिएगा, बल्कि उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गए तो बड़े कानूनी झमेले में फंसेंगे आप।
4: सूरज।
5: हाँ बोल।
4: कल मैंने तेरे बेटे को कुछ लड़कों के साथ देखा है, वो लड़के ठीक नहीं है, नशे वशे के चक्कर में कहीं फंस गए।
5: तुझे नहीं लगता तू मेरे बेटे को बदनाम कर रहा
6: है? अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने ही पीछे रह जाते हैं। कई बार सच सामने दिख रहा होता है पर उसे सामना करने का समय नहीं होता, क्योंकि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो समाज में नाक कट जाएगी। इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं पर पूछना जरूरी है।
5: वैसे तो हर बाप इस सवाल का जवाब ना सुनना चाहेगा, पर अगर तू हाँ भी कहेगा तब भी तेरा बाप तेरा साथ देगा, नशा तो निकलने लगा।
6: याद रहे, समाज से नशे को खत्म करने की लड़ाई पहले आपके घर से शुरू होती है। आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत।
7: बहुत शरीफ बीवी मिली है तुम्हें, तभी तुम्हारी जुबान ऐसे हर समय पटर पटर चलती रहती है। कोई मिल जाती ना तेज तरह तो पता चल जाता तुम्हें।
8: तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी। जा जा के कटवा ले अपनी जुबान, तू भी सुखी और मैं भी सुखी।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओ, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: आशिक मेरा नाम है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

सुनो एक बात सुनाओ, सुनो सुनो एक बात सुनाओ, झूठ है या सच है ये तुम जानो, झूठ है या सच है ये तुम जानो।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: छोटे, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट।
2: सर, टेस्ट ड्राइव।

0: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
1: अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
2: कन्हैया आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और खुशियों के रंग भरे।

दोस्तों आने वाला है जन्माष्टमी का पावन पर्व। मुरली के मधुर तान, नंदलाल की मनमोहक मुस्कान, माखन की मिठास और राधा कृष्ण के प्रेम की पहचान। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को आ रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: अरे चुप। गर्भवती महिला को रोज रात खाने के बाद एक आयरन वाली IFA की गोली कम से कम 100 दिन तक खिलाओ ताकि उसे खून की कमी ना हो। पर वे गोली खाने से कभी कभी,
1: अरे कभी कभी, अरे कभी कभी, अरे कभी कभी,
0: अरे चुप यार, कभी कभी जी मिचलाएगा।
1: खूब पानी पियो ठीक हो जाएगा।
0: कब्ज हो या काला मल,
1: धीरे धीरे होगा हल।
0: भूल जाओ अगर गोली खाना,
1: तो पति या सासू माँ से कहना याद दिलाना।
0: अगर गोली की सप्लाई खत्म हो जाए तो खुद आंगनवाड़ी, ANM दीदी या केमिस्ट से लाना।
1: तो आ जाओ, ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना, ध्यान से सुनना।
2: आपने श्री कृष्ण को नहीं देखा लेकिन फिर भी उन्हें मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा और उनका रिश्ता आंखों का नहीं आत्मा का है। जब भी हम टूटते हैं और कोई ना समझे तब अंदर से एक शांति उठती है, वही श्री कृष्ण है। हमारे आंसू भी उन्हें बुलाते हैं और हमारे मुस्कान भी। हमने उन्हें शायद देखा नहीं पर वो हर बार हमें देख रहे होते हैं। कृष्ण दूर नहीं, बस थोड़ा विश्वास चाहिए। सच्चे मन से कहिए राधे।
3: साइबर फ्रॉड की दुनिया में आपका इस्तेमाल किया जाता है इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए और आपको बनाया जाता है उसका जरिया। इस स्कैम में होता क्या है कि साइबर स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर फोन पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए ऑनलाइन जॉब के नाम पर आपको पैसा कमाने का लालच देते हैं, और अगर आप इनके जाल में फंस जाते हैं तो ये स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए, यानी उसको यूज करना शुरू कर। ध्यान रहे कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का इलीगल पैसा अगर अपने अकाउंट में एक्सेप्ट करता है या फिर अपने अकाउंट से दूसरे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उनके खिलाफ तो केस दर्ज होगा ही, साथ ही पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिनका अकाउंट धोखे से इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। केस दर्ज के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। तो याद रखिए, नौकरी के नाम पर, पैसा कमाने के नाम पर अगर आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफर का लालच देता है उसको हरगिज एक्सेप्ट मत करिएगा, बल्कि उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गए तो बड़े कानूनी झमेले में फंसेंगे आप।
4: सूरज।
5: हाँ बोल।
4: कल मैंने तेरे बेटे को कुछ लड़कों के साथ देखा है, वो लड़के ठीक नहीं है, नशे वशे के चक्कर में कहीं फंस गए।
5: तुझे नहीं लगता तू मेरे बेटे को बदनाम कर रहा
6: है? अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने ही पीछे रह जाते हैं। कई बार सच सामने दिख रहा होता है पर उसे सामना करने का समय नहीं होता, क्योंकि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो समाज में नाक कट जाएगी। इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं पर पूछना जरूरी है।
5: वैसे तो हर बाप इस सवाल का जवाब ना सुनना चाहेगा, पर अगर तू हाँ भी कहेगा तब भी तेरा बाप तेरा साथ देगा। नशा तो निकलने लगा।
6: याद रहे, समाज से नशे को खत्म करने की लड़ाई पहले आपके घर से शुरू होती है। आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत।
7: बहुत शरीफ बीवी मिली है तुम्हें, तभी तुम्हारी जुबान ऐसे हर समय पटर पटर चलती रहती है। कोई मिल जाती ना तेज तरह तो पता चल जाता तुम्हें।
8: तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी।
7: तुम मुझसे दुखी, मैं तुमसे दुखी।
8: जा जा के कटवा ले अपनी जुबान, तू भी सुखी और मैं भी सुखी।

0: नमस्कार श्रोताओ, एफ एम बैंड 91.2 MHz पर है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और आऊँ सचिन कपूर हाजिर हो चुका कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्प लेकर। बहुत बहुत स्वागत है जी सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। कैसे हैं तो सब, उम्मीद करना हो तो सब ठीक भूणे खरे भूणे और अपने घर खुश भूणे हैं, तंदुरुस्त भूणे हैं और सभी मोटे गल बगैर किसकी टेंशन भूणे। इंसान रे जीवन में श्रोतों बहुत कुछ किया सो घटित बुंदा है ना, लेकिन इंसान सोई बेहतरीन अपना जीवन के सो व्यतीत कर ही सकता है जो इने वाले कल रे इतने चिंता न करा, बीते हुए कल जो किया सो भूलेगा छा और फ्यूचर में और माफ करा प्रेजेंट में किया सो जीना स्वाभाविक रूप थो किया सो खरा मनना ता, यानी कि जो बीते को तसी वो बोलेगा ना बेहतर बुंदा जिंदगी खरे तरीके होगी कि ऐसो जीना बेहतर बुंदा और ईने वाले कल रे की ऐसो थोड़ी गहरी चिंता की ऐसो जरूर करना चाहते हाँ, लेकिन इतने बिना कि तुम दा ईने वाले कल रे चक्कर में आज किया सो तो है अपना बर्बाद करू कर दे, आज किया सो अपने तो है वेस्ट करू कर दे। हिन छोतों ये हा कहने बड़े अनमोल हिन, ये जिंदगी वा हर एक लम्हा हर एक पल हर एक दिन हर एक बार के सो बड़ा अनमोल अशो तो इसी इं मत व्यर्थ मत गाना दिया, इसी बड़े प्यारा होगी कि सो जिया बड़े अच्छे तरीके होगी कि सो जिया। और सचिन कपूर हिंदी अपनी गप्पा लेकर हाजिर हुआ हा, 5 बजे तक रे कार्यक्रम बिल्कुल लाइव चलना हा, तुंदी फरमाइश पूरी करनी हिन, सोगे कुछ एक खास जानकारी तुस होगी सो जरूर शेयर करनी हिन श्रोतों और जानकारी क्या सो साझा भी करनी हिन। बहरहाल लेकर चलते तू सभी श्रोता जो कार्यक्रम में थोड़े करे हगो और इस समय गल करिए 18 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रोतों और सोगी गल करिए श्रोतों तो 18 डिग्री सेल्सियस तापमान न मेरी गल करूँ तो 97% किया सो नमी है श्रोतों और विजिबिलिटी 8 किलोमीटर तक किया सो दसू करते हैं श्रोतों। तो यह है इस समय धर्मशाला का मौसम जो है तुसू अगो रखो और तुसू अगो किया सो अपडेट करो हा श्रोतों। तो बहरहाल कार्यक्रम मंच तो सब भी जुड़ी सकते हैं 7081889 पर नंबर आख मुके फिर आऊँ शेयर करनो हाँ 7081887091 पर तो सब श्रोता के ऐसो कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत के ऐसो होने सकते हैं। बहरहाल इन श्रोता गण असो के कनेक्टेड हैं, पूछ दिन कौन बोलूँ देन और कड़ी थो बोलूँ देन। नमस्ते जी।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। नमस्कार।
1: और जी ठीक ठाक है?
0: बहुत बढ़िया जी। कौन बोल लूंदे और कड़ी थो बोल लूंदे?
1: ज्ञान चंद बोल लूंगा।
0: अच्छा ज्ञान चंद जी, कड़ी बोल लूंदे?
1: थातरी।
0: थातरी हूं ज्ञान चंद जी। है ठीक नहीं तो है बल्ला
1: बस ठीक है रखा ही अंबर वर घुरंदा।
0: अच्छा लगी पियो रे थातरी किनारी पर का
1: लगु रे थोड़ी थोड़ी धूप लगु रे लगी में घुरंदा।
0: अच्छा
1: ओ
0: चलिए चल रे हवे
1: जना
0: कुछ जानकारी जो इतना सब श्रोता हूं कर दे तो है अपनी साइडो देने चाहते हूं कोई जानकारी हा कुछ अज बुआ कुछ के आम दिन ही है दिन निकलो
1: ना भाई साहब ठीक है सब कुछ।
0: अच्छा ठीक है सब कुछ। जली जानी चाननी री रात लोलापुर मार पुंदी तो ये जली जांदी था तेरी री पात्री कड़ी ते गीत।
1: जी जी जी तब गीत है या को थ्रू आदा क्या बता रहे
0: चल ठीक है जी
1: ठीक है
0: तेरी री पात्री लंदन तू सुआ है
1: ठीक है जी ठीक है ठीक है धन्यवाद जी
0: ठीक है जी धन्यवाद शुद्ध एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेडी गुंचन धर्मशाला तो है ट्यून गुरु और जले ता जानते ना इस सुर थोड़ा गलत पकड़ लियो तो है गीत कस टाइप पर है क्या गीत है जरूर तू सुत अगर सु जरूर पहुंचाना लेकिन आगाज कर लेंदे जनाब कार्यक्रम रहा इसके

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुरु और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर और सचिन कपूर बिल्कुल हाजिर है जी जनाब। तो सब कॉल कर सकते हैं अपना पसंदीदा गीत की ऐसा होने सकते हैं और अपने क्षेत्र की जानकारी है वो भी जरूर साझा कर सकते हैं। एक गल्ला रहा खास ख्याल रहे श्रोताओं की जानकारी किया सो साझा करने लायक जरूर बुआ जानकारी किया सो रेडियो मंच दसने लायक जरूर बुआ। इसी सोगी इन द्रोतागण के सोचू के कनेक्ट बुचू करते हैं श्रोतों और अशुभ जरूर कनेक्ट करना है करने हैं और सहित सहित हाँ बिल्कुल यानी कि सोगे सोगे किया सो कुछ एक जानकारी हिन सो भी सो गया सो जरूर शेयर करनी हिन श्रोतों। लेकिन भैया खास जानकारी तो ये चली रहनी तू सब भी सोगी फिलहाल कार्यक्रम जो आगू बढ़ेंदे श्रोतों और इन श्रोतागण के अनुस हो गए बिल्कुल कनेक्टेड हैं पुछ दिन कुंड बल्लू दिन और कड़ी थों बल्लू करते हैं। नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते
1: अंकल ठीक ठाक में
0: बहुत बढ़िया जी कुंड बल्लू दिन और कड़ी थों बल्लू दिन
1: नरवाने बल्लू दिन
0: नरवाने थों क्या ना जी तुंदा
1: अरु
0: अरु
1: जी
0: अरु जी कस क्लास में पढ़ दिन का स्कूल है पढ़ दिन नरवाने एग्जैक्टली कड़ी ने घर तुम दे
1: कस्बे
0: कस्बे अच्छा ता कस स्कूल है पढ़ दिन कस्बे स्कूल है पढ़ दिन अच्छा ता तो ठीक है घर बैठे स्कूल है ना जी
1: हाँ जी
0: अच्छा कौन दिन गीत होना चाहते दिन और कौन कौन तू सोगी कार्यक्रम जो हूँ कर दे इस वक्त घर है
1: ताई जी ते ताऊ जी
0: ताई जी ते ताऊ जी अच्छा ताई जी और ताऊ जी रा ना भी जरा रेडियो मंच ले दे क्या ना यार
1: सत्य देवी विचित्र कुमार
0: सत्य देवी और
1: विचित्र कुमार
0: विचित्र कुमार
1: जी
0: क्या बात है ताऊ जी और ताई जी ओ इन दी औरतों नमस्ते बलिंग है तो है ना जी
1: जी
0: अच्छा तो है अपना नाम के दसो आरू आरू तो है अपना नाम दसो है ना जी
1: जी
0: तो आरू जी मुझे ये दसा कि तुसो कुन दिन सब्जेक्ट अच्छा लगता पढ़ने में और कुन दिन टीचर के सो ज़्यादा अच्छे लगते हा
1: रिटेल सब्जेक्ट
0: कुन दिन जी
1: रिटेल सब्जेक्ट
0: रिटेल सब्जेक्ट
1: जी
0: अच्छा और कुंडन टीचर ऐसे सब्जेक्ट है टीचर जन सो अच्छे लग दिन
1: जी
0: क्या ना त्यारा
1: दिनेश सर
0: दिनेश सर
1: जी
0: क्या बात है चालिया ता कुंडन गेम तो सो पसंद है खेलना कोई गेम खेलना पसंद है
1: जी
0: कुंडन ही
1: वॉलीबॉल
0: वॉलीबॉल अच्छा चलिए ठीक है जी जरूर तो फरमाइश दस्ता तुंदी फरमाइश जरूर पूरी कर ले है
1: सुशांत ठाकुर रा हनुमान सॉन्ग
0: सुशांत ठाकुर जय हनुमान है ना जी
1: जी
0: ठीक है जी जरूर तू सुए गीत होने ले है ना जी
1: जी ठीक
0: धन्यवाद जी
1: धन्यवाद।
0: चलिए श्रोतो तो सब बन रहे इस समय एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला सो के और आऊँ सचिन कपूर इस वक्त कार्यक्रम जो बिल्कुल लाइव किया श्रोतो सो बिल्कुल बिल्कुल लाइव किया सो चलाओ करता है और तो सब श्रोता सो के किया सो बिल्कुल बने सकते हैं। तो कुछ खास जानकारी तू होगी शेयर कर दें शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आख मौके फिरे की सो मन उतो विदेश यात्रा थो बचने और सोना ना खरीदने री अपील करे हा जी बिल्कुल गहने ना खरीदने री आख मौके फिरे की सो इन देश रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सो ना करे हा और विदेश यात्रा करने थो किया सो भी ना करे हा अपील करे हा गुजारिश करे हा तीन इस विकसित भारत रे निर्माण वास्ते कि सो बहुत जरूरी है अगर तो है कर दिन तो है विकसित भारत वास्ते के न भारत रे निर्माण वास्ते के न निर्माण वास्ते के तो है भी सहयोग दिच्छू कर दिन मतलब ठेरा मतलब है सोना ना खरीदी करे और विदेश यात्रा ना करे करी सो तो आर्थिक सराहना पीएम मोदी है मौजूद वित्त वर्ष पहली तिमाही माकिया सो 7.8% रे सकल घरेलू उत्पाद जीपीडी वृद्धि दर की दर री तारीफ करिया और इतिवास देशवासी जो किया सो सब भी जो इन द देश वासी हिन भारत रे निवासी हिन तिन्यो बधाई भी देती हर श्रोतो इस शो के श्रोतो इन द अगले श्रोता अभी हस हो की कनेक्टेड हिन पुस्तन कौन बल्लुन देन और कड़ी थो बल्लुन देन नमस्ते जी।
2: हेलो नमस्ते राधे।
0: हरे कृष्णा जी जय श्री श्याम। कौन बल्लुन देन और कड़ी थो बल्लुन देन।
2: हाँ भाई अंजना नोर बिलिंगम।
0: अच्छा अंजना जी नोर बिलिंगम बल्लुन देन
2: जी।
0: और अंजना जी ठीक ठाक ना?
2: बढ़िया भाई बढ़िया।
0: बढ़िया जी बढ़िया है भी ठीक ने।
2: अच्छा।
0: जेड़ा दिन निकली को अच्छी तरीके होगी जस दिना में आए कस की रा भला करी दिन कस की वो खुश रखी इन 100 दिन अपना बंदा।
2: अंजी बलुंदा
0: जी कुंडन की थोड़ना तो सो क्या फरमाइश है तुम दे
2: फरमाइश भाई पूरा तो केरे माँ गुरुजी को।
0: अच्छा
3: होना है
0: माँ गुरुजी छेड़।
2: अंजी
0: ठीक है जी जरूर होना ले और कुछ नोएता जी नौर बिलिंगरी होना आना चाहते हैं तो है अपने श्रोता जो
2: नौर बिलिंगर नोएता जी क्या भाई तब कुछ नशा प्राणी है।
0: अच्छा
2: नोएता में जो कुछ ना होती बंदी।
0: चलिए ठीक है जी तो जरूर तुम दे फरमाइशा है पूरी कर ले।
2: ठीक है भाई धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी धन्यवाद। श्रोतों कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा हूँ गुरदेन और तो है एरव गुरदेन कि इंदे श्रोतागण के सो बाखूबी असु हो जुड़ते हैं रोजाना है ना और नए नए श्रोतागण सो जुड़ते हैं श्रोतों। बहरहाल फरमाइश और दौर के सो पूरा कर लें देन मणि रहे तो ये सब आर जे सचिन कपूर सो के गूंज अपने पन रे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रे।

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो है ट्यून गुरु और एक कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के ना सो बिल्कुल लाइव चल रही ना। यह कार्यक्रम जो आगे बढ़ते हैं तो ये सब जितने भी बुद्धिजीवी मन उन सो इस समय इस कार्यक्रम जो हुनु करते हैं, जितने भी इंदे गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम जो हुनु करते हैं, माननीय सम्माननीय व्यक्ति इस कार्यक्रम जो हुनु करते हैं, इस वक्त तैयार हूँ फिर ही आऊँ नाची सचिन कपूर स्वागत करनू, हार्दिक अभिनंदन करनू हाँ इंदे अगले शो सोगी कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी।
1: हां जी क्या बोलते मु गाना होना।
0: हां जी कौन बोल लंदे और कड़ी तो बोल लंदे जी।
1: पहली बार खुशी फोन करू मैं।
0: क्या बात है कड़ी तो बोल लंदे ने।
1: आ बोल पटोले मतलब ते गाड़ी वाले मन तो दे बुआ को बोल दे गांदा मन तो।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
1: मन तो था पा जानदे।
0: हाँ जी बिल्कुल जानते ना है जी।
1: हाँ जी त्यारी बुआ को बोल देओ तुम लो।
0: अच्छा अच्छा क्या है तुम्हारा शुभ नाम की है जी।
1: मेरा नाम इंद्रा।
0: अच्छा ठीक है इंद्रा जी कौन दिन गीत होना तुसु
1: मुझे भोले शंकर का गाना सुनाई दिया।
0: भोले शंकर जी रा कोई भी गीत होना भोले शंकर जी रा।
1: हाँ जी हाँ जी कोई नहीं पहली बार कॉल कर लू सी मैं।
0: अच्छा क्या बात है तो है पहली बार कॉल करे ना तो आख दो सवाल के ना सो मेरे जहन में इच्छु कर दे पूछ लूं तो सुथो तो है ये
1: सोचा ना ना ना पूछ ले।
0: अच्छा इंद्र जी कितने साल थो इस कार्यक्रम जो हुनो कर दें तो है
1: मुंदो से 6-7 साल हुंदे
0: 6-7 साल थो कार्यक्रम हुनो कर दें। खरा लगदा बांका लगदा कार्यक्रम
1: बहुत अच्छा और ती हुन दी अच्छी है वैसे तो सो के दसो हेलो
0: इंद्रा जी दिया मतलब जो जानकारी मिलती है अपनी बोली मां सो खरी लगदे आ
1: जानकारी वधिया लगदी फिर अपने कल्चर वधिया लगदा।
0: अच्छा और जो मनु कनेक्ट बंदा है सो की दूरा बार होगी
1: बहुत अच्छा लगता है
0: सब अच्छे लगदन।
1: हां जी मैं पहली बार कॉल करूं मैंने बहुत अच्छा ट्राई करने आज।
0: अच्छा जी जरूर जरूर। अच्छा इंद्र जी क्या क्या बदलाव तुंदे हिरने में आए घरी वाले जो जो तड़ियरा प्लेस है जो तड़ियरी जगह क्या क्या बदलाव तो है रे तुंदे टाइम जने तो है हल्के थी है बचपन तो तने क्या क्या थोरा पे क्या क्या तड़ी नोई नोई चीज क्या क्या तड़ी उत्पन्न बुचगी न या बनाई दी गई न क्या कुछ यादगार
1: चीजें तो वैसे पहला हूँ बड़ा फर्क आती है पहले सड़क सड़क नहीं पी फिर टोल पाल नहीं है गंदी है बुन।
0: अच्छा
1: फिर स्कूल ना हो बच्चे कुछ ना हो सुविधा भी तो सब कुछ ठीक है।
0: हाँ जी
1: आप थोड़ा लगा ही आ त्यारे दारे कोई साल साल को मनु मरे देखो है ना।
0: हाँ सो अक बड़ा
1: सो बड़ दुखी गाल ना
0: बड़ी दुखद गाल है ना जी।
1: हाँ जी जवान जवान चले लग जा रहे
0: और हमेशा नौजवान ही क्या ना सुगंध है।
1: हाँ जी हाँ जी सो
0: मतलब बड़ी यंग यंग एज रहे है ना 50 साल 55 साल इन्हें चले गए। हाँ
1: ये सो अतुल के सो मेरा मड़े हाथ बेचारा
0: अतुल
1: मोटो दिनेश
0: जी
1: रजिंदर मिंदर ये सब मेरे मड़े हैं ना।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: मतलब बाकी ताऊ चाचे सब ना।
0: बिल्कुल एग्जैक्टली जान देना अच्छी तरीके होगी जी।
1: आज मुझे पता हो तुसी हो तुसी मम्मी जान दिया।
0: अच्छा
1: बस कुआरी कुआरी तो है जब जान दियो।
0: अच्छा मम्मी मम्मी अक्सर हुन दिन कार्यक्रम जो आज तक घर है आज भी हुनु कर दे बुने न
1: तो मम्मी मेरे जो मेरा नाम है ना वो तीनों जान दे बाय फेस।
0: अच्छा तो मम्मी तुसो बिछाने के बुने हूं घर के जिगर मम्मी पक्का दसना मंजो के तुसो सो के
1: अच्छा वाला घर यार घर यार ना आनो दे मेरी बमेरी ही वाला खाने आ रहे हूं।
0: अच्छा
1: मेरे क्यों की मोनी ना।
0: हां जी
1: आज तक कहते हो रे तो लनड़ी।
0: अच्छा अच्छा हाँ तो ठीक है जी आऊँ जरूर पूछ लो और पूछना कि गंदे मम्मी अपू दस ही मुंजो कि हाँ भी जान देन पूछ सकते तो बचपना खेल रहे भी होना कि दुए हो गया ना कुछ रहे भी होना।
1: हाँ जी हाँ जी मम्मी का चुर खेल रहे
0: हैं। हाँ जी मम्मी मुंजो अक्सर दस दे रहे देन कि है बचपना ये खेल देती है ये छिड़ी लेना गंद देती है बकरी चार देती है बड़ी चीज़ दस दे रहे हैं।
1: हाँ जी
0: ठीक है जी माफ कर आख मौके फिर तुसों गीत पूछना लगो कुन दिना गीत दसो तो है क्या फरमाइश थे तुंदे
1: मैं मतलब मेरे भोले शंकर का गाना सुना दे।
0: अच्छा, भोले शंकर जी कोई भी गीत है ना जी?
1: आज आज आज आज
0: ठीक है जी, जरूर होना ले। बड़ा अच्छा लगा तुसु की गल करी करी।
1: आज फिर करने का दी फोन
0: जी? जरूर, तुंदा हूं अपना बच्चा और तुंदा अपना कार्यक्रम है जने मर्जी तो।
1: हां जी हां जी हां जी हां जी हां जी, धन्यवाद जी।
0: ठीक है जी, धन्यवाद।
1: ठीक ठीक ओके
0: जी। श्रोतों, कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा हूँ करते हैं आरजे सचिन कपूर सोगे बिल्कुल लाइव अपने अपने वीडियो सेट में। आइए कार्यक्रम जो हगो बढ़ते हैं और इनके अगले श्रोता भी असोगी कनेक्टेड थी है सत मिस कॉल फिर ही पूछगी ना हूँ। बिल्कुल कोशिश करूँ करता कि इन दे श्रोता के सो असोगे कनेक्ट हूँ है ना। तो चलिए इसी सोगी श्रोतों कुछ एक जानकारी के अनुसो भी तुस हो गया है शेयर करते चलते हैं। हेरे श्रोतों, बल्लो की धोलाधारी संवेदनशील और मतलब सीधी सीधी तरीके अगर हम बल्लो श्रोतों तब त्रिण में पर्यटक वास्ते की है सो नोई शर्त रखी तीन जो त्रिण ट्रैक है यह सब बाखूबी तस ट्रैक होगी कि सो रूबरू हिन जान दे हिन नोई शर्त हिन कचरा वापस ले गए छा और अगर तो है कचरा वापस ना ले तड़ी कचरा फैलाओ और मतलब तो है रेंज में चले आए तो तुसको भारी जुर्माना किया सो भुगतना पैना है शो तो है ना। बहरहाल इन अगले श्रोता सो की घटने कनेक्टेड हिन पुछ दिन कौन बोलूँ दिन। नमस्ते जी।
2: नमस्ते।
0: नमस्ते जी। नमस्ते।
2: नमस्ते भैया।
0: नमस्ते जी, कौन बोलूँ दिन और कड़ी थो बोलूँ दिन?
2: लक्ष्य कपूर।
0: लक्ष्य कपूर या लक्षित कपूर?
2: लक्ष्य कपूर।
0: लक्ष्य कपूर कड़ी थो बल्लू देन?
2: कस्बा नरवाना।
0: कस्बा नरवाना। अच्छा लक्ष्य कपूर जी कौन दिन गीत होना तुसु?
2: लाल दाने की मोटी दाल।
0: हाँ जी,
2: लाल दाल मोटी दाल। लाल दाने,
0: लाल दाना टमाटर आ रहा। अच्छा ठीक है जी, जरूर होना ले। कौन दिन क्लास में पढ़ देन?
2: थर्ड।
0: कस स्कूल ले पढ़ दे? कस वो स्कूल ले पढ़ देन?
2: आर्यन पब्लिक स्कूल तो नवाना।
0: आर्यन पब्लिक स्कूल, अच्छा क्या बात है। कोई पोएम ही होना है दिया चला सु। हाय नाचन दे, नाचन दे। हाँ जी
2: एक
0: ना ठीक तो है पर पोएम नाचन दे कोई भी
2: हाँ
0: जी
2: बाबरा तेरे दाना ठीक
0: आगे जनी। चलिए ठीक है, पोइम याद जरूर करें, धन्यवाद। चलिए दर्शकों, तो फरमाइश और दौर की सवाह पूरा कर दें तो सब बन रहे इस समय आरजे सचिन कपूर सो गया अपना गादा कार्यक्रम हुनो कर दें हिंदी अपनी गप्पा वेड़ी गुंजन धर्मशाला में 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। लेकर चलता है शो तो सब भी हो थोड़ा करिए और हगो और फरमाइश और दौर की हा सो पूरा कर दें इन शो तो।

0: শত এফ এম ব্যান্ডে কে আনুতে সামলাব, 2 মেগাহার্টজ পা ভেড়ি গুঞ্চন ধারমশালা তো এসে বিয়ে টিউন করো আর কার্যক্রম ইন্দি আপনি গপ্পা গেন সো বিলকুল লাইভ চল রই তুন দে ভিডিও সেট মা ভেড়ি গুঞ্চন ধারমশালা মঞ্চ আই এ কার্যক্রম যে হগো বড় দেন শত কার্যক্রম মঞ্চ জানকারি রা সিলসিলা কে সোয়ে চলে রেনা জানকারি রা পিটারা কে সোয়ে খোলতে রেনা তো সব শ্রোতা সো কি জরুর বানি সকতে জুড়ি সকতে না 7 0 8 8 7 0 9 8 पर नंबर अक मौके फिर 7 0 8 8 7 0 9 8 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं। बहरहाल कार्यक्रम जो होगा बढ़ दें और अगली जानकारी तू सोगे शेयर कर दें। टियाड़ू मेला शतों 21 जो दंगल और 22 तरीका जो सजने सांस्कृतिक संध्या जी बिल्कुल शतों राधा अष्टमी वे पवन अवसर पर 19 सितंबर थों विश्व विख्यात पर्यटन नगरी मैकलोडगंज रा माल रोड ऐतिहासिक टियाड़ू मेले में यानी क्या है टाड़ू बलते सब है ना पर टियाड़ू आए टाड़ू मेले में के ऐसो रौनक थो गुलजार के ऐसो भूना लगू है अबे भूना हा मतलब 19 तरीका थो सो थो सफल आयोजन जो लेकर के ऐसो टाड़ू मेले वे टाड़ू मेला कमेटी रे एक अहम बैठक कमेटी अध्यक्ष दिनेश कपूर री अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक में धर्मशाला नगर निगम रे मेयर शमशेर नैरिया केसो विशेष इंदे अगले श्रोता सोगे कनेक्टेड हैं विशेष अतिथि रे रूप में केसो तिन्या शिरकत करे है श्रोतों जरूर दस ले लेकिन इंदे इंदे श्रोता जो कनेक्ट कर दें पहले। नमस्ते जी। हेलो। हाँ जी नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: कौन बलुंदेन और खड़ी था बलुंदेन। हाँ जी अच्छा कहना चाहिए तुंदा
1: अन्या
0: अरे आवाज नहीं छू कर दी तुंदी कहना दस सुन देना। हेलो
1: अनन्या।
0: अच्छा अनन्या जी क्या जगह रहना क्या दस सुकड़ी थोन बलंदे कंडी थो अनन्या। अनन्या जी कस स्कूले पढ़ दिन कस क्लास समझ पढ़ दिन

0: स्कूल में।
1: अच्छा अनन्या जी क्या फरमाइश है तुम्हारी? हेलो
0: हेलो
1: जी अनन्या जी क्या फरमाइश है तुम्हारी? हेलो
0: जी जी फिर बताई दिया ना।
1: हाँ जी
0: वो आप गाना हूँ ना मुझे गिरी फिर ला दिया ना।
1: गिरी फिरी
0: हाँ जी
1: ठीक है जी। अनन्या जी जरूर फरमाइश पूरी कर रहे हैं, धन्यवाद जुड़ने वास्ते। चलिए श्रोतों कार्यक्रम जोगो वृंदन और कार्यक्रम मंच अब अगली फरमाइश की सो पूरी कर दे श्रोतों।

0: শত এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পার রেডি গুনছেন ধারম শালা তো হেসা বিয়ে টিউন কর আর কার্যক্রম ইন্দি হ্যাপনি গপ্পা গেন সো চল রি নে সময় শত ভাইয়া মগড়ু খেরি ছেড়তে হ্যাঁ লাই লিয়া হবে কার্যক্রম যে হগু বড়েন দেন আর ইন্দে আগলে শ্রোতা সুগি কানেক্টেড হিন পুজ দেন কোন বলুন দেন নমস্তে জি নমস্তে জি হ্যালো হ্যালো माफ कर रहे श्रोता तो अगले श्रोता जो कर दें कनेक्ट नमस्ते जी
1: नमस्ते जी
0: हाँ जी नमस्कार जी कौन बोलूं देन और कड़ी तो बोलूं देन
1: बरवाला से बोल रहे
0: बरवाला तो बल्लू कर दें ता है हाँ जी बरवाला तो बल्लू देन क्या ना जी तुंदा रवि कुमार जी रवि कुमार जी क्या कर दें तो है अच्छा तो रवि कुमार जी कौन दिन गीत होना पसंद कर ले
1: हाँ गाना सुनने का नहीं सुन गाना तेरा गाना
0: कौन दिन जी
1: हाँ जी
0: कौन दिन गीत दस हुआ
1: गोरा तेरा लाड़ा
0: गोरा तेरा लाड़ा
1: हाँ जी
0: अच्छा
1: हाँ जी
0: ठीक है जी जरूर होना ले रवि कुमार जी तू सुए गीत
1: ठीक है सर
0: ठीक है साहब जी जी ताई ये शो तो आए हैं थोड़ा करी हगुम बढ़ दे हिन और भोले शंकर जी रा गीत की ऐसो होना तो है ना तो तैयारी फरमाइश भी की ऐसो है जल्द पूरी करते हिन

0: छोटो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा गया सो चल रही इंतंदे वेड़ी सेट में और कार्यक्रम मंच थोड़ा करी और हगू किया सो है बढ़ दें छोटो होप सो सभी फरमाइश अगेन सो है जरूर हाँ पूरी करू कर दें इंदे श्रोतागण असोगी बिल्कुल बनो करते हिन कनेक्ट कर दें जी पूछ दें कौन बर लुंदेन नमस्ते जी
1: हेलो नमस्ते
0: नमस्ते जी नमस्ते जी कौन बोल रहे हैं और कड़ी थम बोल रहे हैं
1: सपना बोल रहे हैं अंदर तो गया रहे हूँ
0: अच्छा आज इस कार्यक्रम में बहुत सारे इंद है बच्चे के ना सो जुड़े इन बड़े जो लिटिल चाइल्ड इन इंद है अलके बच्चे के सो बड़े जुड़े ने सपना जी क्या फरमाइश है तुम्हारी बग्याड़े थो
1: मेरी
0: नोआ ता मनो मुड़ो नोआ मुड़ो नाता हो है ना
1: अंजी
0: क्या बात है तो ठीक है इस गीत है जरूर पूरा कर ले 8 मिनट सुले बची फरमाइश आजादन लेकिन सपना जी तुंदा इस सपना की असो है ना टूटना दिले इस सपने जो है बिल्कुल साकार कर ले धन्यवाद जरूर पूरा कर ले तुंदी फरमाइश है ना जी ठीक है जी धन्यवाद
1: धन्यवाद
0: अशोतों तो फिलहाल सपना के आसो अलकिनी गुड़िया रहना तोड़ना आसो सभी फरमाइशा पूरी करने की कोशिश हर चीज सचिन कपूर रही रहनी है

श्रोतों कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा हूँ कर दें तो ये सब और हूँ सचिन कपूर हाँ इन बहुत ही मतलब आज बहुत हल्के हल्के बच्चे री फरमाइश है क्या ना सो इन द न्यू बच्चे भी इन हल्के हल्के बच्चे री फरमाइश है सो आई नो यार दिल की सुना तोड़ना चाहता हूँ वैसे अक्सर हूँ कस की वह दिल किया मेरे भी पता नहीं कि यह खूबी है या खामी है ये थी तो मैं ना जान पाऊँ लेकिन हम अक्सर ये प्रयास करता कि मेरी तरफ हूँ कि सुखसी व दिल की सो ना दुखा और कोई मेरी वजह हूँ कि सो दुखी ना हुआ।

श्रोताओं सचिन कपूर अब ले लेने तो सुतो इजाजत गंदे गंदे आखरी फरमाइश आइंदे सपना जी रे सो पूरे करने हाँ आऊँ सचिन कपूर लेनो इजाजत हंसद रे मुस्कुरंद रे माँ बाप री सेवा जरूर करा श्रोताओं जरूर करा अवश्य करा और पूजा पाठ में विश्वास किए सो जरूर रखा श्रोताओं अग दिन बहुत बेहतरीन किए सो जरूरी ना अपने दुखा में तेरा श्रोताओं तुंदे दुखा थो भी ज़्यादा दुखी कोई इस दुनिया में छा सो जितना पूछ सकता उतना अपने आप जो खुश रखने की कोशिश की सो जरूर करा इन शब्द था सचिन कपूर लेनो इजाजत नमस्ते धर्मशाला।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये न्यूज बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। विकसित भारत बनाने के लिए विदेश यात्रा से बचें, सोना न खरीदें। CBSE स्कूलों में शिक्षकों की आज से 3 बार लगेगी हाजिरी। अक्टूबर से नया ड्रेस कोड हिम चंडीगढ़ सिटी में सरसा नदी के किनारे बनेगा। 9 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर नए सिरे से लागू होगा। आरक्षण रोस्टर, विश्वविद्यालयों में लोक सेवा आयोग को शिक्षकों की नियुक्तियों का जिम्मा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से विदेश यात्रा से बचने और सोना न खरीदने की अपील की है। उन्होंने इसे विकसित भारत के निर्माण के लिए बहुत जरूरी बताया। आर्थिक सराहना पीएम मोदी ने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर की तारीफ की और इसके लिए देशवासियों को बधाई दी। शंघाई सहयोग संगठन बैठक में पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मापदंडों को खारिज किया। आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकियों की भर्ती के खिलाफ सामूहिक लड़ाई का आह्वान किया गया। इसमें बिना नाम लिए पाकिस्तान की ओर इशारा किया गया। उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ घूमने फिरने के उद्देश्य से जा रहे हैं तो विदेश यात्रा पर नहीं जाना चाहिए, शादी विवाह विदेशों में नहीं करने चाहिए और मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए। बहुत ज़रूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। उन्होंने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए विश्वास जताया कि जब देश की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तो हमारी युवा पीढ़ी देश को विकसित भारत सौंपेगी। हिमाचल प्रदेश के 150 सरकारी CBSE स्कूलों में बुधवार से शिक्षकों की दिन में 3 बार हाजिरी लगेगी। 1 अक्टूबर से शिक्षक नए ड्रेस कोड में भी नजर आएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार शाम हुई शिक्षा विभाग की बैठक में ये निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने CBSE स्कूलों के बुनियादी ढांचे व शैक्षणिक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त 80 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। इससे स्कूलों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार किया जाएगा और विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नए मॉडल के तहत स्कूल पहुंचने, दोपहर के भोजन और छुट्टी के समय शिक्षकों को उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा। तय किया गया है कि CBSE स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए अलग अलग ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। सरकारी CBSE स्कूलों में अब VFK स्विफ्ट चैट पोर्टल पर दर्ज उपस्थिति ही शिक्षकों के वेतन की कुंजी बनेगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से मंगलवार शाम जारी अधिसूचना के अनुसार नई व्यवस्था लागू होने से उपस्थिति सत्यापन के बाद ही वेतन बिल जारी होंगे। पोर्टल पर हाजिरी दर्ज नहीं करने पर वेतन कटौती का प्रावधान भी रखा गया है। शिक्षकों की वर्दी का रंग इसी हफ्ते तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि CBSE स्कूलों में अब तक करीब 1200 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है और आवश्यकता के अनुसार आगे भी भर्ती की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि प्रदेश में जनसंख्या के नए आंकड़ों के आधार पर आरक्षण रोस्टर को नए सिरे से लागू करने पर काम किया जा रहा है। सरकार जातिगत जनगणना के नए आंकड़े आने के बाद इस दिशा में आगे बढ़ेगी। क्लर्क और अन्य गैर शिक्षण पदों पर भर्तियां अब राज्य चयन आयोग द्वारा की जाएंगी। प्रदेश सरकार ने इस स्तर पर होने वाले इंटरव्यू साक्षात्कार की प्रक्रिया को पूरी तरह खत्म कर दिया है। समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।

291.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी, और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

उस रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। गीत सुहाने, नए पुराने।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है, आशा है, और ये हम दिल से दुआ भी करते हैं कि आप सभी सही होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। नमस्ते, नमस्कार, मेरा नाम सचिन कपूर है। आप 8 बजे तक इस सफ़र में मेरे साथ रहेंगे और हम आपके साथ रहेंगे। श्रोतों, हम चाहेंगे ये सफ़र जो है वो बेहतरीन रहेगा, कोशिश करेंगे इसको बेहतर से बेहतरीन बनाने तक का ये सफ़र हम कोशिश करेंगे कि बेहतरीन ये सफ़र रहे। श्रोतों, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले तो धर्मशाला की बात करें, इस समय अगर मैं सिद्धबाड़ी की बात करूं श्रोताओं, तो हल्की बुछारें जो है वो बिल्कुल पड़ रही है, हल्की बारिश जो है वो हो रही है। और अभी शाम के समय यानी कि 6 बजे के आसपास, 6:05 जो हैं वो हो चुके हैं श्रोताओं, और लगभग 18 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है वो तापमान बना हुआ है श्रोताओं। आसमान में घने बादल जो हैं वो छाए हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अभी हल्की बूंदाबांदी जो है वो हो रही है, हल्की बौछारें जो हैं वो पड़ रही हैं श्रोताओं, खासकर सिद्धबाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ श्रोताओं, क्योंकि बरसात है और बरसात के मौसम में हम सभी बखूबी जानते हैं कि बारिश अगर यहाँ है तो हो सकता है 2 किलोमीटर बाद ना हो। हवाएं लगभग 3 से 6 किलोमीटर घंटे की धीमी रफ्तार से चल रही हैं श्रोताओं। हवा में नमी की बात करूं, यानी जिसको अंग्रेज़ी में ह्यूमिडिटी कहा जाता है, तो ह्यूमिडिटी का स्तर काफ़ी ज़्यादा, यानी कि लगभग 85% से 90% के बीच जो है वो इस समय है श्रोताओं। आज शाम का सूर्य अस्त का समय जो है वो 6:50 से 7:15 के बीच जो है वो बताया जा रहा है श्रोताओं, और ये है मौसम की जानकारी आप तक पहुंच रही है 91.2 MHz पर। तो चलिए जी, आगाज कर लेते हैं कार्यक्रम का। कार्यक्रम का श्रोताओं इस प्यारे से गीत के साथ, और उसके बाद लेके चलेंगे आप सभी को प्यारे प्यारे से गीतों की ओर।

शो तो बहुत प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना। आप सभी बने हुए समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो आइए जी, कुछ एक खास जो जानकारियां हैं वो आप तक हम पहुंचा लेते हैं और बिल्कुल हम लाइव भी हो जाते हैं फेसबुक के माध्यम से। तो आप सभी बने हुए इस समय 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है जी। थोड़ा सा जो है वो बिल्कुल सिग्नल की दिक्कत जो है वो आ रही है, लेकिन हम आने नहीं देंगे भाई साहब। खतरों से खेलना तो खिलाड़ी का काम होता है, और वो खिलाड़ी ही क्या जो बेहतरीन बल्लेबाजी ना कर सके, वो खिलाड़ी ही क्या जो खतरों से खेल ना सके, और खिलाड़ी वही बेहतरीन होता है जो खेलना अच्छी तरह जानता हो। चलिए तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और अगली जानकारी के साथ जो है वो आपको रूबरू करवाते हैं। आप सभी बने हुए समय 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि प्रदेश में जनसंख्या के नए आंकड़ों के आधार पर आरक्षण रोस्टर को नए सिवे से लागू करने पर काम किया जा रहा है। सरकार जातिगत जनगणना के नए आंकड़े आने के बाद इस दिशा में आगे बढ़ेगी। श्रोतो, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि कोर्ट के निर्देश अनुसार 50% से ज्यादा आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी सरकार ओबीसी वर्ग की अपेक्षाएं जो है वो उपेक्षा नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री के अनुसार सरकारी विभागों में सीधी भर्ती नौकरियों और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में ओबीसी वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। श्रोतों, वर्तमान में सरकारी सेवाओं में

श्रेणी ए और बी के पदों पर ओबीसी को 12% और श्रेणी सी और डी के पदों पर 18% आरक्षण दिया जा रहा है। श्रोतों, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जो है वो एमबीबीएस की लगभग 85% राज्य कोटे की सीटों में जो है वो ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था है श्रोतों, जिसके तहत प्रमुख मेडिकल कॉलेजों जैसे शिमला, टांडा, मंडी, नाहन, हमीरपुर और चंबा में सीटें जो है वो आरक्षित की गई हैं। इसके अलावा नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीडीएस जैसे तकनीक पाठ्यक्रमों में भी जो है वो 18% आरक्षण का प्रावधान है। क्लर्क और अन्य गैर शिक्षण पदों पर भी जो है श्रोतों भर्तियां अव्याज्य चयन आयोग द्वारा की जाएंगी। प्रदेश सरकार ने इस स्तर पर जो है वो होने वाले इंटरव्यू की प्रक्रिया को पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। अव्याज्य विश्वविद्यालयों की वित्त समिति की अध्यक्षता अब कुलपति के बजाय सीधे सरकार के वित्त सचिव द्वारा की जाएगी। नए पद बनाने, वेतन तय करने या भर्ती में बदलाव से जुड़े सभी वित्तीय मामले सबसे पहले वित्त समिति के सामने रखे जाएंगे। सरकार की अंतिम मंजूरी के बाद ही इन्हें लागू किया जाएगा। श्रोतों, इस प्रकार की जानकारियां हम कोशिश करेंगे कि आप तक जरूर पहुंचाए। ये नाचीज सचिन कपूर जरूर कोशिश करेगा कि इस प्रकार की जानकारियां जो हैं वो हमारे श्रोतों तक भी पहुंचे, और जो फेसबुक के माध्यम से हमें देखते हैं उन प्यारे से, उन गणमान्य आदरणीय हमारे श्रोतों तक भी जो है वो पहुंचे। अब सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ, लेकिन चलेंगे आप सभी श्रोताओं के इस प्यारे से गीत की ओर।

0: शोधो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं नाची सचिन कपूर हूँ। जितने भी श्रोता एक बार फिर से पुनः मैं स्वागत करना चाहूँगा, जितने भी श्रोता हमारे साथ बने हुए हैं और रेडी गुंजन की इस गूंज के साथ जो हैं वो जुड़े हुए हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोतों। और कहते हैं ना कि इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है और इंसान से अक्सर गलती होती है, मुझसे भी हुई है। अभी इस लाइव कार्यक्रम में मुझे आज का विचार पढ़ना था जो कि मैं भूल गया लेकिन चलिए, कहते हैं कि सुबह का लोटा अगर घर वापस आ जाए तो क्या उसे माफ़ करना चाहिए ना तो गलतियाँ जो है श्रोताओं वो माफ़ कर देनी चाहिए, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है और अक्सर गलतियाँ करता है। तो आज के विचार की ओर चलते हैं। शिक्षा के ऊपर ये विचार है श्रोताओं, कहते हैं शिक्षा केवल डिग्रियाँ हासिल करना नहीं है, शिक्षा केवल डिग्रियाँ हासिल करना नहीं है बल्कि जीवन की परिस्थितियों को समझदारी से संभालना सीखना है। जी बिल्कुल श्रोताओं, हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना परीक्षा से पहले दिन रात जगने से कहीं बेहतर है श्रोताओं। हर दिन जो है वो हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए श्रोताओं, है ना, और रटने के बजाय जो है वो सीखने का ध्यान देना चाहिए। हम अक्सर, इवन कि मैं इंक्लूडिंग मी, मैं भी अक्सर जब स्कूल टाइम था तो अक्सर यही करता था कि रटने का जो है वो ध्यान ज़्यादा देता था, कि रट्टा ज़्यादा मारता था श्रोताओं और चीज़ें समझने की कोशिश जो है वो नहीं करता था। ये तो रेडियो में जब जॉब लगी है उसके बाद ये चीज़ें हमने सीखी हैं, रेडियो में लगने के बाद की चीज़ें को रटने के बजाय जो है वो सीखना चाहिए, उसे सीखने पर ध्यान जो है वो देना चाहिए श्रोताओं। रटा हुआ ज्ञान जो है श्रोताओं वो अक्सर इंसान भूल जाता है ना, लेकिन समझा हुआ ज्ञान जो है वो हमेशा काम आता है और सारी उम्र तय ज़िंदगी जो है वो काम आने वाली चीज़ है, अगर आपने उस ज्ञान को, उस चीज़ को जो है वो समझा होगा श्रोताओं। पढ़ाई जो है वो एक लंबी यात्रा है श्रोताओं, सफलता रातों रात बिल्कुल भी नहीं मिलती और ना ही किसी को आज दिन तक मिली है श्रोताओं। इसके लिए लगातार प्रयास जो है वो ज़रूरी हैं और अक्सर करते रहने चाहिए श्रोताओं। आइए आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला।
1: हाई क्वालिटी सॉन्ग्स।

तो FM बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं नाची सचिन कपूर आपके साथ हूँ और बहुत बहुत स्वागत एक बार आप फिर से सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। तो आइए श्रोतो, कहते हैं ना कि बरसात हर किसी के लिए जो है वो अच्छी नहीं होती है और ख़ासकर ये मानसून सीज़न जो है वो हर किसी के लिए जो है वो बेहतर नहीं होता है, बेहतरीन नहीं होता है। श्रोतो, बहुत से चिराग जो है वो इस मानसून के दौरान कोई भूस्खलन की चपेट में आके, कोई रोड एक्सीडेंट की चपेट में आके, सड़क दुर्घटना की चपेट में आके, तो कोई अन्य कारणों से जो है वो इस मानसून, इस सीज़न में जो है, इस मानसून सीज़न में जो है वो अपनों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। श्रोतो, तो कुछ यही आंकड़े आपके साथ हम बयान लगे हैं श्रोतों करने। इस मानसून सीज़न में बारिश और इससे जुड़ी घटनाओं ने जान माल को भी जो है वो नुकसान पहुंचाया है। अब तक लगभग 260 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है श्रोतों, और लगभग 465 लोग जो हैं वो घायल है। 3 लोग जो हैं मैं बताना चाहता हूँ अभी भी लापता हैं श्रोतों। जो मरने वाले लोग हैं श्रोतों, जो मृतक हैं, 153 लोगों की मौत जो है वो सड़क हादसे में हुई है। ये आंकड़े मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जबकि 106 लोगों की जान जो है वो भूस्खलन, अचानक आई बाढ़ या पानी में बहने, फिसलने, पहाड़ी से गिरने, है ना, इन वजहों से जो है, बारिश से जुड़ी अन्य घटनाओं से जो है वो हुई है। तो लगभग 260 का ये आंकड़ा है जो इस मानसून सीज़न में 260 घरों में चिराग जो है श्रोताओं, शायद हो सकता है आंकड़ा इससे ज़्यादा हो, लेकिन हमारे तक जो आंकड़ा पहुंचा है और ये उम्मीद है कि इससे ज़्यादा ही है आंकड़ा, इतने लोग जो है श्रोताओं वो अपने परिवारों से दूर हो चुके हैं। तभी कह रहा हूँ कि बरसात, बारिश, मानसून, ये सीज़न हर किसी के लिए सुहावना नहीं होता, हर किसी के लिए प्यारा नहीं होता, हर किसी के लिए रोमांटिक नहीं होता। श्रोतों, बहुत से घरों के चिराग जो हैं वो बुझते हैं श्रोतों, और साथ ही साथ बताना चाहता हूँ बारिश से जो है वो 105 मकान भी गिरे हैं। जी बिल्कुल, प्राकृतिक आपदाओं और बारिश के कारण श्रोतों प्रदेश में 460 जो हैं वो जो गौशाला हैं उनको नुकसान पहुंचा है श्रोतों। 105 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं श्रोतों, और 451 मकान को नुकसान जो है वो लगभग पहुंचा है श्रोतों। इसके अलावा 17 दुकानें, लगभग 357 अन्य और पशुशालाएं भी जो है श्रोताओं वो ध्वस्त हुई हैं। सरकार के आकलन के अनुसार अगर मैं बात करूं तो इस मानसून सीज़न में अब तक जो है वो प्रदेश को करीब 1,202 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान जो है वो हो चुका है। इसमें लोक निर्माण विभाग को अकेले करीब 914 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो हुआ है श्रोतों। इसी प्रकार से जानकारियों का सिलसिला चलता रहेगा। आप सभी बने हुए हैं RJ सचिन कपूर के साथ, बिल्कुल लाइव कार्यक्रम ये सुन रहे हैं।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर है ये वेड़ी गुंजन धर्मशाला और मैं सचिन कपूर हूँ। कार्यक्रम में गुड इवनिंग धर्मशाला को इस समय होस्ट कर रहा हूँ और बहुत से हमारे प्यारे प्यारे श्रोता जो है वो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सभी का पुनः स्वागत। आइए जी, कुछ एक आंकड़े जो है वो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं श्रोतों। साथ ही साथ श्रोतों आइए लेके चलते हैं कुछ एक और खास जानकारियों की ओर। मणिमहेश में 2 बीमार श्रद्धालुओं का रेस्क्यू। श्रोतों मणिमहेश यात्रा के दौरान 2 श्रद्धालुओं का जो है, 2 भक्तों का जो है वो रेस्क्यू हुआ है श्रोतों। जी बिल्कुल, और सुरक्षित रेस्क्यू करने पर सफलता हासिल भी की है। किसने की है हम सभी बाखूबी जानते हैं कि SDRF की टीम ने, हडसर टीम ने जो है वो सुरक्षित रेस्क्यू करने में सफलता हासिल की है श्रोतों। इन दोनों श्रद्धालुओं को टीम ने हडसर पहुंचाकर जो है वो चिकित्सा उपलब्ध करवाई श्रोतों, है ना। फिलहाल अब दोनों श्रद्धालुओं की हालत जो है वो

बिल्कुल ठीक है, हालत में सुधार है। और SDM भरमौर विकास शर्मा ने बताया कि मणिमहेश यात्रा पर आए श्रद्धालु जो हैं वो बिल्कुल जैसे ही उन्हें कोई सूचना मिलती है, इस प्रकार की सूचना मिलने पर जो है वो SDRF की टीम जो है वो हडसर टीम जो है वो रेस्क्यू अभियान चला रही है। और बिल्कुल वो कोशिश कर रहे हैं कि लगभग जो है वो सभी श्रद्धालुओं को जो है वो सुरक्षित रखा जाए, और सुरक्षित ही जो है वो श्री मणिमहेश यात्रा जो है वो सभी श्रद्धालु जो हैं वो अच्छे से कर ले। श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और ये कार्यक्रम में जानकारी जो है वो आप तक हम ज़रूर पहुंचाते हैं। श्रोताओं, ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, कोई क्या बता दे ये हम बताएंगे आपको फ़िलहाल, क्योंकि मौसम से जुड़ी ये जानकारी है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे श्रद्धालुओं हमारे श्रोताओं तक जो है वो ये जानकारी ज़रूर पहुँचे। श्रोताओं, आप सभी बने हुए इस समय 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं। श्रोतम, हिमाचल प्रदेश में सितंबर महीने की शुरुआत ही जो है वो जोरदार बारिश के साथ हुई है, जैसे कि हम सभी बाखूबी जानते हैं। श्रोतम, राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई ज़िलों में जो है वो तेज बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगर मैं बात करूँ तो अगले कुछ दिनों तक जो है वो प्रदेश में ज़ोरदार बारिश होनी है, और ज़ोरदार बारिश जो है उसका दौर जो है वो जारी रहना है। श्रोताओं, मैं बताना चाहता हूँ श्रोताओं कि कई स्थानों पर जो है वो हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है सितंबर पूरे महीने में, और कल यानी कि 3 सितंबर के बीच जो है वो कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। 6 सितंबर को कुछ स्थानों और 7 सितंबर को जो है वो अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। श्रोताओं, 3 सितंबर को कांगड़ा और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा, यानी कि कल जो है वो कांगड़ा में जो है वो भारी बारिश का अलर्ट जो है श्रोताओं वो रहेगा। तो आप सभी सुरक्षित रहें, सावधान रहें, क्योंकि हमने आप तक आंकड़े जो हैं वो भी बताए हैं कि किस प्रकार से भारी बारिश के कारण कितने घरों के चिराग जो हैं वो बुझ गए हैं। तो काफ़ी अगर अत्यधिक बारिश होती है तो अपने घर में या फिर अपने ऑफिस में या अपने कार्यस्थान पर जो है वो सुरक्षित रहें। जब बारिश थोड़ी सी धीमी हो तो ही अपने कार्यस्थान से या घर से या अन्य जगहों से जहां भी आप हैं वहां से तभी निकले। श्रोताओं, आपकी सुरक्षा आपके हाथ है, इन चीज़ों का खास ख्याल ज़रूर रखें। आप सभी सुन रहे हैं इस समय 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला, और मैं नाचीज सचिन कपूर इस समय कार्यक्रम को होस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

अश्वतों 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर का तो टूट जाता है, वादा अक्सर टूटते हैं अश्वतों, लेकिन क्या कीजिएगा, वादे टूटते तो हैं और वादे होते ही तोड़ने के लिए। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं अश्वतों और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस जानकारी की ओर। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार जो है श्रोताओं प्रदेश में 60 सड़कें बंद थी श्रोताओं। मंडी जिला में सबसे अधिक 26, कुल्लू में 12 और कांगड़ा में 7 सड़कें बंद हैं श्रोताओं। अन्य जिलों में भी जो है श्रोताओं बारिश और भूस्खलन के कारण सड़कें प्रभावित हुई हैं। कुल्लू में 11 बिजली ट्रांसफार्मर जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं और प्रदेश में कुल जो है श्रोताओं वो 15 ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं। बारिश से पेयजल योजनाएं भी जो हैं वो प्रभावित हुई हैं श्रोताओं। बिलासपुर में 14, हमीरपुर में 12, सिरमौर नाहन में 11 और शिमला केवामपुर में जो है वो 2 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। तो ये सारा आंकड़ा हमने आप तक पहुंचाया श्रोताओं कि कितने इस मानसून सीज़न में जो है वो कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग जो हैं वो इस मानसून सीज़न में जो हैं वो इस धरती को छोड़कर, अपनों को छोड़कर जो है वो चले गए हैं श्रोताओं। बारिश से कितने मकान, कितनी गौशालाएं जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं, कितनी सड़कें जो हैं वो बंद हैं, कितनी ट्रांसफार्मर जो हैं वो प्रभावित हुए हैं और कब तक जो है वो बारिश रहेगी, ये भी हमने आपको पूरी मौसम की जानकारी जो है वो दी है श्रोताओं। ये जानकारी आपको प्राप्त हुई है वेड़ी गुंजन धर्मशाला की ओर से और मैं सचिन कपूर जो हूँ वो इस ये जानकारियाँ आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए कोशिश हमारी बिल्कुल जारी रहेगी। और भी बहुत सी जानकारियाँ हैं श्रोताओं, अन्य जानकारियाँ हैं जो हम आप तक साझा करेंगे, हम आप तक शेयर करेंगे श्रोताओं। आइए लेके चलेंगे आप सभी श्रोताओं को कार्यक्रम में थोड़ी सी और आगे और वो गीत आप सभी ने सुना होगा ना, पास वो आने लगे जरा जरा। देखिए मेरा गला सुरताल में बहुत ढीला है, मैं बोलने में हो सकता हूँ कुछ परसेंट अच्छा हूँ, कुछ एक तो हो ही सकता है ना, लेकिन गाने में मैं हो सकता है कि माइनस में चला जाऊँ। तो वो गीत आप सभी ने बाखूबी सुना होगा, पास वो आने लगे। तो आइए एक बार फिर से उस गीत को जो है वो आपके वीडियो सेट पर जो है वो रखते हैं और कुछ एक पुरानी यादें आपकी ताज़ा करते हैं। यूँ ही पुरानी यादों को ताज़ा करते रहिए, ये ट्रेन जो है वो 8 बजे तक यूं ही चलती रहेगी जानकारियों की और साथ ही साथ गीत संगीत की।

शोधो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। बहुत प्यारा सा गीत हम सभी ने सुना, पास वो आने लगे जरा जरा। तो चलिए शोधो इसी के साथ लेके चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम में थोड़ी सी और आगे, और खेल समाचारों की ओर जो है वो बढ़ते हैं। श्रोतों, संजू सैमसन टीम इंडिया में लौटे फिर से, अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए टीम का ऐलान हो चुका है। श्रोतों बताना चाहते हैं, भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज़ के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर टीम में जगह मिली है। श्रोतों, शेर सैयर को भी कप्तान बनाया गया है श्रोतों, जबकि संजू सैमसन और ईशान किशन विकेट कीपर के रूप में जो है वो टीम में शामिल हैं। सीरीज़ का पहला मैच 13 सितंबर को खेला जाएगा। श्रोतों, इस सीरीज़ के सभी मुकाबले नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होंगे। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह सहित 7 प्लेयर और भी जो है वो टीम में मौजूद हैं श्रोतों, और उनकी वापसी हुई है। इनमें नीतीश कुमार रेड्डी, हरीश राणा, वाशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन, अर्शदीप और अक्षर पटेल शामिल हैं। बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ भारत की वनडे सीरीज़ के दौरान घुटनों में लगी चोट के कारण टीम से बाहर हो गए थे। वह श्रीलंका दौरे पर नहीं गए थे। श्रोतों, जसप्रीत ने आखिरी T20 मैच 8 मार्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, जो कि T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था। श्रोतों, तो भारत की T20 टीम कुछ इस प्रकार से रहेगी। शेयर सैयर कप्तान, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन विकेटकीपर, ईशान किशन विकेटकीपर, तिलक वर्मा उपकप्तान, शुभम दुबे, नीतीश रेड्डी, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा, ये सभी टीम में मौजूद होंगे श्रोतों। और बिल्कुल अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ का पहला मैच का जीत का ऐलान जो है वो ज़रूर भारतीय टीम करेंगे, ऐसा हम सभी भारतीय जो है वो मानते भी हैं, और ऐसी कुछ हम दुआ जो है वो भी ज़रूर करेंगे कि आगाज जो है वो जीत के साथ हो भारतीय टीम का हमारा। तो श्रोतों, अब आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें रिले की, या रिले की प्रतीक्षा करें, बने रहिएगा वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ, गूंज अपने बन की और गूंज जितने भी प्यारे प्यारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों की महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा दायित्व को बढ़ावा देना और विचार विमर्श से सुशासन और सेवा वितरण में सुधार लाना है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई। सीईओ ट्रस्ट के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख और राम मंदिर परिसर से संबंधित मुख्य परिचालन जिम्मेदारियों को संभालेंगे। ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की जानकारी दी है। इनमें अयोध्या के वरिष्ठ अधिवक्ता मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भगचंद का और शेखोहाबाद की सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य निर्मला यादव शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों को इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने तथा 15 दिनों के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के महासागर दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में सेशल्स एक महत्वपूर्ण साझेदार है। नई दिल्ली में सेशल संसद के अध्यक्ष अजारेल अर्नेस्टा के साथ बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि भारत और सेशल्स विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत से राहत सामग्री लेकर 5वां विमान दल आज नेपाल पहुंचा। इसमें 11 सदस्यीय बचाव दल, विशेष उपकरण और 5 टन से अधिक दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती रेट कार्ड के आधार पर किए जा रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा। आपके इशारों पर जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
0: सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा की है। बलजीत कौर और स्कालजेंग रिगजिन को भू साहसिक अभियानों, रिमो साहा को जल साहसिक अभियान और शिव प्रसाद चमोली को आजीवन उपलब्धि के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने चीनी ताइपे के ची यू जेन को और तन्वी ने डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराया। ध्रुव कपिला और तनीषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। बंबई शेयर बाजार में आज लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 374 अंक फिसलकर 76,570 पर बंद हुआ। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट
2: सर, टेस्ट ड्राइव।

0: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में एचआईवी की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
1: अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए एआरटी सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। एचआईवी के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
2: कन्हैया आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और खुशियों के रंग भरे।

दोस्तों आने वाला है जन्माष्टमी का पावन पर्व। मुरली के मधुर तान, नंदलाल की मनमोहक मुस्कान, माखन की मिठास और राधा कृष्ण के प्रेम की पहचान। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को आ रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।

शो तो अंतराल के बाद आप सभी का मैं सचिन कपूर स्वागत करता हूँ एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए कार्यक्रम को आगे लेके चलते हैं श्रोताओं, और अगली जानकारियों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। राधा अष्टमी के पावन अवसर पर जो है वो 19 सितंबर से विश्वविख्यात पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज कामाल रोड ऐतिहासिक टियालू मेले की रौनक से गुलजार जो है वो होने जा रहा है श्रोतों। जी बिल्कुल श्रोतों, इस मेले के सफल आयोजन को लेकर टियालू मेला कमेटी की एक अहम बैठक कमेटी जो है श्रोतों वो बनी, और बताना चाहता हूँ कमेटी की अहम बैठक कमेटी अध्यक्ष दिनेश कपूर की अध्यक्षता में संपन्न हुई श्रोतों। बैठक में धर्मशाला नगर निगम के मेयर शमशेर नहरिया ने विशेष अतिथि के रूप में जो है वो शिरकत की। बैठक के दौरान मेले की रूपरेखा, यातायात प्रबंधन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर जो है वो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मेले के दौरान खेल और संस्कृति का अद्भुत तालमेल देखने को मिलेगा श्रोतों। 21 सितंबर को विशाल दंगल का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए अखाड़े को व्यवस्थित करने हेतु विशेष टीमों का गठन कर दिया गया है। वहीं 22 सितंबर की शाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम रहेगी। इस सांस्कृतिक संध्या में तिब्बती, नेपाली और पहाड़ी संस्कृति का एक सुंदर और अनूठा संगम देखने को मिलेगा। कमेटी ने निर्णय लिया है कि इस मंच के माध्यम से स्थानीय और नवोदित कलाकारों को स्थानीय और लोकल कलाकारों को अपनी कला, संगीत और नृत्य प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया जाएगा। पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुविधा तथा मेले के सुचारू आयोजन के लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं श्रोतों। मेले के दौरान माल रोड से टैक्सियों को अभ्यासी रूप से जो है वो दलाई लामा मंदिर के समीप स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बन रही पार्किंग और मैक्लोडगंज बस अड्डे पर जो है वो रोका जाएगा श्रोतों। वहां पर जो है वो फिलहाल रोक दिया जाएगा श्रोतों। 18 सितंबर को मेला परिसर में दुकानों का आवंटन किया जाएगा। नई दुकानदारों को इस बार हरी बाबड़ी की ओर जो है वो स्थान दिया जाएगा श्रोतों, जबकि माल रोड पर सभी दुकानदारों के सभी बिजली और पानी की उचित अस्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में शहर के कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए श्रोतों। प्रमुख रूप से पार्षद आशा देवी, अशोक शर्मा, नवेंद्र पठानिया, वशपाल, विकास नेहरिया, सुविंदर मूलराज शर्मा, विनोद कुमार, महेंद्र कपूर, निर्मला सिंह, किशोरी लाल, संजीव नेहरिया और भी बहुत से लोग जो हैं वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। टियालू मेला कमेटी ने सभी शहरवासियों, स्थानीय लोगों, व्यापारियों और दुकानदारों से इस भव्य मेले को सफल बनाने का पूर्ण सहयोग देने की अपील की है। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ, और आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को अब इस गीत की ओर। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे

शो तो FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये वेडी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और आप सभी बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ वेडी गुंजन धर्मशाला के साथ। पुनः एक बार आप सभी को बता दें कि एक बार फिर से जो है वो बरसात बारिश शो है वो यहाँ पर बिल्कुल ज़ोरों शोरों से सिद्धभाड़ी के इलाके में जो है वो ज़ोरों शोरों से बारिश एक बार फिर से पुनः शुरू हो चुकी है। तो आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाएंगे श्रोतों। धौलाधार की संवेदनशील परिस्थिति को प्लास्टिक और अन्य गैर जीव अब घटनाएं कचरे से बचाने के लिए जो है वो वन विभाग ने तरुण ट्रैक पर नई वेस्ट मैनेजमेंट व्यवस्था लागू कर दी है श्रोतों। इसके तहत ट्रैक पर जो है वो जाने वाले पर्यटकों को चेक पोस्ट पर जूट के बैग जो है वो श्रोतों उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिनमें ट्रैक के दौरान उत्पन्न होने वाले कचरा एकत्रित कर वापस लाना होगा। पर्यटकों से 500 रुपये की सिक्योरिटी राशि भी ली जा रही है। जैसे वापसी पर कचरे से संबंधित निर्धारित औपचारिकता पूरी करने के बाद वापस किया जाएगा श्रोतों। वन मंडल धर्मशाला के DFO अमित शर्मा ने बताया है कि फिलहाल इस व्यवस्था को त्रिवेणी ट्रैक पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो है वो शुरू किया गया है। अन्य जानकारियां आप तक यूं ही पहुंचती रहेंगी, बने रहिएगा वेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

शो तो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम चल रहा है इस समय गुड इवनिंग धर्मशाला। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली कुछ जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। श्रोतों, जिस तरह से तरुण ट्रैक पर ये कदम उठाया गया है, चलिए ये तो ट्रैक है और ये तो कुदरत की देन है, तो उसे संजो कर रखना जो है वो बिल्कुल हमारा काम है, ना कि किसी एक डिपार्टमेंट का, बल्कि हम सभी लोगों का, इवन कि जो टूरिस्ट आते हैं उनका भी, जो लोकल हैं उनका भी। इसी तरह से न केवल एक त्रिउन ट्रैक बल्कि अन्य जितने भी ट्रैक हैं या अन्य हमारी ये जो धौलाधार पर्वत है, श्रोतों श्रृंखला है, इस पर ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। श्रोतों की इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है श्रोतों कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, कूड़ा करकट ना फैलाएं, प्लास्टिक जो है वो बिल्कुल ना फैलाएं और वनों को जो है वो साफ़ सुथरा रखें। और ये कोशिश तो हम ज़रूर कर सकते हैं कि वन जो है वो साफ़ सुथरे रहें श्रोतों, है ना, तभी हमें अच्छी और स्वच्छ हवा जो है वो मिल सकती है। वरना हिमाचल, वो दिन दूर नहीं कि हिमाचल के लिए जब लोग दौड़ रहे हैं, हिमाचल को हिमाचल की तरह रहने दीजिए ना। कार्यक्रम को हम थोड़ा सा जो है वो आगे ज़रूर बढ़ाते हैं श्रोताओं, और लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर।

एक छोटे से अंतराल का।

0: पटेल, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट
2: सर, टेस्ट ड्राइव।
1: टेस्ट।
3: बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर
4: लीजिए।
5: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
6: कन्हैया आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और खुशियों के रंग भरे।

दोस्तों आने वाला है जन्माष्टमी का पावन पर्व। मुरली

की मधुर तान, नंदलाल की मनमोहक मुस्कान, माखन की मिठास और राधा कृष्ण के प्रेम की पहचान। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को आ रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: अरे चुप। गर्भवती महिला को रोज रात खाने के बाद एक आयरन वाली IFA की गोली कम से कम 100 दिन तक खिलाओ ताकि उसे खून की कमी ना हो। पर वे गोली खाने से कभी कभी,
1: अरे कभी कभी, अरे कभी कभी, अरे कभी कभी,
0: अरे चुप यार, कभी कभी जी मिचलाएगा।
1: खूब पानी पियो ठीक हो जाएगा।
0: कब्ज हो या काला मल,
1: धीरे धीरे होगा हल।
0: भूल जाओ अगर गोली खाना,
1: तो पति या सासू माँ से कहना याद दिलाना।
0: अगर गोली की सप्लाई खत्म हो जाए तो खुद आंगनवाड़ी, ANM दीदी या केमिस्ट से लाना।
1: तो आ जाओ ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना, ध्यान से सुनना।
2: आपने श्री कृष्ण को नहीं देखा लेकिन फिर भी उन्हें मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा और उनका रिश्ता आंखों का नहीं आत्मा का है। जब भी हम टूटते हैं और कोई ना समझे, तब अंदर से एक शांति उठती है। वही श्री कृष्ण है। हमारे आंसू भी उन्हें बुलाते हैं और हमारे मुस्कान भी। हमने उन्हें शायद देखा नहीं, पर वो हर बार हमें देख रहे होते हैं। कृष्ण दूर नहीं, बस थोड़ा विश्वास चाहिए। सच्चे मन से कहिए राधे।
3: साइबर फ्रॉड की दुनिया में आपका इस्तेमाल किया जाता है इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए और आपको बनाया जाता है उसका जरिया। इस स्कैम में होता क्या है कि साइबर स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर फोन पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए ऑनलाइन जॉब के नाम पर आपको पैसा कमाने का लालच देते हैं। और अगर आप इनके जाल में फंस जाते हैं तो ये स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए, यानी उसको यूज करना शुरू कर। ध्यान रहे कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का इलीगल पैसा अगर अपने अकाउंट में एक्सेप्ट करता है या फिर अपने अकाउंट से दूसरे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उनके खिलाफ तो केस दर्ज होगा ही, साथ ही पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिनका अकाउंट धोखे से इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। केस दर्ज के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। तो याद रखिए, नौकरी के नाम पर, पैसा कमाने के नाम पर अगर आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफर का लालच देता है, उसको हरगिज एक्सेप्ट मत करिएगा, बल्कि उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गए तो बड़े कानूनी झमेले में फंसेंगे आप।
4: सूरज।
5: हाँ बोल।
4: कल मैंने तेरे बेटे को कुछ लड़कों के साथ देखा है, वो लड़के ठीक नहीं है, नशे वशे के चक्कर में कहीं फंस गए।
5: तुझे नहीं लगता तू मेरे बेटे को बदनाम कर रहा है?
6: अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने ही पीछे रह जाते हैं। कई बार सच सामने दिख रहा होता है पर उसे सामना करने का समय नहीं होता, क्योंकि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो समाज में नाक कट जाएगी। इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं, पर पूछना जरूरी है।
5: वैसे तो हर बाप इस सवाल का जवाब ना सुनना चाहेगा, पर अगर तू हाँ भी कहेगा तब भी तेरा बाप तेरा साथ देगा। नशा तो निकलने लगा है।
6: याद रहे, समाज से नशे को खत्म करने की लड़ाई पहले आपके घर से शुरू होती है। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत।
7: बहुत शरीफ बीवी मिली है तुम्हें, तभी तुम्हारी जुबान ऐसे हर समय पटर पटर चलती रहती है। कोई मिल जाती ना तेज तरह तो पता चल जाता तुम्हें।
8: तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी।
7: मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी।
8: जा जाके कटवा ले अपनी जुबान, तू भी सुखी और मैं भी सुखी।

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और अब वक्त हो चुका है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचारों का।
1: 2700 करोड़ रुपए आई और अधिक लागत के कारण इस परियोजना को रद्द कर दिया गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था करने पर विचार कर रही है जिसमें रोपवे के PPP मोड की अवधि 30 से 35 साल तक सीमित की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के पास करीब 1200 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध है और निजी निवेशकों को शिमला आने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि रोपवे के माध्यम से प्रदेश के उन क्षेत्रों को जोड़ा जाए जहां अभी पहुंच सीमित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में दुनिया के कई हिस्सों की तुलना में बड़ा स्नोबाउंड क्षेत्र है और यदि वन संरक्षण अधिनियम यानी FCA की मंजूरी के कारण परियोजनाओं में देरी हो रही है तो सरकार इस प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास करेगी। इससे पहले मूल सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से प्राप्त ऋण और मदद से प्रदेश में कोई रोपवे परियोजना स्वीकृत या निर्माणाधीन नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में PPP मोड के तहत 6 रोपवे परियोजनाएं हैं। विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के लिखित जवाब में उद्योग मंत्री ने बताया कि प्रदेश में पिछले 3 वर्षों के दौरान इस वर्ष 1 अगस्त तक खनन विभाग ने अवैध खनन और खनन सामग्री के अवैध परिवहन के कुल 13,082 मामले दर्ज किए हैं। इनमें से 10,152 मामलों में दोषियों से जुर्माने के रूप में 8,79,25,770 रुपये की राशि वसूल की गई। विधायक विनोद सुल्तानपुरी के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि कसौली में जायका प्रोजेक्ट के तहत चल रही 6 सिंचाई योजनाओं के काम में कमी पाए जाने पर जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान सरकार से अधिकांश सवालों के जवाब न मिलने पर विपक्षी भाजपा सदस्यों ने नाराजगी जताई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार महत्वपूर्ण जानकारियां देने से बच रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
2: विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सवालों के जवाब न मिलने पर विपक्ष के विधायक नाराज दिखे। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा और विपिन परमार द्वारा राज्य चयन आयोग से जुड़े सवाल पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि इस सवाल से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है। इस पर सुधीर शर्मा ने कहा कि ये सवाल पिछले 3 सत्रों से लगाया जा रहा है और हर बार जवाब में यही कहा जाता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। भाजपा विधायक विपिन परमार ने भी इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य चयन आयोग बनने से पहले कई धांधलियां हुई थी। उन्होंने कहा कि इस मामले से जुड़ी सभी प्रकार की सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जानकारी इस साल दिसंबर में होने वाले अगले सत्र या अगले साल मार्च में होने वाले बजट सत्र में उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके बाद भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने मुख्यमंत्री की ओर से पिछले 3 वर्षों में प्रदेश में किए गए शिलान्यास और उद्घाटनों से जुड़ा सवाल उठाया। इस सवाल के जवाब में भी सरकार की ओर से कहा गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार जवाब देने से क्यों कतरा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री की हर गतिविधि और यात्रा का रिकॉर्ड रखा जाता है, इसके बावजूद जानकारी नहीं दी जा रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कोई तथ्य या सूचना नहीं छिपाना चाहती है। उन्होंने कहा कि कई भवनों का निर्माण अभी चल रहा है और सवाल से जुड़ी पूरी जानकारी मार्च 2027 में उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि कांग्रेस सरकार ने जहां पूर्व भाजपा सरकार की तुलना में अधिक नौकरियां दी, वहीं बजट का प्रावधान करते हुए अधिक शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी के समाचार इस अंतराल के बाद।
3: डायबिटीज यानी मधुमेह या शुगर रोग एक खतरनाक बीमारी है। इसमें बार बार पेशाब आना, थकावट महसूस होना, ज्यादा भूख लगना इत्यादि इसके लक्षण हैं। इसका शुरुआत में ही पता लगाना बहुत जरूरी है।
4: प्रदेश के हर स्वास्थ्य उप केंद्रों में शुगर की मुफ्त जांच का प्रावधान है, अतः आप तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी शुगर की जांच करवाएं और अपनी आंखों और गुर्दे की गंभीर बीमारी होने से बचाएं।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बाकी के समाचार। विधानसभा में आज विपक्षी दल भाजपा के विरोध के बावजूद हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। विपक्षी दल भाजपा ने इसे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में दखल बताते हुए इसका विरोध किया, जबकि सरकार ने कहा कि संशोधन से भर्ती और वित्तीय व्यवस्था में पारदर्शिता के साथ युवाओं को मेरिट आधार पर अवसर मिलेंगे। प्रदेश में 6 विश्वविद्यालय इस संशोधन विधेयक के दायरे में आएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस संशोधन से विश्वविद्यालयों की सरकारी नौकरियों की भर्तियों में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सहायक आचार्य की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी, जबकि सह आचार्य और आचार्य की नियुक्ति विश्वविद्यालय अपने स्तर पर करेगा।
5: ये जो बिल है ये उन पढ़े लिखे युवा साथियों की आवाज़ है जिनकी कोई आवाज़ नहीं। वो मेरिट पर थे, यूनिवर्सिटी में लगना चाहते थे, नेट सेट क्वालिफाई था, पीएचडी कर ली गई थी, मेरिट थ्रू आउट लाइफ मेरिट में रहे और उनको यूनिवर्सिटी में नौकरी करने का जो मौका मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता। मैं जो युवा जीवन में मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद उसने कोई सपना देखा होता है और जब उसका सपना इसलिए पूरा नहीं होता, उनके साथ जो अन्याय हो रहा था ये बिल उस अन्याय को दूर करेगा।
1: प्रदेश सरकार द्वारा लॉटरी शुरू करने के फैसले के खिलाफ आज भाजपा विधायकों ने विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार का ये फैसला प्रदेश की नई पीढ़ी को बर्बाद करेगा और इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक तंगी का बहाना बनाकर राजस्व के नाम पर नए कर लगा रही है और अब लॉटरी भी शुरू कर दी है।
6: हिमाचल प्रदेश सरकार ने बहुत बेतुका तर्क जो है वो हमारे सामने रखा है कि हिमाचल आर्थिक कठिनाई के दौर में से गुजर रहा है, ऐसे में हमको अपने रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़े। पहले टैक्सेस का दौर शुरू हुआ, लेकिन एक फैसला और बहुत अटपटा फैसला लिया गया, वो फैसला कि हिमाचल प्रदेश में हम लॉटरी शुरू करेंगे और लॉटरी के लिए तर्क ये दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इससे किसी को आदत नहीं पड़ेगी, ये तो भाग्य का खेल। और सब लोग इस बात को लेकर के हैरान है कि मुख्यमंत्री जो तर्क दे रहे हैं इससे बड़ी मजाक की बात कोई और हो नहीं सकती। नई जनरेशन को बर्बाद करने की दिशा में यह कदम साबित होगा।
1: प्रतिपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि कर्मचारी हितैषी होने का दावा करने वाली सुक्खू सरकार के कर्मचारी और पेंशनर प्रतिदिन धरने पर बैठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की कारगुजारी और नीतियों से हर वर्ग निराश।
6: सुक्खू जी कह रहे हैं कि हम कर्मचारी कैसी है, हर रोज कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, ओपीएस पर बहुत सारी बातें कही, आज ओपीएस के बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो अभी तक ओपीएस से वंचित है, उनके बारे में क्या फैसला लिया, अभी तक सारी चीज को लेकर के मुख्यमंत्री बताने की स्थिति में नहीं हो पा रहे। कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी, हिमाचल प्रदेश का पूर्व कर्मचारी सड़कों पर है, चौराहे पर है, हर जगह है, नारे लगा रहा है और ऐसी सूरत में मैं यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार से मुख्यमंत्री सुक्खू जी के कामकाज से कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है, निराश है, हताश है, रोष है, आक्रोश।
1: राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारी, इंजीनियर और पेंशनरों ने ओपीएस बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज शिमला के चौड़ा मैदान में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर बिजली बोर्ड ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने बोर्ड में 15 मई 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की सरकार से मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाल कर दी थी, लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारी इससे वंचित है। हीरालाल वर्मा ने कहा कि बिजली बोर्ड में खाली पड़े पदों को भरने की भी सरकार से मांग की गई।
7: बिजली बोर्ड का कर्मचारी 3.5 सालों से पुरानी पेंशन से वंचित है। देश के सरकार के जो कर्मचारी उनको पुरानी पेंशन लागू हो गई है, लेकिन बिजली बोर्ड का कर्मचारी को उससे वंचित है। देरी करके कर्मचारियों में बड़ा संशय है और इस करके आज हजार कर्मचारी यहाँ आए, मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से, प्रदेश सरकार और आए यहां जो पुरानी पेंशन बड़े समय से लंबित है उसकी घोषणा करें। अगर स्वाभाविक है प्रदेश सरकार ओपीएस बिजली बोर्ड में लागू नहीं करेगी तो एक लंबा आंदोलन ओपीएस को लेकर के प्रदेश में लड़ा जाएगा। आज आप देख रहे हो बिजली बोर्ड में कभी 43,000 कर्मचारी हुआ करते, आज आपके कर्मचारी मात्र 13,000 रह गए हैं, तो हम कह सकते कि 1/3 आपके कर्मचारी रह गए। इससे सिस्टम के ढांचे को चलाना मुश्किल हो गया, लगभग 11,600 पद खाली है। तो वो भी आज हमारी मुखिया मांगे कि अगर प्रदेश के ढांचे को सही तरीके से चलाना है, प्रदेश के कंज्यूमर्स को आपने बेहतर सेवाएं देनी है, तो आप बिजली बोर्ड में भर्ती करनी होगी।
1: मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने जनसंपर्क अभियान के तहत हमीरपुर जिला की नेरी पंचायत के कमलाह गांव का आज दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं व क्षेत्र के विकास को लेकर लोगों से विचार विमर्श किया। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि कमलाह की सिंचाई परियोजना के तहत चैम्बर बनाए जाएंगे और बारिश के कारण क्षतिग्रस्त रास्तों की मरम्मत के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा प्रदेश में पीपीपी मोड पर रोपवे परियोजनाएं बनाएगी सरकार। विधानसभा के मॉनसून सत्र में अधिकांश सवालों के जवाब न मिलने पर विपक्ष ने जताई नाराजगी। महत्वपूर्ण जानकारियां देने से बचने का सरकार पर लगाया आरोप। भाजपा के विरोध के बावजूद हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक विधानसभा में ध्वनिमत से पारित। और राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों व पेंशनरों ने ओपीएस बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर शिमला में किया प्रदर्शन। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर।
0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं सचिन कपूर हूँ। तो श्रोताओं आइए, अब वक्त हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। जाते जाते यही कहूँगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार को खुश रखिएगा, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। नमस्ते धर्मशाला।

0: छोटे, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट।
2: सर, टेस्ट ड्राइव।
3: टेस्टिंग।
1: टेस्ट।
4: अब बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लो।
5: टेस्टिंग।
6: टेस्ट।
7: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
8: अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
9: कन्हैया आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और खुशियों के रंग भरे।

आने वाला है जन्माष्टमी का पावन पर्व। मुरली के मधुर तान, नंदलाल की मनमोहक मुस्कान, माखन की मिठास और राधा कृष्ण के प्रेम की पहचान। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को आ रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: सुनना। अरे चुप। गर्भवती महिला को रोज रात खाने के बाद एक आयरन वाली IFA की गोली कम से कम 100 दिन तक खिलाओ ताकि उसे खून की कमी ना हो। पर वे गोली खाने से कभी कभी
1: अरे कभी कभी अरे कभी कभी अरे कभी कभी
0: अरे चुप यार।

0: कभी कभी जी मिचलाएगा।
1: खूब पानी पियो ठीक हो जाएगा।
0: कब्ज हो या काला मल
1: धीरे धीरे होगा हल।
0: भूल जाओ अगर गोली खाना
1: तो पति या सासू माँ से कहना याद दिलाना।
0: अगर गोली की सप्लाई खत्म हो जाए तो खुद आंगनवाड़ी A&M दीदी या केमिस्ट से लाना।
1: तो आ जाओ ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना, ध्यान से सुनना।
2: आपने श्री कृष्ण को नहीं देखा लेकिन फिर भी उन्हें मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा और उनका रिश्ता आंखों का नहीं आत्मा का है। जब भी हम टूटते हैं और कोई ना समझे तब अंदर से एक शांति उठती है, वही श्री कृष्ण है। हमारे आंसू भी उन्हें बुलाते हैं और हमारे मुस्कान भी। हमने उन्हें शायद देखा नहीं पर वो हर बार हमें देख रहे होते हैं। कृष्ण दूर नहीं, बस थोड़ा विश्वास चाहिए। सच्चे मन से कहिए राधे राधे।
3: साइबर फ्रॉड की दुनिया में आपका इस्तेमाल किया जाता है इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए और आपको बनाया जाता है उसका जरिया। इस स्कैम में होता क्या है कि साइबर स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर फोन पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए ऑनलाइन जॉब के नाम पर आपको पैसा कमाने का लालच देते हैं, और अगर आप इनके जाल में फंस जाते हैं तो ये स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए, यानी उसको यूज करना शुरू कर। ध्यान रहे कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का इलीगल पैसा अगर अपने अकाउंट में एक्सेप्ट करता है या फिर अपने अकाउंट से दूसरे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उनके खिलाफ तो केस दर्ज होगा ही, साथ ही पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिनका अकाउंट धोखे से इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। केस दर्ज के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। तो याद रखिए, नौकरी के नाम पर, पैसा कमाने के नाम पर अगर आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफर का लालच देता है उसको हरगिज एक्सेप्ट मत करिएगा, बल्कि उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गए तो बड़े कानूनी झमेले में फंसेंगे आप।
4: सूरज।
5: हाँ बोल।
4: कल मैंने तेरे बेटे को कुछ लड़कों के साथ देखा है, वो लड़के ठीक नहीं है, नशे वशे के चक्कर में कहीं फंस गए।
5: तुझे नहीं लगता तू मेरे बेटे को बदनाम कर रहा है?
6: अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने ही पीछे रह जाते हैं। कई बार सच सामने दिख रहा होता है पर उसे सामना करने का समय नहीं होता, क्योंकि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो समाज में नाक कट जाएगी। इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं पर पूछना जरूरी है।
5: वैसे तो हर बाप इस सवाल का जवाब ना सुनना चाहेगा, पर अगर तू हाँ भी कहेगा तब भी तेरा बाप तेरा साथ देगा। नशा तो निकलने लगा है।
6: याद रहे, समाज से नशे को खत्म करने की लड़ाई पहले आपके घर से शुरू होती है। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत।
7: बहुत शरीफ बीवी मिली है तुम्हें, तभी तुम्हारी जुबान ऐसे हर समय पटर पटर चलती रहती है। कोई मिल जाती ना तेज तरह तो पता चल जाता तुम्हें।
8: तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी।
7: तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी।
8: जा जाके कटवा ले अपनी जुबान, तू भी सुखी और मैं भी सुखी।

0: छोटे, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट।
2: सर, टेस्ट ड्राइव।
1: टेस्ट।
3: बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लो।
4: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
5: अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में ज़रूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
6: कन्हैया आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और खुशियों के रंग भरे।

दोस्तों आने वाला है जन्माष्टमी का पावन पर्व। मुरली के मधुर तान, नंदलाल की मनमोहक मुस्कान, माखन की मिठास और राधा कृष्ण के प्रेम की पहचान। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को आ रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: अरे चुप। गर्भवती महिला को रोज रात खाने के बाद एक आयरन वाली IFA की गोली कम से कम 100 दिन तक खिलाओ ताकि उसे खून की कमी ना हो। पर वे गोली खाने से कभी कभी,
1: अरे कभी कभी, अरे कभी कभी, अरे कभी कभी,
0: अरे चुप यार, कभी कभी जी मिचलाएगा।
1: खूब पानी पियो, ठीक हो जाएगा।
0: कब्ज हो या काला मल,
1: धीरे धीरे होगा हल।
0: भूल जाओ अगर गोली खाना,
1: तो पति या सासू माँ से कहना याद दिलाना।
0: अगर गोली की सप्लाई खत्म हो जाए तो खुद आंगनवाड़ी, ANM दीदी या केमिस्ट से लाना।
1: तो आ जाओ, ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना, ध्यान से सुनना।
2: आपने श्री कृष्ण को नहीं देखा लेकिन फिर भी उन्हें मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा और उनका रिश्ता आंखों का नहीं, आत्मा का है। जब भी हम टूटते हैं और कोई ना समझे, तब अंदर से एक शांति उठती है। वही श्री कृष्ण है। हमारे आंसू भी उन्हें बुलाते हैं और हमारे मुस्कान भी। हमने उन्हें शायद देखा नहीं, पर वो हर बार हमें देख रहे होते हैं। कृष्ण दूर नहीं, बस थोड़ा विश्वास चाहिए। सच्चे मन से कहिए राधे राधे।
3: साइबर फ्रॉड की दुनिया में आपका इस्तेमाल किया जाता है इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए और आपको बनाया जाता है उसका जरिया। इस स्कैम में होता क्या है कि साइबर स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर फोन पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए ऑनलाइन जॉब के नाम पर आपको पैसा कमाने का लालच देते हैं। और अगर आप इनके जाल में फंस जाते हैं तो ये स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए, यानी उसको यूज करना शुरू कर। ध्यान रहे कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का इलीगल पैसा अगर अपने अकाउंट में एक्सेप्ट करता है या फिर अपने अकाउंट से दूसरे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उनके खिलाफ तो केस दर्ज होगा ही, साथ ही पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिनका अकाउंट धोखे से इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। केस दर्ज के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। तो याद रखिए, नौकरी के नाम पर, पैसा कमाने के नाम पर अगर आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफर का लालच देता है उसको हरगिज एक्सेप्ट मत करिएगा, बल्कि उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गए तो बड़े कानूनी झमेले में फंसेंगे आप।
4: सूरज।
5: हाँ बोल।
4: कल मैंने तेरे बेटे को कुछ लड़कों के साथ देखा है, वो लड़के ठीक नहीं है, नशे वशे के चक्कर में कहीं फंस गया।
5: तुझे नहीं लगता तू मेरे बेटे को बदनाम कर रहा
6: है? अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने ही पीछे रह जाते हैं। कई बार सच सामने दिख रहा होता है पर उसे सामना करने का समय नहीं होता, क्योंकि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो समाज में नाक कट जाएगी। इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं, पर पूछना जरूरी है।
5: वैसे तो हर बाप इस सवाल का जवाब ना सुनना चाहेगा, पर अगर तू हाँ भी कहेगा तब भी तेरा बाप तेरा साथ देगा। नशा तो निकलने लगा है।
6: याद रहे, समाज से नशे को खत्म करने की लड़ाई पहले आपके घर से शुरू होती है। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत।
7: बहुत शरीफ बीवी मिली है तुम्हें, तभी तुम्हारी जुबान ऐसे हर समय पटर पटर चलती रहती है। कोई मिल जाती ना तेज तरह तो पता चल जाता तुम्हें।
8: तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी।
7: दुखी
8: जा जाके कटवा ले अपनी जुबान, तू भी सुखी और मैं भी सुखी।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना वीडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट
2: सर, टेस्ट ड्राइव।
1: टेस्ट।
3: बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लूंगा।
4: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
5: अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
6: कन्हैया आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और खुशियों के रंग भरे।

दोस्तों आने वाला है जन्माष्टमी का पावन पर्व। मुरली के मधुर तान, नंदलाल की मनमोहक मुस्कान, माखन की मिठास और राधा कृष्ण के प्रेम की पहचान। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को आ रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: अरे चुप। गर्भवती महिला को रोज रात खाने के बाद एक आयरन वाली IFA की गोली कम से कम 100 दिन तक खिलाओ ताकि उसे खून की कमी ना हो। पर वे गोली खाने से कभी कभी,
1: अरे कभी कभी, अरे कभी कभी, अरे कभी कभी,
0: अरे चुप यार, कभी कभी जी मिचलाएगा।
1: खूब पानी पियो, ठीक हो जाएगा।
0: कब्ज हो या काला मल,
1: धीरे धीरे होगा हल।
0: भूल जाओ अगर गोली खाना,
1: तो पति या सासू माँ से कहना याद दिलाना।
0: अगर गोली की सप्लाई खत्म हो जाए तो खुद आंगनवाड़ी, ANM दीदी या केमिस्ट से लाना।
1: तो आ जाओ, ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना, ध्यान से सुनना।
2: आपने श्री कृष्ण को नहीं देखा लेकिन फिर भी उन्हें मानते, क्यों? क्योंकि हमारा और उनका रिश्ता आंखों का नहीं, आत्मा का है। जब भी हम टूटते हैं और कोई ना समझे, तब अंदर से एक शांति उठती है। वही श्री कृष्ण है। हमारे आंसू भी उन्हें बुलाते हैं और हमारे मुस्कान भी। हमने उन्हें शायद देखा नहीं, पर वो हर बार हमें देख रहे होते हैं। कृष्ण दूर नहीं, बस थोड़ा विश्वास चाहिए। सच्चे मन से कहिए राधे।
3: साइबर फ्रॉड की दुनिया में आपका इस्तेमाल किया जाता है इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए और आपको बनाया जाता है उसका जरिया। इस स्कैम में होता क्या है कि साइबर स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर फोन पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए ऑनलाइन जॉब के नाम पर आपको पैसा कमाने का लालच देते हैं, और अगर आप इनके जाल में फंस जाते हैं तो ये स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए, यानी उसको यूज करना शुरू कर। ध्यान रहे कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का इलीगल पैसा अगर अपने अकाउंट में एक्सेप्ट करता है या फिर अपने अकाउंट से दूसरे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उनके खिलाफ तो केस दर्ज होगा ही, साथ ही पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिनका अकाउंट धोखे से इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। केस दर्ज के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। तो याद रखिए, नौकरी के नाम पर, पैसा कमाने के नाम पर अगर आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफर का लालच देता है उसको हरगिज एक्सेप्ट मत करिएगा, बल्कि उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गए तो बड़े कानूनी झमेले में फंसेंगे आप।
4: सूरज।
5: हाँ बोल।
4: कल मैंने तेरे बेटे को कुछ लड़कों के साथ देखा है, वो लड़के ठीक नहीं है, नशे वशे के चक्कर में कहीं फंस गया।
5: तुझे नहीं लगता तू मेरे बेटे को बदनाम कर रहा
6: है? अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने ही पीछे रह जाते हैं। कई बार सच सामने दिख रहा होता है पर उसे सामना करने का समय नहीं होता, क्योंकि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो समाज में नाक कट जाएगी। इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं, पर पूछना जरूरी है।
5: वैसे तो हर बाप इस सवाल का जवाब ना सुनना चाहेगा, पर अगर तू हाँ भी कहेगा तब भी तेरा बाप तेरा साथ देगा। नशा तो निकलने लगा।
6: याद रहे, समाज से नशे को खत्म करने की लड़ाई पहले आपके घर से शुरू होती है। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत।
7: बहुत शरीफ बीवी मिली है तुम्हें, तभी तुम्हारी जुबान ऐसे हर समय पटर पटर चलती रहती है। कोई मिल जाती ना तेज तरह तो पता चल जाता तुम्हें।
8: तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी। जा जाके कटवा ले अपनी जुबान, तू भी सुखी और मैं भी सुखी।

समझाओ दिल किसको दूं या उसको दूं। इतनी बड़ी महफिल और एक दिल किसको दूं।

उसको दूं। इतनी बड़ी महफिल और एक दिल किसको दूं?

92.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।